100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, वैशाख मास की 21वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 11 मई 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। इसी मंगल कामना के साथ आइए आरंभ करें भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि।

पुष्पांजलि में प्रथम पुष्प अर्पित है श्री गणेश के चरणों में। मैं आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने राम राम राम मात्र इस प्रकार उच्चारण करने से हमारा मन आनंदित होता है और हमारी आत्मा पवित्र होती है।

राम राम राम मात्र इस प्रकार उच्चारण करने से हमारा मन आनंदित होता है और हमारी आत्मा पवित्र होती है। ऐसा कहते हैं कि राम नाम भगवान विष्णु के हजार नाम के समान है। प्रभु की कृपा सदैव हम पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सुन रहे हैं भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि।

न जानामि योगं जपं नैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखौद तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नामीश शम्भो। अर्थात न जानू पूजन न तप योग जानू, तुम्ही को सर्वदा से महादेव मानू। कई जन्म से हृदय के निवासी तुम्ही हो, महादेव दुख के विनाशी तुम्ही हो। तुम्ही से है आशा तुम्ही सुख के दाता, भजे हम तुम्ही को विधाता।

प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हम इस सांसारिक मोह में बंधते जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कई चीजें, कई संसाधन प्राप्त करके हमें प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, परंतु प्रसन्नता का सबसे सरल मार्ग समर्पण है। जब हम अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है और मन शांत हो जाता है।

प्रातःकाल उठके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवाहि माथा। श्री रघुनाथ जी भी प्रातःकाल सोकर उठने के बाद सबसे पहले अपनी माता पिता और गुरु के चरणों में सिर नवाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। ये चौपाई हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान हो, शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे अपने बड़ों के प्रति सदैव आदर और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श है।

भजन रूपी पुष्प आप अर्पित कर रहे हैं श्री चरणों में कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से। आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

वृंदावन को मैं चला कृष्ण नाम मुहे भावे, कृष्ण कृष्ण कहता फिरू मैं, जाने कौन गली मिल जावे। आप सुन रहे हैं पुष्पांजलि कार्यक्रम आकांक्षा के साथ 100.7 FM रेनबो पर।

में महाकाल से बड़ा ना कोई, शिव की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं चाहूंगी अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि।

गुड मॉर्निंग कानपुर, सलाम नमस्ते। 102.2 एफएम रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना।

राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो अब उठ जाइए जनाब, थोड़ा सा मुस्कुराइए, लीजिए ईश्वर का नाम। और ये जो सुबह है ना, ये लाई है नई शुरुआत जिंदगी की और नई सौगात आपके सपनों को पूरा करने की, जो ले जाते हैं आपको आपकी मंजिल की ओर। तो भाई अगले एक घंटे तक मैं रहूँगी आपके साथ लेकर कहानी कानपुर की, यानी कि शहर की छोटी बड़ी हलचल, थोड़ी सी अपडेट्स यहाँ की वहाँ की, और इन सब के साथ कुछ मोटिवेशन और कुछ मुस्कान। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ रंजना और ये है गुड मॉर्निंग।

यूं ही चला चल रही और खट्टी मीठी गपशप के साथ साथ अब मैं आपको बता देती हूँ आज के प्रोग्राम हाइलाइट्स, ताकि आज का दिन जो है ना वैसे ही इतना हेक्टिक होने वाला है, तो ऐसे में मंडे की मॉर्निंग ही नहीं आप पूरा का पूरा दिन शेड्यूल कर सकें और सुन सकें हमारे प्रोग्राम्स कहाँ से। बिल्कुल, हमारा चैनल है 102.2 FM रेनबो कानपुर और इसे आप इस वक्त सुन रहे हैं मेरे यानी रेडियो संगिनी रंजना के साथ। तो आज के प्रोग्राम हाइलाइट्स कुछ यूं हैं दोस्तों कि अभी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग कानपुर और इस प्रोग्राम के बाद आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित होने वाले समाचार। समाचारों के ठीक बाद यानी कि सुबह 8:30 बजे बीते जमाने के गीतों के साथ सजाएंगे हम सुरों की पुरानी महफिल। और दोस्तों सुबह 9 बजे प्रोग्राम रस बहार में आज होंगी दिल की बातें, तो सुनिएगा जरूर, क्योंकि दिल की आवाज हूँ, दिल से ही महसूस करो, मैं कोई शोर नहीं जो कानों से सुनाई दूँ। हमेशा की तरह सुबह 9:45 पर

0: सुनिएगा प्रोग्राम विविधा और आज इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं चित्रपट से। आफ्टरनून ब्रेक के बाद लेकर आएंगे प्रोग्राम हम नवा सुबह 11 बजे और इसमें आज मेरे साथ होंगी आरजे पूर्णिमा। मैं हूं अभी आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना। और दोस्तों आरजे पूर्णिमा एक बार फिर आपके साथ होंगी। दिन में 3 बजे लेकर आएंगी प्रोग्राम म्यूजिक आर और उसके बाद आप सुनिएगा प्रोग्राम हेल्थ मैगजीन 3:45 पर और आज का विषय है किडनी रोगों से बचाव। डॉक्टर साहब आएंगे हमारे यहाँ, डॉक्टर सार्वभौम त्रिपाठी जी, और इनसे बातचीत की है अतीक सिद्दीकी ने। शाम 4 बजे दोस्तों मजा लीजिएगा बैक टू बैक म्यूजिक का।
1: सुरूर ऐसा जो उतर न पाए, म्यूजिक ऐसा जो सीधे आपके दिल में समाए। आप सुन रही हैं FM रेनबो 102.2 कानपुर की दिल की धड़कन।

एक बात आ रही है मन में दोस्तों, वो ये है कि अगर सूरज जो है ना वो हर दिन दोबारा निकल सकता है तो भाई हम हर दिन नई शुरुआत क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ अगर कल कुछ गलतियां हो गई, हो गई, क्या हुआ अगर कल का दिन कुछ बेहतर नहीं बीता, बहुत बुरा बीता, तो भी आज का दिन है ना सब कुछ ठीक करने के लिए। बस करना इतना सा है कि नई एनर्जी के साथ उठ जाना है, अपने काम में जुड़ जाना है, और ऐसे वैसे नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ जाना है दोस्तों। और स्वामी विवेकानंद जी ने हम सबको मोटिवेट करने के लिए कहा भी है कि उठो, जागो और अपना लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। और यही है आज का हमारा थॉट ऑफ द डे। और यहाँ पर हमारा लक्ष्य ये है दोस्तों कि शुद्ध म्यूजिकल एंटरटेनमेंट हम आपको देते रहें, और ऐसे वैसे नहीं, उसके साथ जोड़ें अपनी थोड़ी सी गपशप और लेकर आएं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। और ये जो बातें हैं ना वो हम आगे बढ़ाएं, उसके साथ ही साथ हम सुनते जाएं ये ट्रैक भी।

सिर्फ रेडियो ही नहीं दोस्तों, सोशल मीडिया भी यही कह रहा है कि सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी। तभी तो सोशल मीडिया ब्लिंक्स में है शाहरुख खान का बड़ा ही वायरल हो रहा ये कोट, सक्सेस इज नॉट अ गुड टीचर, फेल्योर मेक्स यू मोर हम्बल। है ना, कितनी खूबसूरत बात। कामयाबी से आप खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन असली सीख तो हमें मुश्किल वक्त ही सिखाता है। अब यूं ही तो कोई किंग खान नहीं होता, है ना दोस्तों। और ऐसी ही एक और बढ़िया सी बात आई है पीएमओ इंडिया के ऑफिशियल एक्स हैंडल से, और वो ये कि यूनियन गवर्नमेंट ने 40 प्लस के सभी वर्कर्स के लिए फ्री हेल्थ चेकअप लॉन्च किया है, और ये इनिशिएटिव पूरे देश के लिए है। और ये जो जांच होगी वो ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में होगी, और क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ना कि समय पर मेडिकल चेकअप हो जाए। इससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, और अगर शुरुआत में कोई बीमारी है ना तो उसे डायग्नोज किया जाता है, और इस तरह से हम बहुत सारी मुश्किलों से भी बच सकते हैं। क्या कहते हैं आप, गुड ना? अच्छा भाई, ये तो बहुत बड़ा वाला गुड है। गुड मॉर्निंग कानपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

बच्चों उतर ना पाए। म्यूजिक ऐसा जो सीधे आपके दिल में समाए। आप सुन रहे हैं

यस आई एम द बेस्ट, एक्चुअली टुडे इज द बेस्ट दोस्तों. और चलिए आपको हिस्ट्री नामा में बताते हैं कि आज क्यों बेस्ट है और क्यों है खास आज का दिन इतना ज़्यादा. तो भाई हिस्ट्री के पन्नों पर अगर हम नज़र दौड़ाएं ना, तो हम पाते हैं कि रेडियो के इतिहास में भी आज का दिन यानी कि 11 मई बड़ा ही खास है, क्योंकि 1940 में आज के ही दिन BBC ने शुरू की थी अपनी हिंदी प्रसारण की सेवा. इसके अलावा 1951 की अगर हम बात करें तो सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था. तो जय हो भोलेनाथ की. अब आते हैं एक ऐसे प्राउड मोमेंट की ओर जिसके बारे में सुनकर ना हम सभी का दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है. बात करेंगे 1998 की, आज ही के दिन जब हम बने थे न्यूक्लियर केपेबल. जी हाँ दोस्तों, पोखरण में हुए थे एक के बाद एक 3 दिन तक 3 न्यूक्लियर टेस्ट, जिसमें मिसाइल शक्ति भी शामिल थी. और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो निभाया था वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब. और ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन एक और नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है इस मिशन के दौरान, और वो है R. चिदंबरम साहब का नाम. तो भाई बताइए तो आज का दिन खास है कि नहीं. भाई मेरे लिए तो आज का दिन बहुत ही खास है, और इसी खास बात पर सुनिए ये वाला गीत.

जय हो करने की एक और बात है पूरी दुनिया के लिए। जी हाँ, अराउंड द वर्ल्ड बात करेंगे तो फ्यूचर के जो मंगल मिशन है ना, उनको देखते हुए जापान ने इन्हें और ज़्यादा हल्का, किफ़ायती और दक्ष बनाने की दिशा में एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है। जापान ने स्पेस में नई पीढ़ी जो है ना, उसके रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये टेक्नो जो है वो ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन की तुलना में बहुत कम जगह लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकती है, जिससे आने वाले समय में स्पेस क्राफ्ट्स की लागत भी कम हो जाएगी और दोस्तों इसका वजन भी घटाया जा सकता है, जिससे मिशन मंगल जो है वो थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसके साथ ही साथ दुनिया में अमन शांति बनाए रखने की एक और पहल की शुरुआत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो समाप्ति की ओर है, क्योंकि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस ओर एक बहुत ही अहम कदम बढ़ाया है। तो भाई बहुत ही अच्छी और खास पहल है ये, क्योंकि युद्ध से सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। दुनिया की असल खूबसूरती जो है वो तो शांति और अमन में।

और भाई अमन शांति वाले अपने शहर में जो कि मस्त भी है और मौला भी है, इस शहर के जो स्टूडेंट्स हैं उन वो बहुत ही कमाल के हैं, आज उनकी बात करेंगे। ये स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई में भी अव्वल नहीं आते, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते हैं, इनकी लिमिट्स सिर्फ वहाँ तक नहीं है, बल्कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने सपनों को भी पूरा कर रहे हैं और उन सपनों को एक स्टार्टअप का रूप भी दे रहे हैं। मज़े की बात यह है कि ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अभी बच्चे हैं, यानी कि इनका अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स को पेटेंट करा लिया है, तो कईयों ने तो अपनी कंपनी ही शुरू कर दी है। अगर कुछ एक बच्चों की हम बात करें तो उनके नाम लें तो इसमें है शिवा पटेल, हर्षित पटेल, श्रीधर तिवारी और सार्थक तिवारी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नाम अभी हम तक पहुंचे भी नहीं हैं लेकिन वो बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। तो भाई बिल्कुल गर्व करने वाली बात है, खुश हो जाइए। और इवेंट्स की अगर हम बात करें अपने शहर में तो एक आध्यात्मिक शिविर लगने वाला है और ये एक नए दृष्टिकोण वाला शिविर है, शाम के समय होगा बृजेंद्र स्वरूप पार्क में और इसकी तिथियां हैं 19 मई से लेकर 24 मई तक। और इसके साथ ही एक खुशी की बात ये भी है कि गर्मियों में आपको मिलने वाली है एक बड़ी ही राहत सफ़र के दौरान, तो वो बड़ी राहत ये होगी कि जून में सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक हमारी जो मेट्रो ट्रेन है वो दौड़ सकती है और इसके लिए जरूरी जितनी भी तैयारी है वो कर ली गई है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस महीने इसे हरी झंडी दिखा दी जाए, तो भाई अब हो जाएगा ना हमारा सफ़र और भी ज़्यादा आसान।

You are listening to कानपुर की दिल की धड़कन FM 102.2 रेनबो कानपुर।

और दोस्तों जानते हैं स्पोर्ट्स डेस्क में कानपुर की क्या हाल है इस समय। अगर हम कानपुर की बात करें तो भाई चेस टूर्नामेंट में नन्हे खिलाड़ियों ने शहर के दिखा दिया है अपना टैलेंट और अपनी बुद्धि का कमाल। जी हां, महाराष्ट्र मंडल में हुआ है ये टूर्नामेंट और बहुत अच्छी बात यह है कि इस टूर्नामेंट में लड़कियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और इसके अलावा कानपुर सुपर प्रीमियर लीग में फरहान के अर्धशतक से SS क्रिकेटर्स ने दर्ज की है जीत और आने वाली 16 मई से वाराणसी में बनारस ट्रॉफी के लिए पूरे के पूरे देश भर से बॉक्सर जो है वो अपना दम दिखाने वाले हैं। और अब अगर बात करें IPL 2026 की तो भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत के साथ मुंबई इंडियंस टीम जो है वो IPL 2026 से ऑफिशियली तौर पर बाहर हो चुकी है। इसके अलावा लखनऊ जॉइंट्स का भी पत्ता कट चुका है। अब प्लेऑफ की रेस में हैं बस 8 टीमें।

सू उतर ना पाए। म्यूजिक ऐसा जो सीधे आपके दिल में समाए। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.2 कानपुर की दिल की धड़कन।

0: और चलिए अब बात कर लेते हैं कानपुर के मौसम की।
1: क्या है दिलों का न पूछो सनम हाल।
0: दिलों का हाल कुछ भी हो दोस्तों, मगर कानपुर का हाल मौसम कुछ ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में सारे मौसम एक साथ देख लिए हैं, कभी गर्म कभी नरम और कभी झमाझम।

ना जी ना, हंसने वाली बात नहीं है ये, सीरियस बात है, क्योंकि इसे ही कहते हैं क्लाइमेट कियोस। और ये जो है ना वो सचमुच बहुत सारी परेशानियों का सबब बनता है, कई बार तो बहुत खतरनाक भी होता है। अब अगर आज के मौसम की हम बात करें तो इस वक्त घड़ी ने बजाया है 7:54 और टेम्परेचर है अभी का 26°C, जो दिन चढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम जा सकता है 36°C तक। दिन बिल्कुल सनी बनी रहेगा, यानी कि खिलखिलाती सी धूप रहेगी पूरे के पूरे दिन, और ह्यूमिडिटी का हाल है 61%, यानी कि दिन रूखा सूखा होने वाला है। और ऐसे में एयर क्वालिटी भी 99 के इंडेक्स पर एकदम पुअर जा रही है दोस्तों। तो ऐसे में थोड़े पेड़ पौधे और लगाने के लिए मोटिवेट हो जाइए, क्योंकि फिलहाल रेशमी हवाएं जो है ना वो सिर्फ ख्यालों में या सिर्फ गीतों में ही मिल सकती हैं।

और रब इस दुआ के साथ कि आपकी सिर्फ मॉर्निंग ही गुड वाली ना हो बल्कि पूरा का पूरा दिन हो जाए गुड बेटर बेस्ट। आपको कनेक्ट कर रही हूं अब अपने न्यूज रूम के साथ जहां से आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित होने वाले समाचार। मैं अब आपसे मिलूंगी सुबह 8:30 बजे, लेकर आऊंगी सुरों की पुरानी महफिल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। NDA में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना

0: का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
4: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
5: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी

0: तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-01-04-81, 011-23-71-71-17 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के

शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो संगिनी रंजना और लेकर आ गई हूं सुरों की पुरानी महफिल 102.2 एफएम रेनबो पर। तो सुनवाते हैं आपको बैक टू बैक गुजरे जमाने के कुछ ऐसे गाने जो आज भी हमारी जिंदगी में खुशनुमा रंग भर जाते हैं।

0: पहला खुमार।
1: हाय दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट को।

0: सुरों की पुरानी महफिल के इन महकते लम्हों को अब यहीं समेटते हैं दोस्तों, और चलते हैं अब अपने अगले प्रोग्राम की ओर। सुनते हैं प्रोग्राम रस बहार मेरे यानी रेडियो संगनी रंजना के साथ बस थोड़ी ही देर में।
1: सारे गा पदा निदा पगरे गा मगरे गा सागा।
2: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
2: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
1: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
3: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
2: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
1: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है
2: airkansomedia@gmail.com।
1: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी।
5: यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगनी रंजना और प्रोग्राम शुरू हो चुका है रस बहार। और आज रस बहार में करते हैं कुछ दिल की बात।

0: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
1: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
0: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
2: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
1: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
0: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है
1: airkansomedia@gmail.com।
0: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
3: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
3: नमस्ते कानपुर, मैं हूँ मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

प्यार। दोस्तों, ये शब्द जितना छोटा है ना, इसके मायने कहीं ज़्यादा बड़े हैं और इसका एहसास उतना ही ज़्यादा गहरा है। ना दोस्ती के बिना मुकम्मल है ये और ना ही जज्बात के बिना। आज इस भाग दौड़ वाले दौर में कुछ समय सुकून के नाम, और ये जो सुकून है ना, ये है सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत।

एक वक्त था दोस्तों जब साथ रहने को ही प्यार समझा जाता था। हाँ भाई, जिसे प्रेम होता है उसके साथ रहने का दिल तो करता ही है, लेकिन अब तो लॉन्ग डिस्टेंस वाला प्यार और रिश्ता भी होता है। अब साथ रहने की चाहत तो होती है मगर किसी वजह से साथ रह नहीं सकते, और ऐसे में बातचीत हो जाती है बहुत ज़रूरी। फिर चाहे वीडियो कॉल्स हो या छोटा सा ही मैसेज क्यों ना हो, प्यार जाहिर करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है।

0: और सुनिए जरा ध्यान से, हाँ हाँ पास आइए, पास से सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए भाई। ये जो पुराने जमाने की चिट्ठी पत्री थी ना, उसको तो हम भूल ही गए हैं। अब ये नए जमाने की मोहब्बत क्या सिर्फ शेयर्ड और फॉरवर्डेड मैसेजेस पर ही चलेगी? अरे नहीं जनाब, चिट्ठी लिखिए ना किसे अपने को, भले ही रंग रूप बदल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कर दीजिए इसे, मगर शब्दों में प्यार की गर्माहट वही रहनी चाहिए। एक बार भेज कर तो देखिए, बदले में जो रिप्लाई आएगा ना, उससे बेहतर तोहफा तो भाई कोई हो ही नहीं सकता है। फिलहाल ये तोहफा हमारी ओर से आपके लिए।
1: फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल।

और फलक तक साथ चलने वाले किसी ऐसे कपल से कभी आप मिले ना जिनका रिश्ता बहुत लंबे समय से चल रहा हो, लेकिन जनाब शर्त ये है कि यहाँ पर सच्चा वाला प्यार होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता महज प्रेम की गारंटी नहीं होता है। उनसे जब बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक दूसरे को वैसे ही अपनाया है जैसे कि वो हैं। और ये जो बात है ना, ये प्यार को ज़िंदगी भर बनाए रखता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को बदलने की कोशिश नहीं की जाती। तो ऐसे में किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता। अगर कुछ होता है तो वो है सिर्फ प्यार, सिर्फ प्रेम, सिर्फ मोहब्बत।

और इसके साथ ही समय हो चला है कि इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम दें, लेकिन प्यार का ये जो रस है, दिलों की ये जो बहार है, वो हमेशा यूं ही कायम रहे, ऐसी दुआ है। 102.2 FM रेनबो पर इस समय रेडियो संगनी रंजना है आपके साथ दोस्तों, और अब टाइम है प्रोग्राम विविधा का। विविधा में आज बारी है चित्रपट से की, और इसे हम सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

लीजिए सुनिए प्रोग्राम चित्रपट से 102.2 FM रेनबो कानपुर से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना।

0: इसके साथ ही यही पूरा होता है चित्रपट से। अब ले रही हूँ एक घंटे का ब्रेक, तब तक आप सुनिए रेनबो लखनऊ। मैं अब आपसे मिलूंगी सुबह 11 बजे, लेकर आऊंगी प्रोग्राम हम नवा। आज मेरे यानी रेडियो संगनी रंजना के साथ होंगी आरजे पूर्णिमा।
1: नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं, आप सुनिए।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री की यह अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जल मध्य डमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश की बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री से नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के समर्पण, नवाचार और दृढ़ता को नमन किया है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में वर्ष 1998 में सफल पोखरण परमाणु परीक्षण को संभव बनाने वाले वैज्ञानिकों के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व, राजनीतिक साहस और कुशल नेतृत्व को भी याद किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पोखरण से लेकर अंतरिक्ष, डिजिटल नवाचार, रक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में अभूतपूर्व प्रगति तक भारत की यात्रा ज्ञान और आत्मनिर्भरता की शक्ति को दर्शाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को पाती लिखी। पत्र में उन्होंने कहा कि तकनीकी केवल विकास का माध्यम नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार है। प्रदेश सरकार इसी मंत्र पर आगे बढ़ रही है। तकनीकी के साथ चलने का अर्थ सुदृढ़ वर्तमान एवं स्वर्णिम भविष्य की दिशा में अग्रसर होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के जरिए विश्व को देश की वैज्ञानिक प्रतिभा का एहसास दिलाया गया था। 11 मई को ही हंस 3 ने सफल उड़ान भरी थी। स्वदेशी त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। श्री योगी ने कहा कि आज तकनीकी प्रयोगशाला से निकलकर खेत खलिहान तक पहुंच गए। यूपी में रोबोटिक्स और एआई मिशन शुरू किया गया है। यूपी सरकार टेक युवा समर्थ युवा योजना के जरिए युवाओं को आधुनिकतम प्रशिक्षण करवा रही है। मुख्यमंत्री युवाओं से अपील की है कि युवा नवीनतम तकनीकी सीखें, नवाचार अपनाएं और आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। यही पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर भूपेन चौधरी और मनोज पांडे ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। अजीत सिंह पाल तथा डॉ सोमेंद्र तोमर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में शपथ ली। वहीं कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर व हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज आपका दिल आरजे निखिल। 10:04 का समय और 100.7 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं। और ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आ रहा है आप सबके पास, क्योंकि ये जो प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका की नाम है सुपर हिट सॉन्ग्स, और लगातार सुपर हिट सॉन्ग्स आप तक पहुंचते रहेंगे ताकि आपके एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार बरकरार रहे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे म्यूजिकल विद दिल आरजे निखिल।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जी हाँ भाई, अभी आप ये सुपर हिट सॉन्ग सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तेरे नाम। 10:20 का वक्त और आप सुन रहे हैं सुपर हिट सॉन्ग्स। एक प्रोग्राम है हमारा 100.7 FM रेनबो पर।
1: कभी आसान कभी मुश्किल, अजब है प्यार की राहें।
0: और ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक अब आप सुनने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आप मुझे

जी हाँ, आप मुझे अच्छे लगे मूवी से। आप ये प्यारा सा सुपर हिट ट्रैक सुन रहे थे, और जब प्यार बिल्कुल अपने चरम सीमा पर होता है ना, तो बस सबके जुबान से, दिल से यही निकलता है, हम लिखेंगे प्रेम कहानी। तो दोस्तों, सुपर हिट सॉन्ग्स का ये प्रोग्राम चल रहा है और आपके साथ है आपका दिल आरजे खिल। 10:28 का वक्त और लगातार सुपर हिट सॉन्ग्स का सिलसिला बना हुआ है। एक और प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आ रहा है सबके रेडियो सेट्स पर, फ्रॉम द मूवी दिल चले, द वॉइस ऑफ उदित नारायण। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल विद द दिल आरजे निखिल। सुनते रहिए।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जितनी सुपरहिट ये फिल्म उससे भी ज्यादा सुपरहिट ये सॉन्ग। ऐ जाते हुए लम्हो फ्रॉम द मूवी बॉर्डर 2। 10:38 का वक्त आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल, सुनते रहिए सुपरहिट सॉन्ग्स।

जी हाँ, इतना सारा प्यार है। फिलहाल 10:50 का वक्त और मैं हूँ आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल। 100.7 FM रेनबो आप सुन रहे हैं। और अब एक ऐसा म्यूजिकल ट्रैक आप सबके पास आने वाला है जो मूवी इतनी सुपरहिट हुई, इतनी सुपरहिट हुई कि उसका सीक्वल का आज भी लोग इंतजार करते हैं। जी हाँ, म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुनकर तो समझ ही गए होंगे, मूवी का नाम है कोई मिल गया। और इस टाइटल ट्रैक को भी मैं अब आपको सुनवाने जा रहा हूँ जिसका की नाम है कोई मिल गया।

तो दोस्तों चलते चलते, जी हाँ मूवी का भी नाम है और मैं भी आपसे कह रहा हूँ बस चलते चलते, क्योंकि 10:55 का वक्त हो रहा है। तो चलते चलते आपके लिए एक प्यारा सा सुपर हिट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी चलते चलते, एंड सॉन्ग का नाम है सुनो ना सुनो ना। बने रही अपने दिल के साथ आरजे निखिल के साथ, क्योंकि अब इस सॉन्ग के बाद आएगा एक न्यूज ब्रेक, और न्यूज सुनने के बाद आप 11 बजे से आपका एक फेवरेट प्रोग्राम शुरू होगा, संदेश आपका गीत हमारा, और जिसमें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने मन की बात हमसे कह सकते हैं और अपना संदेश प्यारा सा हम तक भेज सकते हैं। उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522 2238852 पर, या फिर 2982377 पर। स्टे ट्यून्ड विद द आरजे निखिल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक दोस्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं और 102.2 FM रेनबो पर इस वक्त मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो संगनी रंजना, और एक बार फिर हाजिर हूं लेकर प्रोग्राम हम नवा।

0: और हमनावा में आज मेरे साथ हैं आरजे पूर्णिमा।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और रंजना कैसे हैं तुम्हारे हालचाल?
0: मेरे हालचाल बताओ तो कैसी लग रही हूँ?
1: बिल्कुल परफेक्ट और फिट, प्यारी स्माइल है तुम्हारे साथ, और बस यही खूबी है हमारे साथ स्टूडियो में इस पॉजिटिव वाइब की, है ना, जो हमारे साथ लिसनर्स भी जुड़ चुके हैं इसमें, और इंतजार जो है वो हमनवा का वो खत्म हो चुका है।
0: बिल्कुल दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इस प्रोग्राम में आज हम करने वाले हैं आपसे बहुत सारी बातें, बात करेंगे थोड़ी सी सेफ्टी की, है ना, रूल्स ऑफ द रोड की, ड्राइविंग के समय कैसी सेफ्टी क्या ध्यान रखें, हम इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते रहेंगे, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भाई जब हम चीज़ों को बनाते हैं और उनको संभालते हैं तो धीरे धीरे क्या करते हैं, उसमें हम विशेषज्ञ बन जाते हैं,
1: बिल्कुल माहिर हो जाते हैं, और उस माहिर होने के पीछे रीजन होता है हमारा बिल्कुल उसमें लगे रहना, है ना, इतनी तो प्रैक्टिस होना कि बस वो काम हो जाए।
0: बिल्कुल, तो बात करेंगे इसमें भी कि किसी भी चीज़ को सीखने के समय जब हम अभ्यास निरंतर बनाए रखते हैं तो किस तरीके से हम उसमें सिद्धहस्त हो जाते हैं। और इसके अलावा गर्मियां भाई बहुत चल रही हैं पूर्णिमा, है ना, और ऐसे में हमारा जो हमारी सेहत है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आने लग जाती है।
1: तो उस सेहत में हम कैसे खुद को दुरुस्त रखें, इस गर्मी से कैसे खुद को बचाव करें, कैसे बचा कर रखें अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को, इस पर बहुत सारी बातें हम करेंगे आपके साथ।
0: और आज बहुत ही खास दिन है इसलिए क्योंकि आज कई जानी मानी हस्तियों को याद करने का दिन है, जैसे कि जे कृष्णमूर्ति, जैसे कि आसफ अली साहब, और एक अगर मैं कहूं कि महबूब लेखक, उन्हें अगर मैं नाम दूं तो गलत नहीं होगा, और वो हैं, आप समझ ही गए होंगे, सादत हसन मंटो।
1: बिल्कुल, उनकी जन्म जयंती इन सभी की हम आपके साथ जरूर सेलिब्रेट करेंगे, और साथ ही स्टार्टअप बहुत ही बढ़िया सा है, इसे नहीं बताते हैं रंजना, है ना, कि क्या है ये, हमारे लिसनर्स थोड़ा सा सीक्रेट रहने देते हैं, वो खुद जब सुनेंगे इस प्रोग्राम को तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे।
0: एक छोटा सा क्लू मैं दे देती हूँ यहाँ पर, ये जो है एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, आप जरूर सुनिएगा, एग्री प्लस टेक्नोलॉजी दोनों को साथ मिलाकर कुछ स्टूडेंट्स ने एक स्टार्टअप तैयार किया है, उसकी बात करेंगे। और हमारा जो हमेशा का एक रेगुलर जो हमनवा की रसोई से निकल कर आती है रेसिपी, वो हम आपको बताएंगे, और वो क्या है, वो ये है कि भाई गर्मियों में जिसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा होती है।
1: बिल्कुल, तो बस कनेक्ट रहिएगा रेनबो कानपुर की इस फ्रिक्वेंसी के साथ, साथ ही हमें मेल्स भेजिएगा, बिल्कुल रहिएगा तैयार अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, और हमारी मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com, और रंजना शुरू करते हैं इस प्रोग्राम का सफ़र इस खूबसूरत से गीत के साथ।
0: बिल्कुल, प्रोग्राम का जो शुरुआत है वो खूबसूरत गीत के साथ जो है ना और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है।

0: अरे पूर्णिमा, ये ना तुम्हारा दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है। इसके जो किनारे ये लगा हुआ है क्रोशिया का लेस,
1: थैंक यू सो मच। सबसे पहले
0: आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है ना क्रोशिया,
1: ट्रेंड में
0: और
1: भी है
0: मुझे तो
1: बिल्कुल।
0: ये बहुत ही पसंद है। मैंने इसको सीखने की भी कोशिश की थी और बहुत मुश्किल है ये बनाना इसको।
1: बिल्कुल, बहुत इसमें मतलब कहते हैं ना कि बहुत बारीकी वाला काम है और मेहनत के साथ साथ ना लगन भी चाहिए भाई इसको सीखने के लिए और बनाने के लिए।
0: हाँ पता है, मैंने भी जब शुरू इसकी शुरुआत की थी तो बहुत मुश्किल लगा मुझे, लेकिन मैंने उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े टुकड़े बनाने
1: हाँ
0: शुरू किए,
1: बनाने
0: और प्रैक्टिस करते करते ना मतलब आज का दिन ऐसा है कि मैं एकदम, अगर कहूँ कि मैं एक्सपर्ट बन गई हूँ अब तो,
1: यानी
0: मैं
1: आंखें
0: मतलब
1: बंद करके भी
0: आंखें बंद करके भी
1: ना
0: बना सकती हूँ। एग्जैक्टली, अगर अंधेरा भी है ना तो भी मेरी क्रोशिया चलती
1: तो
0: रहेगी और डिजाइन
1: रंजना,
0: में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
1: हाँ रंजना ये कमाल है तुम्हारी उस प्रैक्टिस का, जो तुम इस में लगी रही लगी रही लगी रही, और वो तुम्हारी लगन ही है जो आज बिल्कुल निखर कर सामने आई। और तुम बिना देखे अपना उसे देखने की भी जरूरत नहीं है कि तुम्हारे हाथ बस क्रोशिया वो पिन वो हाथ में हो और बस धागे बुनते जाती है और डिजाइन बनकर उभर आती है।
0: हाँ भाई, और कहते भी है ना कि करत करत

0: अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं ना, तो अयोग्य व्यक्ति जो होता है वो भी योग्य बन जाता है, वो भी सही तरीके से सलीके से काम करने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, हम किसी भी अगर कोई भी छोटा कोई वर्कर है या कोई बुनकर रास्ते में भी दिख जाता है या कोई मोची है, वो अपने काम को बड़ी तल्लीनता से कर रहा होता है, कभी सोच कर देखो ना कि कितनी कितनी मेहनत से वो काम कर रहा है, मतलब वो लगन दिखने वाली होती है कि पेशेंस कितना है ना।
0: हाँ, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी देखो कितनी
1: बिल्कुल
0: मुश्किल लगती है ना देखने में कि कैसे बनाया होगा, मगर शुरू शुरू में स्टिचेस ठीक नहीं आते, पर जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत नीट और क्लीन बनने लग जाता है।
1: और बस वो हमारे सूटों में फुलकारी की तरह हम जब देखते

0: देखो ना कि कितनी कितनी मेहनत से वो काम कर रहा है, मतलब वो लगन दिखने वाली होती है कि पेशेंस कितना है ना।
1: हाँ, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी देखो कितनी
0: बिल्कुल
1: मुश्किल लगती है ना देखने में कि कैसे बनाया होगा, मगर शुरू शुरू में स्टिचेस ठीक नहीं आते, पर जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत नीट और क्लीन बनने लग जाता है।
0: और बस वो हमारे सूटों में फुलकारी की तरह हम जब देखते हैं और पहन कर निकलते हैं ना, तो बस हमारे पास कमेंट्स ही कमेंट्स होते हैं।
1: और जैसे हमने भी तो देखो ना, हमने भी तो प्रैक्टिस की है ना बोलने की।
0: बिल्कुल प्रैक्टिस की है हाँ। और आज है कि हमारे लिसनर्स हमारे इस हुनर को पहचानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और कितना सारा प्यार हम उनका देखते हैं जब उनके मेल्स हमारे पास पहुंचते हैं।
1: और आप श्रोताओं का जो ये प्यार हमें मिलता रहता है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। और वैसे भी पूर्णिमा, इंग्लिश में भी कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब आप
0: बिल्कुल
1: जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा पॉलिश्ड होते जाएंगे। और कोई भी हुनर जो होता है ना, वो सही बात है कि एक दिन में तो आता नहीं है, आपको धीरे धीरे लगातार अभ्यास उसका करते ही रहना पड़ता है। जैसे बचपन में मुझे याद है कि हमारी दादी नानी हमें समझाया करती थी कि देखो रस्सी से घिसते घिसते ना पत्थर पर भी निशान पड़ जाता
0: और
1: है।
0: रंजना ये वो कहावत है जिसे सुनकर शायद हर बच्चा बड़ा होता है ना, क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि उस समय तो कुआं और बाल्टी रस्सी ही चला करती थी, और वो
0: रस्सी चला
1: दिखाते थे कि
0: करती
1: देखो इसके घिसने से और सचमुच वहां पर
0: उस रस्सी
1: उसके
0: पर
1: निशान पड़े
0: निशान।
1: होते थे।
0: बिल्कुल ये वो चीजें हैं ना जो, और आज कहीं ना कहीं ये पेशेंस थोड़ा आजकल के बच्चों में कम मिलता है ना। जल्दी से वो हट मतलब अपना पेशेंस खो देते हैं कि नहीं अभी काम होने वाला नहीं है, छोड़ देते हैं, इरिटेट होते हैं। बट कहीं ना कहीं फिर जब उन्हें समझाते हैं कि आज नहीं तो कल ये काम जरूर होगा अगर हम इस पे लगातार लगे रहते हैं।
1: और लगातार लगे रहने के बारे में ना ब्रूसली ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स।
0: कितनी बढ़िया सी
1: मतलब
0: बात है।
1: निरंतरता की कितनी सही उदाहरण इन्होंने दिया है कि कितना ज़्यादा महत्व है आपकी कंटिन्यूटी का। बहुत
0: बिल्कुल
1: ज़रूरी नहीं है कि आप कितना बेहतर कर पाते हैं, लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आप बेहतर ज़रूर
0: जरूर
1: कर
0: करेंगे।
1: पाएंगे।
0: बस ये सोच लेकर चलनी है अपने साथ, और कई सारी चीजें हैं ना जो नहीं हो रही हैं वो कल जरूर होंगी, और उसके बाद जब रंजना जो खुशी होती है ना कि वो काम हमें आ गया, हमने ये काम कर लिया, वो फिर क्या ही
1: बिल्कुल,
0: कहने हैं।
1: मतलब पढ़ाई में भी वही होता है बच्चों के साथ। वो कहते हैं ना, मुझे मैथ्स समझ नहीं आ रही, मुझे साइंस समझ नहीं आ रही, फिजिक्स समझ नहीं आ रही, तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि लिख कर अभ्यास करो, और धीरे धीरे जब तुम
0: बिल्कुल
1: अभ्यास करते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे क्वेश्चंस को, तो एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हें पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में ही सॉल्व कर लोगे, वो
0: बिल्कुल
1: आंसर फिंगर टिप्स पर हो जाएगा। इसी तरह म्यूजिक, म्यूजिक तो हमेशा ना निरंतर रियाज करने के लिए कहता है,
0: बिल्कुल
1: डांस भी हमेशा यही कहता है कि आप थोड़ा ना बहुत प्रैक्टिस करते रहें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जो महारथी होते हैं, जो एक्सपर्ट हैं उस सब्जेक्ट के, वो भी
0: बस
1: धीरे धीरे भूल जाते हैं, है ना।
0: तो बस एक ही मोटिव है इस बात को आज कहने का यहाँ पर, कि बिल्कुल जिंदगी भी ऐसी है, निरंतर सीखने की एक प्रोसेस है जो चलता रहता है रंजना। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, हमारे लिसनर्स कोई भी हो, मैसेज बस यही है कि प्रैक्टिस करते रहें और अपने काम,
1: हाँ,
0: अपने हुनर
1: मतलब
0: को
1: कोई हुनर अगर
0: संभालते
1: आपके
0: रहें।
1: पास नहीं है और आप उसे सीखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, आप सीख नहीं पाएंगे, तो दोस्तों नहीं सीख पाने जैसा कुछ नहीं होता है। सीखने के लिए लग जाइए, लेकिन मन को मजबूत करके प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी पड़ेगी। तो रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करिए और एक दिन देखिए आप उसे ज़रूर सीख जाएंगे और आपके उस हुनर में निखार ज़रूर आ जाएगा।
0: बिल्कुल सोचिए हमारी बात और साथ ही एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा ट्राई।
1: अच्छा, इस ट्रैक में भी ना जो हमारी एक्ट्रेस है, जो हमारी इस फिल्म की हीरोइन है, वो हीरो को डांस करना सिखा रही है कि किस
0: क्या
1: तरीके
0: बात
1: से
0: है,
1: प्रैक्टिस करना है, और आप डांस सीख लेंगे। बहुत सुंदर सा गाना है ये, ज़रूर सुने।

0: भाई प्रैक्टिस करके आप डांस तो सीख ही लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करके एक चीज और सीखी जा सकती है और उसमें एक्सपर्ट बना जा सकता है, वो है पूर्णिमा ड्राइविंग।
1: बिल्कुल, और बहुत ही बिल्कुल संजीदा ये हमारा विषय है, क्योंकि हम हर रोज देखते हैं कि रफ ड्राइविंग से कितने सारे नुकसान होते हैं।
0: नुकसान मतलब हमारा जो डेथ रेट है वो बहुत बढ़ गया है।
1: बिल्कुल, जैसे लाइफ बहुत रन एंड फास्ट वाली है रंजना, वैसे ही लोग आज थोड़ी देर मतलब क्या कहते हैं कि पेशेंस नहीं है, तसल्ली नहीं है, और जरा सी स्पेस मिलता है और वो कहीं से भी दाएं बाएं आए निकाल करके अपनी बाइक
0: हाँ,
1: से चल
0: एक्चुअली
1: देते हैं।
0: ड्राइविंग में एक्सपर्ट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन ना करें। बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर स्पीड में जाएं, बहुत ज़्यादा तेज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके दाएं बाएं भी लोग चल रहे होते हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना। तो पैदल चलने वालों का भी ख्याल रखें और जो साइकिल से जा रहे हैं उनका भी ख्याल रखें, ताकि उनके लिए भी सड़क पर एक सेफ जोन मिल सके।
1: बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है रंजना, क्योंकि हमारे साथ सच में बहुत से लोग होते हैं और हम अपनी सेफ्टी तो भूल ही जाते हैं, साथ ही आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें भी अवॉइड कर देते हैं और कहीं ना कहीं चोट चपेट लग ही जाती है। तो बस अपनी ड्राइविंग को सेफ रखना है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ताकि आप भी सेफ रहें और जो साथ में चलने वाले हैं वो भी बिल्कुल सुरक्षित रहें।
0: और ये सारी बातें आज हम क्यों कर रहे हैं मैं बता देना चाहूँगी कि आज से ना, मतलब आज से क्यों, अभी ये वीक चल रहा है, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, जो कि 8 मई से शुरू हुआ है और 14 मई तक रहेगा, है ना। और ये इसलिए मनाया जा रहा है ताकि जो सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं उनके प्रति हम जागरूक हो सकें और सेफ ड्राइविंग को बढ़ावा दिया जा सके और सड़क दुर्घटना में होने वाली जो मृत्यु दर है ना उसको कम किया जा सके। यहाँ पर अभी 2030 तक का हमारा ये ग्लोबल टास्क भी है कि जो मृत्यु दर है उसको आधा कर दिया जाए।
1: बिल्कुल, तो रंजना बस इसका एक ही मोटिव बताए कि 14 मई निकल जाएगी, लेकिन ये वीक का जो मोटिव है वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, ताकि हम ये वीक इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि एम्फसाइज कर सके लोगों को कि सेफ ड्राइविंग, सुरक्षित ड्राइविंग ही हमारी ज़िंदगी का सबसे मूल मंत्र है।
0: अच्छा, और ज़्यादा सुरक्षित ड्राइविंग आप कैसे कर सकती हैं? मुझे पता है कि पूर्णिमा

0: में भी पता होगा कि क्या क्या हमारे रूल्स हैं, सेफ्टी रूल्स हैं, और हमारे श्रोता भी इन रूल्स को फॉलो करते होंगे और जानते भी होंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्रैफिक अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सड़क पर आप सुरक्षित चल सकते हैं। तो लीजिए सुनते हैं उन्हें।
1: नमस्कार कानपुर, मैं एसीपी आईपी सिंह। सभी श्रोताओं से कानपुर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मेरी अपील है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आपका जीवन बहुमूल्य है। यातायात नियम आपकी सुरक्षा एवं सुविधा के लिए हैं, इसलिए इसका पालन अवश्य करें। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य ही करें। शराब पीकर वाहन न चलाएं। निर्धारित गति से अधिक गति पे अपने वाहन न चलाएं। नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें। इसके साथ साथ वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। यातायात नियमों का पालन कर आप अपना व दूसरों के सफर को सुरक्षित एवं सुगम बनाएं। ट्रैफिक से संबंधित किसी भी समस्या या सुझाव के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9305104340 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
0: तो आपको ट्रैफिक का हेल्पलाइन नंबर भी मिल गया है। किसी भी तरह की अगर आपको समस्या आती है तो आपने नंबर ज़रूर नोट कर लिया होगा, वहाँ पर आप फ़ोन कर सकते हैं और आपको वहाँ से हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे लगता है कि सड़क पर अगर आप निकल रहे हैं, आपके पास कोई भी गाड़ी है, दोपहिया चार पहिया, और आप पैदल भी निकल रहे हैं, तो आपको सड़क सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो ड्राइविंग कर रहे हैं, जो गाड़ी में है, वही ध्यान रखें। हम अगर पैदल चल रहे हैं तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम दाएँ बाएँ देख कर चलें और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ हम रोड को क्रॉस करें, कहीं से भी निकलने की कोशिश नहीं करें।
2: ये चीजें आखिर क्यों बनाई गई हैं? अगर रोड पर कोई चीजें हैं, कोई ट्रैफिक रूल्स, कोई लाइट्स हैं, तो क्यों हैं और क्यों फॉलो करनी है?
0: तो बस भाई वही बात है कि पहले दाएं देखिए, फिर बाएं देखिए, फिर दाएं देखिए और उसके बाद आगे बढ़िए।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमनवा। मैं हूं रंजना और मेरे साथ हैं आरजे पूर्णिमा। और पूर्णिमा, टाइम हो गया है एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो हम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।
2: और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगनी रंजना।
3: और मैं हूं आपके साथ आपकी रेनबो होस्ट आरजे पूर्णिमा।
2: प्रोग्राम चल रहा है हम नवा। और भाई पूर्णिमा, गर्मी बहुत है, हालांकि हम स्टूडियो में बहुत आराम से बैठे हुए हैं, मगर बाहर अगर देखा जाए तो इस समय बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई है।
3: बिल्कुल निकली है रंजना, क्योंकि तुम अर्ली मॉर्निंग आई हो तो तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी आ रही हूँ, मतलब
2: बिल्कुल
3: वाकई बहुत गर्म है और इस गर्मी से बचना ही सबसे ज्यादा जरूरी है।
2: अच्छा, ये जो धूप होती है ना, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है। एक तो टैन कर देती है, मतलब आपका मेरा गोरा रंग तो मतलब वो मुझे गीत याद आ गया कि मेरा गोरा रंग ले ले, मुझे श्याम रंग दे दे। लेकिन श्याम रंग नहीं दे, क्योंकि कई बार अगर आप गोरे हैं तो सनबर्न्स भी हो जाते हैं स्किन पर। और सबसे बड़ी मुश्किल तब होती है जब स्वेटिंग होती है और इचिंग शुरू हो जाती है ना, घमौरियाँ हो जाती हैं, तो ये स्किन प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं। और अगर आप बहुत तेज धूप में बाहर निकले हैं, आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो चक्कर भी आने लगते हैं, और जिसको हम कहते हैं लू लगना, यानी कि हीट स्ट्रोक।
3: बिल्कुल, और ये वो है जो हर गर्मी हमें परेशान करती है। और हर बार हमारी कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स के जरिए आपसे ये हमेशा मैसेजेस जाते हैं या हम जानकारी पहुंचाते हैं कि आप इस हीट स्ट्रोक से कैसे खुद को बचा सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसे में क्या होता है ना कि हमें स्टमक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। क्या होता है कि एक तो हम खाना गर्मियों में बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो अगर हमने थोड़ा रखा हुआ खाना खा लिया तो कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सड़क के किनारे का अगर हमने स्ट्रीट वेंडर्स का खाना खा लिया, बाहर का खाना खा लिया कभी, तो कई बार ये संभावना रहती है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, किसी तरह का स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है। तो एक बड़ी दिक्कत गर्मियों में ऐसी रहती ही रहती है।
3: उसके और सबसे अच्छा रंजना ऑप्शन ये रहता है कि ना, हम घर से पहली बार तो खाली पेट ना निकले, है ना, अच्छे से ब्रेकफास्ट करके, और ब्रेकफास्ट में लाइट

0: ही फूड हम मतलब जो भी नाश्ता करें वो हल्का हो, जैसे कि हम उपमा ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, ऑयली चीज़ खाना बिल्कुल अवॉइड करें। और ख़ास तौर पर बाहर जो लोग स्ट्रीट का फूड जो खाएं लगते हैं कि थोड़ा सा टाइम मिला नहीं बना सकते हैं, नहीं लेकर आए हैं, तो ये अवॉइड करें क्योंकि गर्मी में ये नुकसान हमें कर जाता है।
1: और ऐसे में क्या होता है ना कि जब हम बाहर निकल रहे होते हैं, एक और बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ है, वो है आंखें आना, है ना।
0: बिल्कुल
1: कंजक्टिवाइटिस भी गर्मियों में जो बरसात तक रहता है, ये इन्फेक्शन हो जाता है आंखों का, तो उसका भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल गर्मियों में रखना पड़ता है।
0: गर्मी है तो वो अपने साथ जो ये सारी चीज़ें हैं वो लेकर आएगी ही आएगी, बट हमारी समझदारी ये है रंजना कि हम पहले से प्रिपेयर होकर चले, सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते चले ताकि हम इन हीट स्ट्रोक से या जो भी प्रॉब्लम्स होते हमारी स्किन की हैं या जो हमारे पेट से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो सारी प्रॉब्लम्स ना हो। हम थोड़ी थोड़ी
1: अच्छा,
0: रेमेडीज़ भी कर सकते हैं जो हमारी फीमेल फ्रेंड्स हैं वो करती भी हैं, कि हम मुल्तानी मिट्टी जिसकी तासीर ठंडी होती
1: राइट,
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: गुलाब जल
1: गुलाब
0: में,
1: जल, हाँ
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। हम टमाटर के रस को लगा सकते हैं
1: हम
0: ताकि
1: एलोवेरा
0: टैनिन
1: भी
0: है ना
1: यूज़ कर
0: कम,
1: सकते हैं ना, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: वो ठंडक देता है। और इसके अलावा अगर हम खीरे का रस और थोड़ा सा ठंडा पानी गुलाब जल मिला करके एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में भर के रख लेते हैं, तो वो भी जब हम स्प्रे करते हैं अपने स्किन पर, तो बहुत ठंडक
0: बिल्कुल
1: का एहसास होता है
0: ठंडक
1: उसमें।
0: महसूस होता है और बड़ा रिलैक्स लगता है रंजना, जब आप उसकी स्लाइस खीरे की काट करके आप आंखों में रख कर लेते हैं ना, तो वो मिलता है बस वो सुकून, जो रिलैक्सेशन हमारी आंखों को हमारे मन को दिमाग को मिलता है ना, वो वाकई बहुत अच्छा होता है।
1: तो चलो, ये तो स्किन और आई केयर हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे तुमने कहा कि हमेशा घर से जब भी निकलें तो खाली पेट ना निकलें, इससे अगर आप खाली पेट निकल रहे हैं तो लू लगने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और हल्का खाना खाएं, साथ ही यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जस्ट बाहर निकलने से पहले एक ग्लास पानी पीकर ज़रूर निकलें,
0: बिल्कुल
1: तो ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट रखता है और हीट स्ट्रोक से भी बचाता है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको ना पानी बहुत पीना है, हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट नहीं हो, आपको चक्कर नहीं आए और जो लू है ना इसके थपेड़े आपका कुछ भी बिगाड़ ना
0: और
1: पाए।
0: रंजना हम ये भी कर सकते हैं कि हम नॉर्मल पानी ना पी करके, क्योंकि हमें स्वेटिंग होती है उसके थ्रू हमारे जो बॉडी से हैं कई सारे जो है निकल जाते हैं मतलब,
1: इलेक्ट्रोलाइट जो है वो
0: हाँ
1: निकल
0: वो,
1: जाते हैं।
0: तो हम उन्हें ले सकते हैं ताकि पानी, हम नींबू पानी पी सकते हैं, शिकंजी वाला पानी पी सकते हैं या फिर नारियल पानी पी सकते हैं, या जो कोल्ड ड्रिंक हो सके तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए है ना, क्योंकि उसमें
1: अवॉइड मतलब
0: शुगर
1: बिल्कुल
0: का
1: पूरी तरह
0: कंटेंट
1: छोड़
0: बहुत
1: देनी चाहिए,
0: ज़्यादा।
1: क्योंकि उससे लाभ कुछ भी नहीं है। अगर आपको पीना है तो शिकंजी पीजिए, लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, है
0: छाछ
1: ना,
0: पीजिए
1: इनसे आपको फायदे होंगे, नुकसान नहीं होगा।
0: बिल्कुल। और एक गर्मी का जो सुपर फूड है ना रंजना, वो शायद पुराने लोग जो करते चले आए, पीते चले आए, उसे ये सत्तू जो आजकल का सुपर फूड है उसे ब्रेकफास्ट में ज़रूर लें, या तो ये हमें अंदर से ठंडा रखता है, हमें लू लगने से बचाता है।
1: सत्तू को आप ड्रिंक्स की तरह भी यूज़ कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं, और तो इससे क्या होता है कि एक प्रोटीन ड्रिंक भी तैयार हो जाता है और आपको ठंडक भी देता है।
0: और हमारा जो पेट है वो भी फिल फील होता है, भरा हुआ सा महसूस होता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: एक और चीज़ मुझे अभी अभी याद आ रही है कि जैसे हम पानी की बात चली, तो गर्मियों में बहुत सारे सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे आते हैं जिनमें पानी की भरपूर मात्रा होती है,
0: हाँ
1: तो आप उनका भी सेवन करिए, वो बहुत फ़ायदेमंद है, और आपकी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके स्टमक के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद
0: बिल्कुल,
1: है।
0: मतलब प्रकृति ने हमें भर भर की चीजें दी हैं, हमारे सीजन के हिसाब से बस हमें उसे खाते रहना
1: हाँ,
0: है
1: और गर्मियों में बहुत ख्याल जो रखना है वो है कपड़ों का, तो नेचुरल फाइबर्स आप पहने, हल्के
0: बिल्कुल
1: पहने, ब्रीथेबल कपड़े पहने, बहुत ज़रूरी है। और इन सब के साथ ये ज़रूरी है कि अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ढक कर रखें।
0: ढककर रखें बिल्कुल।
1: बाहर जब निकलें तो आप सनग्लासेस का यूज़ करें, ताकि ये फैशन तो बनाएगा ही, स्टाइल तो दिखाएगा ही दिखाएगा,
0: हाँ
1: साथ
0: हमारी
1: ही साथ
0: आंखों की
1: आपको
0: सुरक्षा
1: धूप से भी
0: करेगा
1: बचाएगा, आपकी
0: बिल्कुल
1: आंखों को सुरक्षित रखेगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी पूर्णिमा, कि हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़ ना करें, हल्के फुल्के व्यायाम करें, और अगर हम योगासन करते हैं हल्के फुल्के तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहते हैं, क्योंकि गर्मी में जब हम बहुत ज़्यादा
0: बिल्कुल।
1: एक्टिव हो जाते हैं तो अंदर से हम फिर बहुत थकान महसूस करते हैं।
0: तो बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं दोस्तों, इन्हें याद रखनी है ताकि आप खुद से इस गर्मी से बचा सकें है ना, और हम फिलहाल आपको पहुंचा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपके मोबाइल एंड रेडियो सेट्स पर हमारे हमनवा प्रोग्राम से।

0: अच्छा भाई पूर्णिमा, ये गीत जो खाने पीने का हमने सुना है ना, जो
1: वाकई
0: स्वाद स्वाद की जो यात्रा हमारी शुरू होने वाली है वो समय से पहले ही जागृत हो गई है, लेकिन हम थोड़ी देर बाद अपनी रेसिपी शेयर करेंगे यहाँ पर। आज हम बात करेंगे उनकी जिनको आज का ये जो दिन है वो याद कर रहा है, और सबसे पहले बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति की, जो एक आध्यात्मिक शिक्षक रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: दर्शन और अध्यात्म के लेखक रहे हैं। और उनके जो शैक्षिक विचारों की अगर हम बात करें ना पूर्णिमा, तो वो एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दे। उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा केवल आजीविका को कमाना या परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेना या उसमें अच्छे नंबर्स ले आना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पारंपरिक शिक्षा के बजाय जो पूर्ण मानव का विकास होता है ना, शिक्षा उस पर केंद्रित होनी चाहिए, जो आपके आत्मज्ञान को बढ़ाए, आपको स्वतंत्र जीना सिखाए और प्रेम पर आधारित हो।
1: बिल्कुल, और ये उनकी खूबी थी रंजना, कि उन्होंने जीवन शिक्षा, आत्मज्ञान और स्वतंत्रता जैसे विषयों पर गहरी सोच दी और खुद को किसी भी धार्मिक संगठन या विचारधारा से दूर रखा। और
0: अच्छा
1: आज के
0: बात
1: दिन
0: करेंगे आसफ अली साहब की। आज

0: उनकी भी जयंती है और उन्हें हम एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर जानते हैं। भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका के वो पहले राजदूत भी थे और उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने काम किया था।
1: और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी उन्होंने अहम भूमिका निभाई और एक उस समय जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उन्होंने उन्हें उनका बचाव किया और 1946 में वो अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री भी रहे रंजना, और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले भारतीय राजदूत बन करके उड़ीसा के राज्यपाल के पदभार को भी उन्होंने बखूबी संभाला।
0: अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे लेखक की जिनका नाम सुनते ही लोगों की आंखें जो है ना वो चौड़ी हो जाती हैं, आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, क्योंकि उनकी कहानियां ही कुछ ऐसी हैं। और उन्होंने हमेशा कहा है कि जो उनकी कहानियां हैं वो सामाजिक आईना हैं।
1: बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि उनकी कहानियाँ बोलती हैं, उस समाज के उस तस्वीर को उजागर करती हैं जिससे हम शायद कई बार बात करने में भी हिचकते हैं। उन्होंने उन मुद्दों को उठा करके अपनी रचनाओं में दिखाया है।
0: हम बात कर रहे हैं सआदत हसन मंटो की, और इनके ऊपर एक हिंदी फिल्म भी बनी है, आप सबने ज़रूर देखी होगी, और उनकी ज़िंदगी से, उनकी कहानियों से रूबरू भी हुए होंगे। वो एक पत्रकार थे, कथाकार थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, और उन्हें मैं ऐसा मानती हूँ कि वो समय से बहुत आगे के लेखक थे, क्योंकि जो उन्होंने तब लिखा था वो आज भी उतना ही सही ठहरता है।
1: और रंजना, यही एक शायद रीजन भी रहा कि समाज की सच्चाई लिखने के कारण ही उनकी कई कहानियां विवादों में भी रही, और पर उन्होंने कहते हैं ना उनके पास वो गुण था कि उन्होंने कलम से समझौता नहीं किया, और उनकी दो तीन जो है वो मशहूर कहानियां रही, उनमें से खोल दो या टोबा टेक सिंह और काली सलवार, ये कुछ उनकी मशहूर कहानियां थी, और उनकी रचनाओं में भारत पाकिस्तान विभाजन का दर्द हम बखूबी देख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और उनकी जो मशहूर कहानियां हैं वो भी विभाजन के बाद लिखी गई कहानियां हैं, क्योंकि हमने उस दर्द को महसूस किया है जब भी हमने उन कहानियों को पढ़ा है। और इसके अलावा एक बहुत ख़ास बात जो मंटो की है वो मैं बताना चाहूँगी कि 1941 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो यानी कि हमारी आकाशवाणी के लिए लिखना शुरू किया। आज भी हमारे रेडियो पर उनके बहुत सारे नाटक मौजूद हैं और कई बार उनका प्रसारण भी किया जाता है। अगर आपने हो सकता है सुने हो प्रसारित नाटकों को, जैसे कि जेब कतरा, बीमार और
1: बिल्कुल,
0: करवट।
1: और ये सारी कहानियां जो हैं हमें बहुत ही एक कहते हैं ना कि हमें प्रेरणादायक एक तस्वीर दिखाती हैं हमारे समाज की, जो हमें जोड़ कर रखती हैं उनकी विचारधारा से, और हम उनके साथ उन विचारों के साथ खुद को देखते हैं।
0: असल में उन्होंने बहुत ही ज्वलंत विषयों पर लिखा, और उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं कहानियां नहीं लिखता हूँ, असल में कहानियां मुझे लिखती हैं। तो
1: क्या बात
0: उन्होंने
1: है।
0: अपना परिचय भी इस तरीके से कराया कि कहानियों से ही उनका जीवन है, उनकी ज़िंदगी है, उनकी पहचान है। और उनका कहना था कि अदब की रौनक हमारे दम से है, उन लोगों के दम से नहीं है जिनके पास छापने की मशीनें, स्याही और अनगिनत कागज़ हैं। लिटरेचर का दिया हमारे ही दिमाग के रोगन से रोशन होता है।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ये उनकी पंक्तियाँ थी, उनकी लिखी हुई, जो देखो ना कितनी गहरी बात कहकर जाती हैं, और ये जो लाइनें थी जो रंजना ने भी पढ़ी वो उनकी ही कलम से लिखी हुई लाइनें हैं और हमारे साथ ये साथ चलती हैं, और उनके ही नाम यानी मंटो जी के नाम पर ही ये एक फिल्म भी बनी, जैसा बताया था कि नंदिता दुआसारा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस पर अभिनीत किया है ना।
0: और एक मंटो का रियल कोट है, मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि पहले मज़हब सीनों में हुआ करता था, आजकल टोपियों में होता है, और सियासत भी अब टोपियों में चली गई है। तो उन्होंने कहा है कि जिंदाबाद टोपियाँ। ये एक सटायर है उनका आज की राजनीति पर, जो तभी भी सच था और कहीं ना
1: आज भी
0: कहीं
1: सच
0: आज
1: है,
0: भी सच
1: बिल्कुल।
0: है। तो एक गीत है मेरे पास पूर्णिमा, ये किसी फिल्म का गीत नहीं है, एक नाटक बनाया गया था रंगमंच के लिए, उस नाटक का ये गीत है, और इसको लिखने वाले हैं अख्तर अली साहब।
1: शहादत,
0: अख्तर अली साहब इसके
1: ओके,
0: राइटर हैं, मैं गीत की बात कर रही हूँ
1: बात कर
0: यहाँ
1: रही
0: पर,
1: हूँ।
0: और ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: पहला खुमार।
1: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
2: वन जीरो टू पॉइंट टू FM रेनबो कानपुर से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम नवा।
3: और हम यानी आरजे रंजना और आरजे पूर्णिमा हैं आज आपके साथ इस प्रोग्राम में। और अब हम रंजना बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया से एक इनोवेटिव के इनोवेशन के बारे में, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और गांवों से जुड़ी खेती को नई दिशा देने वाले स्टार्टअप के, जिसका नाम है डी हाट। और ये बिहार से शुरू हुआ स्टार्टअप है और आज देश के हजारों गांवों के किसानों की जिंदगी बदल रहा है और आज कई राज्यों के हजारों गांवों तक ये पहुंच चुका है।
2: अच्छा, एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगी पूर्णिमा, ये डी हाट इसका नाम है या देहात इसका नाम है?
3: इसका हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, देहात भी बोल सकते हैं और डी हाट भी कह सकते हैं।
2: अच्छा, मुझे लगा कि द हाट मतलब हाट को हम हिंदी में अगर कहें, हाट एक हिंदी का ही शब्द है और बाजार के रूप में हम इसे जानते हैं
3: और परिवेश से जुड़ा हुआ।
2: और ये जो स्टार्टअप है ये बाजार ही मुहैया कराता है हमें, यानी कि बीज से लेकर बाजार तक की सारी चीजें जो है वो कृषि लोगों को दिलाता है।
3: बिल्कुल, और देखो ना, कहते हैं ना किसी भी चीज की शुरुआत आसान तो नहीं होती रंजना। और ये भी ना, बिहार के जो कुछ युवक थे उन्होंने शुरू किया, जिसमें हम शशांक कुमार और उनकी टीम का नाम ले सकते हैं। उनका उद्देश्य बस यही था कि किसानों की जो परेशानियां उनको उस समय आती हैं, जो उन्होंने महसूस करी कि देखी कि गाँव में अक्सर सही बीज नहीं मिल रहा है या खाद नहीं मिल रही है, मौसम की जानकारी सही से नहीं मिल पा रही है या फसल बेचने का सही समय कौन सा है। जब ये सारी परेशानियां उन्होंने परेशानियों को देखा तो उसे ऑब्जर्व किया और फिर इस क्रिएशन की जो है आइडिया दिमाग में आया और उन्होंने ये स्टार्टअप तैयार कर दिया।
2: अच्छा, मैंने सुना है कि ये मिट्टी की जांच और खेती से संबंधित जो सलाह है वो भी निःशुल्क देते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है, और इसीलिए आज ये हर किसान की पहली पसंद है। और खेती की सलाह और जो बिक्री की सलाह या इसके साथ जो जो भी खेती से जुड़ी समस्याएं आती हैं, अमूमन वो सारी जानकारियां हमें यहाँ पर इस एक प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। और जो इसका एक और भी है रंजना, की जो बीज की बिचौलिए होते हैं इनसे भी, क्योंकि हम डायरेक्ट इससे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इससे, तो ये जो बिचौलियों का काम है ना, जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अपना एक फायदा,
2: एक लाभ उनको मिल जाता है, एक प्रॉफिट उनको मिल जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है।
3: हाँ।
2: अगर बीच में कोई नहीं होता है तो वो प्रोडक्ट जो है हमें थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है।
3: तो ये भी चीजें नहीं है, यानी कि बहुत ही स्मार्ट सा है ये, और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे बदलते भारत की एक तस्वीर है। और ये हमारे इनोवेशन की, यानी अब शहर भी दूर नहीं है और गाँव भी दूर नहीं है जब इनोवेशन हमारे साथ है।
2: अच्छा, ये निकला तो बिहार के एक स्टूडेंट के दिमाग से था, लेकिन अभी कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है?
3: ये कहाँ तक पहुँचा है, इसका बहुत ही जो है इसका विस्तृत रूप हो चुका है। एक नहीं बल्कि राज्यों के कई गांव, यानी हजारों गांव इससे जुड़े हैं रंजना, और बहुत ही बड़े सर्कल पर ये आज काम कर रहा है।
2: तो पूरे देश के लोग जो हैं इस के साथ जुड़ चुके हैं, इस एग्री कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं और अपने हिसाब से वो चीज़ों की एडवाइस ले रहे हैं, कृषि से संबंधित चीज़ों के एडवाइस ले रहे हैं और वहाँ से प्रोडक्ट्स भी मंगवा रहे हैं।
3: मतलब कितनी आसान हो जाती है रंजना चीज़ें जब हमें एक ही जगह

0: सारी जानकारियां मिल जाती हैं, है ना, जैसे हमारा ये प्रोग्राम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी चीज़ों को निकाल कर लाते हैं ताकि हमारे श्रोताओं के वो काम आ सकें, और हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, ताकि हम जो हमारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो आप सभी के साथ हम शेयर कर सकें। और पूर्णिमा, मुझे लगता है कि एक वक्त हो गया है इस समय एक गीत का, तो यहाँ पर प्ले करते हैं और उसके बाद स्वाद लेंगे एक बढ़िया से पकवान का।
0: बिल्कुल।

0: तो बेहद खूबसूरत से ये गीत आपने सुना। शाहरुख खान की एक फिल्म है ये पूर्णिमा, फिर
1: अंजाम
0: भी दिल है हिंदुस्तानी नहीं, अंजाम का गाना है
1: अंजाम
0: ये।
1: का गाना
0: ओ माय
1: है
0: गॉड,
1: मतलब
0: बहुत खूबसूरत गाना है ये
1: तुम
0: अंजाम
1: इतना गाने में
0: फिल्म
1: खो गई, इतनी इतनी मतलब तल्लीनता से सुन रही थी,
0: का।
1: इतनी खोई हुई थी कि ये नहीं पता कि किस मूवी का सॉन्ग था
0: हाँ
1: ये
0: सीरियसली बहुत खूबसूरत
1: हाँ
0: गीत लगा ये मुझे। और आप, क्योंकि टाइम हो गया है हम नवा की रसोई का, बताते हैं एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी। अच्छा पूर्णिमा, गर्मियाँ जब आती हैं ना, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है?
1: सबसे चलते हैं ठंडे ठंडे शेक्स, आइसक्रीम्स।
0: हाँ
1: हाँ हाँ हाँ क्या बात है।
0: आइसक्रीम, फलूदा कुल्फी, है
1: हाँ
0: ना?
1: बस बस
0: तो
1: बस
0: चलो एक
1: यही
0: बढ़िया
1: सारी
0: सी ना
1: चीज़ें।
0: कोको।

0: कोकोनट आइसक्रीम बनाते हैं आज, ठीक है। अब
1: श्योर।
0: सामान इसमें क्या क्या लगेगा, तो वो है नारियल, नारियल हमें कच्चा वाला जो हरा वाला होता है ना, जिसकी चटनी बनती है वो लेना है, और इसकी गिरी निकाल लेनी है, उसका जो ब्राउन सा जो पार्ट होता है उसको
1: वो लेना है,
0: पील कर लेना है, उसको लेना नहीं है, उसको
1: छील
0: हटा
1: लेना
0: देना
1: है।
0: है,
1: ओके।
0: बिल्कुल छील लेना है उसको। और हमें दूध लेना है लगभग 1 लीटर, और थोड़ा सा हमें कॉर्नफ्लोर लेना है लगभग 2 चम्मच। एक कटोरी या स्वाद के अनुसार आप चीनी कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब क्या करना है कि दूध को अच्छे से उबाल लेना है, उसमें चीनी डालकर मिला लेना है अच्छे से। अब कॉर्नफ्लावर में क्या करना है कि उसको मिक्स करना है थोड़े से नॉर्मल दूध में, एक कप में आप रूम टेम्परेचर वाला दूध ले लें और उसको
1: बिल्कुल
0: मिक्स कर लें, और उसमें जो गुलटियाँ पड़ती हैं वो ना
1: वो नहीं
0: पड़ें।
1: पड़ेंगी,
0: उसके
1: बिल्कुल।
0: बाद आप उसको उबलते दूध में ऐड कर दें। इसको मिलाने से क्या होगा कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब इस दूध को अच्छे से उबाल आने दें, उसके बाद अलग रख दें ठंडा करने के लिए। अब नारियल को लें और अच्छे से ग्राइंड कर लें, तो नारियल भी ना एक दूध वाला पेस्ट बन जाएगा। अब इसे मिक्स कर लें एयर टाइट कंटेनर में, उस पूरे मिक्सचर को डाल दें, अच्छे से बंद करें सील करके, और उसके बाद फ्रीज़र में रख दें।
1: क्या बात है।
0: अब आपके फ्रीज़र की सेटिंग क्या है वो आप जाने, लेकिन लगभग 2 घंटे में आपकी आइसक्रीम जो है वो जम चुकी होगी। आप उसको बढ़िया स्कूप में निकाल कर सर्व कर सकते हैं। आप इन्हें कुल्फ़ी मोल्ड्स में भी जमा सकते हैं। और
1: बिल्कुल,
0: सर्व करने के लिए ना एक टिप है पूर्णिमा, अगर आप
1: बहुत
0: थोड़ा
1: स्मार्ट
0: सा,
1: टिप है।
0: हाँ, थोड़ा सा अगर आप इसको फैंसी करना चाहते हैं, जो तो आपने नारियल जिससे निकाला है ना, जो उसका कवर है, जो उसका शेल है, आप
1: अपन
0: उसमें
1: सुने भी।
0: रखकर सर्व कर सकते हैं। और एक और बढ़िया सा आइडिया ये है कि आप उसको सिर्फ सर्व ना करें, बल्कि आप उसमें ही इस दूध को डालें और फ्रीज़र में जमा दें, और दोनों के जो दोनों पार्ट्स हैं ना उनको बंद कर दें। उसके बाद जब आप बच्चों को दिखाएंगे ना, उसको थोड़ा सा टक टक करके और खोलेंगे कि देखो नारियल में से नारियल नहीं,
1: बस
0: नारियल की आइसक्रीम निकली है,
1: बात है,
0: तो
1: तो
0: बच्चे देखो भाई कितना खुश हो जाते हैं। तो छोटे बच्चों को तो यही मज़ा चाहिए।
1: उन्हें यही चाहिए। इवन उन्हें गर्मियों में ना यही चाहिए कि ठंडे ठंडे शेक्स हो, आइसक्रीम्स हो, कुछ भी ऐसी ठंडी पुडिंग हो, या जो हम बस फ्रिज से निकालें और उसे एंजॉय करें, है
0: तो
1: ना।
0: बस आ जाओ घर पे ट्राई करो, और बच्चों को ये जरूर खिलाना।
1: बिल्कुल, और हमारे लिसनर्स भी ज़रूर ये ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा जो शो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसी रेसिपी हर रोज़ लेकर आता है जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, आपके इस मौसम के अकॉर्डिंग होती हैं।
0: और ये ठंडक तो देगा ही देगा, साथ ही साथ ना हेल्दी भी है।
1: हेल्दी भी है, और रंजना हमारे जब लिसनर से बनाएंगे ना तो तुम्हारी बात ज़रूर याद रखेंगे कि उसे सर्व किसने करना है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है।
0: चलिए अब टाइम हो गया है, हमारा जो प्रोग्राम है वो यहीं पर पूरा होता है। फिर कभी आपसे ज़रूर मिलेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन आरजे पूर्णिमा अभी पूरे दिन आपके साथ रहेंगी, और दिन में 3 बजे लेकर आएंगी प्रोग्राम।
1: जी हाँ, मैं प्रोग्राम लेकर आऊंगी म्यूजिकार, और साथ ही 4 बजे से आप सुनेंगे बैक टू बैक म्यूजिकल सॉन्ग्स। रहिएगा कनेक्ट रेनबो कंट्री के साथ, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, अब सुनिए एफएम समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री की यह अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। राज्यपाल आनंदीबेन

पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हो रही हैं। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। चित्रकूट में जनगणना 2027 के अंतर्गत संचालित स्वगणना अभियान के तहत मानिकपुर विधायक अविनाश द्विवेदी ने डिजिटल माध्यम से अपनी स्वगणना करी। श्री द्विवेदी ने नागरिकों से इस अभियान में सहभागी होकर सहयोग करने की अपील की। सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसे में 2 भाइयों की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार अलाउद्दीनपुर गांव के पास रात करीब 2 बजे मजदूर वाहन से सामान उतार रहे थे, इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखंड नगर पहुंचाया गया। थाना प्रभारी धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा, तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बारह बजकर चार मिनट का वक्त। नमस्कार आदाब, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है आपकी होस्ट फातिमा। और ये वक्त है प्रोग्राम शत्रुपा का। आज का हमारा सेगमेंट होता है हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी कंसर्न्स है उससे जुड़ी हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। तो इस सेगमेंट को आज के इस स्लॉट को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक पॉजिटिव डोज के साथ। और पॉजिटिव डोज ये है कि मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि हमारे माँ बाप जब तक हमारे साथ हैं ना तब तक हमें उनकी बहुत केयर करनी चाहिए, उनकी बहुत वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद फिर ना कोई हमें ऐसा प्यार करने वाला मिलता है और ना ही इतनी हमारी कोई फिक्र करने वाला हमें मिलता है। तो और ये जो टाइम हमने उनके साथ स्पेंड किया होता है जब वो हम बड़े हो जाते हैं और वो अपनी बुजुर्गी में प्रवेश कर चुके होते हैं, तो उस मोमेंट पे क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम कम होता है और उनके पास कुछ टाइम ज़्यादा होता है खाली स्पेंड करने के लिए, है ना, तो ऐसे में हम बहुत कम वक्त निकाल पाते हैं उनके साथ बैठने का, उनसे बातें करने का। ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर बात का हम जवाब दें, कुछ बातों को हम शालीनता से सुन लें, भले ही उनका कंसर्न उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग हो हमारे पर्सपेक्टिव से, लेकिन सिर्फ सुन लेना ही काफ़ी इत्मीनान देता है उन्हें। तो बस इसी नोट पर आगाज़ करेंगे आज इस प्रोग्राम का इस बेहतरीन से ट्रैक के साथ, क्योंकि देखते देखते वक्त कैसे गुजर जाता है हमें नहीं पता चलता। और एक दिन ऐसा आता है जब वो हमारे साथ नहीं होते और हम इन पलों को याद करके कुछ मुस्कुराहट अपने चेहरे पर वापस ज़रूर ला पाते। So stay tuned and keep enjoying 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

की अगर हम बात करें तो विमेन्स हेल्थ में पोषण, हार्मोनल संतुलन और मानसिक तंदुरुस्ती सबसे इम्पॉर्टेंट है। उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन हर उम्र में एक महिला को, एक बेटी को कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन की कमी से बचने के लिए बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और ईयरली बेसिस पे हेल्थ चेकअप अनिवार्य हो जाते हैं। हाँ, जब बच्चियाँ हमारी छोटी रहती हैं, जब टीनेजर्स की अवस्था में रहती हैं, तो थोड़े से हेल्थ चेकअप्स हमें अवॉइड करने चाहिए, अनलेस एंड अंटिल कोई फिजिकल आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ रही हो, है ना। देखिए भाई, ये स्वास्थ्य अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब अगर हम डाइटरी नीड

कुछ लोगों को आयरन और प्रोटीन की कमी का सामना करना पड़े, इसके लिए स्प्राउट्स, दूध, पनीर, अंडे और पत्तेदार सब्जियों का सेवन महिलाओं को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा प्रसव के बाद का जो अवसाद, जी हाँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, और वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, डाइटरी नीड्स की जो हमने बात की है ना, वो हर चीज़ को कनेक्ट करती है, लेकिन हम फीमेल्स की हैबिट होती है ना कि हम सबकी नीड्स का तो ख्याल रखते हैं, हर तरीके की नीड्स का, लेकिन जब अपनी नीड्स की बात आती है ना तो हम थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से उसके रेपरकशंस हम सब दे, मतलब आप कह सकते हैं हम जितनी भी महिलाएं फ्रेंड्स हैं ना, हम सब उसके रेपरकशंस झेलते हैं, और बाद में हमें एहसास होता है जब वक्त थोड़ा सा गुजर चुका होता है और उसके बाद हमें कोप अप करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसी से जुड़ी और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिससे जुड़ी आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन पहले हम सोच रहे हैं एक और बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुंचा दें। आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग।

0: अभी कुछ देर पहले हमने आपसे गुफ्तगू की थी इस बारे में कि महिलाओं की जो हेल्थ होती है ना, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनसे ही दुनिया में आगे जो हमारी जनरेशन्स होती है ना, उन्हीं के हेल्प से आगे बढ़ती हैं, राइट। तो हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, जी हाँ, गर्भावस्था की। तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी चुनौतियों का, कई सारे चैलेंजेस का सामना सिर्फ घरवाले नहीं करते, जो इंसान, जो महिला प्रेगनेंट होती है, वो कई सारे चैलेंजेस का सामना करती है। और इन चैलेंजेस में भूख न लगना, मतली आना और तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, कि भाई मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, थकान हो जाती है, बार बार आपके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको तमाम अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब एक्सपर्ट से बात करते हैं, मिलते हैं, उनसे राय लेते हैं, मशवरा करते हैं, और उसके हिसाब से ग्रेजुअली अपना वो जो पीरियड होता है 9 मंथ्स का, वो कवर करते हैं, राइट। आज हमने सोचा इसी से जुड़ा कुछ स्पेशल आपके साथ साझा करते हैं। आज हमने डॉक्टर मंजुलता वर्मा जी की बातचीत श्रीमती नीना सोनकर जी के साथ जो हुई है, उसके बारे में आपके साथ, मतलब वो वार्तालाप सीधे आपके साथ शेयर करेंगे। आप बस हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। तो अगली आवाज़ जो आप सुनेंगी वो होगी डॉक्टर नीना सोनकर जी की।
1: श्रोताओं, आज हमने प्रोग्राम में आमंत्रित किया है स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजुलता वर्मा जी को, जो स्थानीय किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। और ये आज जिस विषय पर हमसे बातचीत करेंगी वो है महिलाओं में अनिद्रा से गर्भावस्था की समस्याएं, यानी महिलाओं में अगर नींद ना पूरी हो तो गर्भावस्था में कैसी समस्याएं आती हैं, इस बारे में। डॉक्टर मंजुलता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद अनीना जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: जी, सबसे पहले तो मंजुलता जी ये बताइए कि नींद हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। 7-8 घंटे की नींद थकान मिटाने के लिए और अपने शरीर को फिर से अच्छी तरह से रिवाइव करने के लिए नींद बहुत जरूरी है। लेकिन जब बात प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था की आती है, तो हम किसी भी गर्भवती स्त्री की खुराक के बारे में बात करते हैं, पौष्टिक आहार के बारे में बात करते हैं, उसमें खून की कमी के बारे में बात करते हैं, लेकिन नींद एक ऐसा शब्द है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि अच्छी नींद गर्भवती के लिए क्यों जरूरी है।
2: बिल्कुल सही बात है नीना जी, हर गर्भवती महिला के लिए जितना जरूरी है अच्छा खान पान और दूसरी देखभाल, उतना ही जरूरी है अच्छी नींद का आना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गर्भवती महिला के लिए अच्छी नींद बहुत ज्यादा आवश्यक है।

0: क्योंकि अगर गर्भवती महिला को अच्छी नींद नहीं आती है तो इसका प्रभाव गर्भ में नहीं होता है
1: जी।
0: इसलिए एक गर्भवती महिला को पूरी नींद लेना बहुत आवश्यक है
1: जी। मंजुलता जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि गर्भावस्था में जैसे आहार जरूरी है और बातें जरूरी हैं, चेकअप जरूरी है, उसी प्रकार भरपूर नींद गर्भावस्था में इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है कि नींद अच्छे से किसी भी गर्भवती स्त्री को आए। अब ये बताइए कि ऐसे कौन से कारण हैं कि गर्भावस्था में नींद का आना कम हो जाता है, और मान लीजिए नींद ना आए तो क्या समस्याएं होती हैं?
0: गर्भावस्था में हमारे जो एक गर्भवती महिला होती है उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कुछ हार्मोन्स के बदलाव आते हैं जिनकी वजह से गर्भवती महिला को अक्सर अनिद्रा होने की या कम नींद होने की या सही से ना सो पाने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: जैसे गर्भवती महिला में कई बार आपने सुना होगा कि कभी किसी को गैस की समस्या हो जाती है, डकार हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, महिला को अच्छा नहीं लगता है तो भरपूर नींद वो नहीं ले पाती है। इसके अलावा जैसे कभी कभी गर्भवती महिला को बार बार पेशाब जाना पड़ता है, अब अगर रात में एक बार पेशाब करने के लिए महिला को उठना पड़ता है, उसकी नींद टूट जाती है, तो उसे दोबारा पूरी नींद को वापस आने में समय लगता है। इसके अलावा ऐसा होता है कि जब गर्भवती महिला का बच्चा बढ़ रहा होता है गर्भ में, तो उसका शरीर आकार में बदलाव आते हैं, पेट का आकार बदलता है, इसकी वजह से महिला को एक्चुअली लेटने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो भली भांति सो नहीं पाती है। आखिरी के 3 महीनों में जब बच्चा पेट के अंदर बहुत घूमने लगता है तो उसकी वजह से, उस घूमने की वजह से बार बार महिला की नींद टूटती है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा सबसे बड़ा कारण, गर्भवती महिलाएं कभी कभी अपने बच्चों से संबंधित चीजों में तनाव की स्थिति पैदा कर लेती हैं। जैसे उन्हें लगता है कि प्रसव होने के बाद शिशु की देखभाल कैसे होएगी, प्रसव के समय किसी तरह की दुर्घटना ना हो जाए, या कुछ महिलाएं डरती हैं कि प्रसव के समय दर्द ना हो, तो इस तरह की बातों से जो उनके मन में मानसिक तनाव की स्थिति पैदा होती है, उससे भी कभी कभी महिलाओं को अनिद्रा की संभावना पैदा होती है
1: जी। अब ये बताइए कि एक गर्भवती महिला को कितना सोना चाहिए कि वो ठीक तरह से अपने शरीर को आराम दे सके?
0: तो जैसे मैंने बोला कि जितना खान पान जरूरी है उतनी ही एक अच्छी नींद, भरपूर नींद स्वस्थ जच्चा और बच्चा के लिए जरूरी है। एक गर्भवती महिला को दिन में कम से कम 10 घंटे का आराम जरूरी है। तो गर्भवती महिला को दिन में कम से कम 2 घंटे और रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए।
1: जी, आपने समयावधि जो बताई, लेकिन मान लीजिए इतने सब उपाय के बाद भी किसी को अगर नींद अच्छे से ना आ रही हो गर्भवती स्त्री को, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा प्राकृतिक उपचार है कि वो करे तो उसे नींद आएगी, या फिर डॉक्टरी परामर्श है, या फिर दोनों है, क्या कहेंगी?
0: बिल्कुल ठीक बात है। अगर किसी गर्भवती महिला को इस तरह की अनिद्रा की कोई समस्या होती है तो उसके लिए प्राकृतिक उपाय भी हैं, और अगर उन प्राकृतिक उपायों से उसकी नींद की समस्या दूर नहीं होती है तो उसे जरूर डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि अमूमन उनको किसी तरह का तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है, वो एक मुख्य कारण होता है नींद ना आने का। तो उसका सबसे अच्छा प्राकृतिक उपचार ये है कि अपने आप को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करें। एक गर्भवती महिला को दिन में हल्का योग करना चाहिए, हल्का व्यायाम करना चाहिए। हॉर्मोन्स के बदलाव की वजह से गर्भवती महिला का शरीर में कुछ अकड़न जैसी आ जाती है, अगर आप हल्का व्यायाम करेंगी तो मांसपेशियां खुली रहेंगी, आपको थकावट नहीं महसूस होगी। सो हल्का योग, हल्का व्यायाम आपको मदद करेगा। इसके अलावा दिन भर में मिर्च मसाला नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आपको बदहजमी ना हो और आपको रात में सोने की दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप जैसे अगर मौसम सही है तो रात में सोने से पहले हल्के गर्म पानी से, गुनगुने पानी से अगर स्नान करती हैं तो उनसे भी मांसपेशियों में आराम मिलता है। सोने से पहले अगर शरीर में बहुत दर्द जैसा महसूस हो रहा है तो आप हल्के तेल की मालिश कर लें, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। ये सब प्राकृतिक उपाय हैं जिनको करने से बहुत हद तक अनिद्रा की समस्या का समाधान होता है।
2: ऑलराइट, 12:26 का वक्त और इस वार्तालाप को हम जारी रखेंगे, लेकिन मैंने सोचा हमारे लिसनर्स के लिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक हो जाए। और मुझे पता है ये सारी जानकारियां हमारी जितनी भी लिसनर्स इस वक्त प्रोग्राम सुन रही है ना, उन सब के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो।

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: बारह बजकर 33 मिनट का वक्त और म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हम बातचीत सुन रहे थे श्रीमती नीना सोनकर जी की। उन्होंने डॉक्टर मंजुलिता वर्मा से एक्सपर्ट एडवाइस के तहत ली, उस कॉन्वर्सेशन को हम कंटिन्यू रखते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं।
2: बताया कि ये प्राकृतिक उपाय हैं और ये डॉक्टरी परामर्श हैं कि जब कोई भी गर्भवती स्त्री आती है आपके पास तो आप उसे बताते हैं कि अगर नींद नहीं आ रही तो तुम्हें ऐसा करना होगा। इसी के साथ साथ कुछ हमारी बहनें ये भी सोचती हैं कि हम अपने शरीर को आराम देने के लिए सोते तो हैं लेकिन ठीक से नींद इसलिए नहीं आती है कि हम जिस करवट सोते हैं दरअसल उस करवट सोने में हमें दिक्कत होती है। तो क्या करवट बदल कर सोना सही है या फिर कभी कभी किसी की आदत पड़ी होती है पेट के बल सोता है, मतलब कैसे किस पोजीशन में सोया जाए? क्या पेट के बल अगर कोई गलती से सो गया तो अंदर जो गर्भस्थ शिशु है उसे दिक्कत हो सकती है, ये बताइए।
3: गर्भावस्था में अनिद्रा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एक भरपूर नींद की पूरी पूरी आवश्यकता होती है
2: जी।
3: अब अगर हम किस अवस्था में सोने की बात करें तो सबसे अच्छा होता है गर्भवती महिला का बाईं करवट लेकर सोना।
2: अच्छा।
3: और ये बाईं करवट लेकर सोना हम लोग इसलिए बताते हैं क्योंकि जब गर्भवती महिला बाईं करवट लेकर सोती है तो उससे शिशु को सबसे अच्छा खून की दौड़ान जाती है। जितना अच्छा खून शिशु को पहुंचेगा उतना अच्छा गर्भ में पल रहे शिशु का विकास होगा। तो सबसे अच्छी अवस्था है बाईं करवट में सोना। लेकिन अगर किसी कारण आपको बाईं करवट सोने में दिक्कत है तो आप थोड़ी देर के लिए दाईं करवट में भी लेट सकती हैं। पेट के बल लेटना बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि उससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको आराम की स्थिति नहीं मिल रही है, आपके पेट के आकार से आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आप अपने पैरों के नीचे तकिया लगा सकती हैं। कुल मिला के आपको अपने सोने की अवस्था ऐसे करनी है जिसमें आप आरामदायक स्थिति में सो सकें।
2: जी डॉक्टर साहब, कहा यह भी जाता है कि गर्भावस्था के दौरान पेट या पीठ के बल ना सोएं, क्या ये सही है जो बातें लोगों के मुंह से सुनी जाती हैं कि पेट और पीठ के बल नहीं सोना है, मतलब बिल्कुल सीधा या फिर पट यानी कि पेट के बल होके लेटना, तो क्या कहना चाहेंगी?
3: जी हाँ, पेट या पीठ के बल सोने को अवॉइड करना चाहिए, नहीं सोना चाहिए क्योंकि अगर ऐसी अवस्था में महिला सोती है तो उससे खून की दौड़ान बच्चे में कम पहुंचती है।
2: जी,
3: जो उसका बढ़ता हुआ बच्चेदानी होती है उसमें खून कम पहुंचता है और उसकी वजह से शिशु को खून कम पहुंचता है तो शिशु के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए डॉक्टर्स बताते हैं कि उन्हें बाईं करवट सोना चाहिए।
2: जी, अब ये बताइए, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सोने के पहले किसी भी गर्भवती स्त्री को टहलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, ये कितना सही है या नहीं है?
3: बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप सोने से पहले थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा टहलते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपने जो भी खाना खाया है वो पाचक स्थिति में पहुंच जाता है। अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत सोने का विचार करती हैं और बिल्कुल भी आपका खाना पचा नहीं है तो उसमें सबसे ज्यादा महिला को खट्टी खट्टी डकारे आना, अपच जैसी चीजें महसूस होना, बदहजमी होना, जिसकी वजह से सोने की दिक्कत होती है। इसलिए बहुत अच्छा नहीं करने है, सिर्फ हल्का व्यायाम, और उसमें सबसे अच्छा ये है कि आप थोड़ी देर टहलना करें जिससे कि आपको सोने में आराम मिलेगा।
2: जी डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि गर्भावस्था में सोने से पहले तरल पेय पदार्थ लेना चाहिए, मसलन कुछ लोग दूध लेते हैं, कुछ लोग पानी पीते हैं, कुछ लोग जूस प्रेफर करते हैं, तो क्या ये सही है?
3: बिल्कुल ठीक बात है, गर्भावस्था में वैसे भी माँ का तरल पदार्थ लेना बच्चे के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूध महिला को पीना ही चाहिए क्योंकि उससे बच्चे की हड्डी का विकास होना होता है। अगर माँ तरल पदार्थ में पानी और इसका सेवन अच्छा करती है तो उससे बच्चे के चारों तरफ पानी अच्छा रहता है, इसलिए ये सब चीजें एक गर्भवती महिला को कर

0: करनी चाहिए, लेकिन सोने से जस्ट पहले आपको दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं तो फिर आपको फिर से वही बदहजमी और डकार की समस्या होगी जिससे अनिद्रा की समस्या पैदा हो सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई, अब ये बताइए कि कुछ व्यायाम वाकई में ऐसे होते हैं जो निद्रा में सहायक होते हैं?
0: जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि तनाव होना या फिर शरीर में ऐंठन होना या प्रेगनेंसी की गर्भावस्था की वजह से हाथ पैर की मांसपेशियों में बहुत दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, इन सब कारणों से अमूमन महिला को निद्रा आने में दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों का एक उपाय है हल्का व्यायाम। जैसे आप हल्के तेल की मालिश करके अपने हाथ पैर की मांसपेशियों को ठीक कर सकते हैं, पीठ की मालिश करवा सकते हैं, और इसके अलावा टहलना। आपको भारी व्यायाम गर्भावस्था में नहीं करना है, लेकिन हल्का व्यायाम आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई, अब उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो पूरी रात केवल जागती हैं, टहलती हैं, अगर वो नहीं सोएंगी तो क्या होगा ये भी बताइए।
0: जी जैसा मैंने बताया कि हर गर्भवती महिला का एक सपना होता है कि उसे एक स्वस्थ बच्चा मिले। स्वस्थ बच्चा पाने के लिए महिला को जितना खान पान पे ध्यान देना है उतना ही अच्छी नींद पे ध्यान देना है, और अच्छी नींद हर महिला को तभी आएगी जब वो दिन भर अपने आप को तनाव मुक्त रखेगी। आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए। दिन भर बिस्तर पे लेटे रहना भी मरीज के लिए नुकसानदायक होता है। अगर आप दिन भर कुछ काम नहीं करेंगी और सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहेंगे आराम करने के लिए, तब भी आपको रात में नींद नहीं आएगी। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि दिन भर अपने आप को काम में व्यस्त रखिए, घर का हल्का फुल्का काम करिए, तनाव मुक्त रहिए, और उसके बाद अपने बच्चे के बारे में अच्छे अच्छे विचार लाइए, खाना पीना पूरा खाइए, हल्का योग करिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा शरीर में दर्द हो रहा है तो हल्के तेल की मालिश करिए, इससे आपको जरूर अच्छी नींद आएगी।
1: जी डॉक्टर मंजुलता वर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी बहनों को दी कि जब नींद ना आए वो भी गर्भावस्था के दौरान, और उससे कोई समस्या अगर आ रही है तो किस तरह से आपको डॉक्टरी परामर्श लेना है, और आपका जो तरीका है सोने का, जो पोजीशन है आपकी सोने की, किस तरह की होनी चाहिए ये भी उन्होंने बताया, और कुछ प्राकृतिक उपाय भी आपको बताए। पूरी उम्मीद है कि आज की भेंटवार्ता सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। डॉक्टर मंजुलता वर्मा, आप हमारे प्रोग्राम में आई, बहुत अच्छी जानकारी बहनों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ऑलराइट, 12:40 का वक्त, और हम डॉक्टर मंजुलता वर्मा को ढेरों आभार देते हैं, और श्रीमती नीना सोनकर जी को भी, जिन्होंने इतनी बेहतरीन कॉन्वर्सेशन हमारे लिसनर्स के लिए प्रस्तुत करने का, मतलब इतना बड़ा प्रयास लिया, और कितना फ़ायदा पहुंचेगा हमारी उन महिलाओं को जो इस समय गर्भवती होंगी या उनके घर में कोई गर्भवती महिला होगी, उसके लिए कितना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ये कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद वक्त हो गया है कि हम एक और बेहतरीन सा ट्रैक अपने लिसनर्स तक पहुंचाएं, और ये ट्रैक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, सोचा था किसी दिन मिलकर आपके साथ एंजॉय करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।

ऑलराइट, 12:52 का वक्त हो गया है और ऑलमोस्ट प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। लेकिन हाँ, आज प्रोग्राम शत्रुपा में हमने बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट में कुछ फैक्टर्स हैं हमारी फीमेल फ्रेंड्स के, जिन पर गौर व तवज्जो किया, स्पेशली जो गर्भावस्था में हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए हमने जाना एक्सपर्ट्स के थ्रू कि भाई क्यों प्रॉपर नींद अनिवार्य होती है महिला के लिए खुद भी और होने वाले बच्चे के लिए। अब जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक रुझानों से प्रभावित होकर बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य समस्याओं के लिए फौरन समाधान चाहते हैं। वो मानते हैं कि आकर्षक डाइट, सप्लीमेंट्स और अत्यधिक उपवास, ये सारी जो टेक्निक्स हैं, ये स्वास्थ्य का शॉर्टकट है। हालांकि एक ठोस नींव मूल बातों पर बनी होती है। स्वास्थ्य कोई जादुई गोली नहीं है जनाब, ये भोजन और जीवन शैली के प्रति एक सुसंगत संतुलित दृष्टिकोण है। तो ऑल इन ऑल अगर हम बहुत ही क्रिस्प करके बात करें तो हमें इस बात पे गौर करना होगा महिलाओं के अगर हम लगातार थकान और सुस्ती महसूस करते हैं, नाखूनों का कमज़ोर होना, बालों का झड़ना, लगातार मुहासे या रूखी त्वचा, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट फूलना, एसिडिटी, कब्ज, हाथ पैरों में झुंझुनाहट, पुरानी पीड़ाएं जैसे पीठ के निचले हिस्से में दर्द, ये सब चीज़ें अगर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ टाइम हो गया है कि अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखिए, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए और अकॉर्डिंगली अपना जो डेली रूटीन है उसे सेटल डाउन करिए। चाहे उसमें आपकी बैलेंस डाइट शामिल हो, व्यायाम शामिल हो या फिर प्रॉपर स्लीप शामिल हो, क्योंकि प्रॉपर स्लीप से आपकी एंग्जाइटी जो होती है ना वो कम होती है और आप कहीं ना कहीं खुद को ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। तो बस हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और हमारे साथ इसी तरह कनेक्टेड रहें। फिलहाल इस प्रोग्राम को हम यही वाइंड अप करेंगे। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपसे दोबारा रूबरू होते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। कल हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया। श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से खाने के तेल के उपभोग में कमी करने का आग्रह किसानों से भी किया। उन्होंने किसानों से विदेश से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी करने का आग्रह किया। वोकल फॉर लोकल

कल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व समारोहों में शामिल होने के लिए आज गुजरात के प्रभास पाटन पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत पर्व के तहत धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित हो रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने भारत कुंड के विकास के लिए लगभग 36 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन को भेजी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन ने बताया कि भारत कुंड को धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से विश्व स्तरीय स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अयोध्या को समग्र रूप से विकसित किया जा रहा है। भरतकुंड रामायण काल से जुड़ा पावन स्थल है। यहां भगवान राम के अनुज भरत जी का संबंध है। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

1:04 का वक्त हो गया है और ये जो बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं ना, ये सॉन्ग मैं अभी आपको सुनवाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आपको बता दूं कि भाई होठों पे तेरी बात प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है और बहुत कुछ है ख़ास जो साझा करेंगे आज हम आपके साथ और जिसमें हम जानना चाहेंगे आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उस टॉपिक को आप तक पहुंचाने से पहले ये बेहतरीन सा ट्रैक एंजॉय करिए, रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर मुनक्कदा सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत की। वजीर आजम ने प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि सोमनाथ महोत्सव सिर्फ तारीख का त्यौहार नहीं है, यह आइंदा 1000 साल के लिए भारत के लोगों के लिए तरगीब भी है। सोमनाथ अमृत महोत्सव मंदिर की तामीर 9 के बाद इसके इफ्तिताह के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाया जा रहा है। सोमनाथ अमृत महोत्सव की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुसूसी महापूजा में शिरकत की। उसके बाद कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण की तकरीबात हुई, जो मंदिर के तकद्दस और परचम कुशाई की रसूमात की अलामत है। हिंदुस्तानी फिजाइया के सूर्य किरण एक्रोबेटिक्स टीम ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर मुनक्कद सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान फिजाई करतब दिखाए। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान रोड शो भी किया। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष संघवी भी मौजूद थे। इसी दौरान वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत सोमनाथ संकल्प महोत्सव के अजीमुशान इनेकाद में वजीर आजम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी धाम में मुनक्कद ये इनेकाद भारत के सनातन रवायत है।
1: भगवान सोमनाथ महादेव का भव्य मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा, सुंदरीकरण और वहाँ के कार्यक्रमों के साथ ही काशी में काशी विश्वनाथ धाम
2: महाकाल में महालोक की स्थापना का कार्यक्रम, श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्म भूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम समेत अनेक ऐसे सनातन परंपरा से जुड़े हुए पवित्र तीर्थ स्थल अपने वैभव के साथ विकास की एक नई यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
0: प्रोग्राम को गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी खिताब किया। इससे कबल वजीर आला और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। वहीं मेरठ के ओगरनाथ मंदिर अहाते में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का इनेकाद हुआ, जिसमें वजीर आजम और वजीर आला के प्रोग्राम को बराह रास्त देखा गया। प्रोग्राम में मेरठ कैंट के रुकन असेंबली अमित अग्रवाल और दीगर अफराद भी शामिल हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बुहरान के दरमियान हमवतनों से मुल्क मजबूत बनाने में शराकतदार बनने की अपील की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की कोशिशों के बदौलत हिंदुस्तान मगरबी एशियाई तनाजात की वजह से पैदा होने वाली तवानाई के बुहरान से मौसर तरीके से निमट रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक अवामी रैली से खिताब करते उन्होंने कहा कि शहरियों से वो एक साल तक पेट्रोल और डीजल का एतदाल पसंद इस्तेमाल करें, गैर जरूरी बैरूनी सफर से गुरेज करें, सोना न खरीदें और मकामी मसनूआत को तरजीह देने जैसे इकदामात की अपील की।

1:20 का वक्त हो गया है और प्रोग्राम होठों पे तेरी बात का आगाज़ हम ऑलरेडी कर चुके थे, बस यही कुछ एक छोटा सा वक्फा लिया था हमने। आज यानी है 11th of May, आज हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल ईट व्हाट यू वांट डे। जी हाँ, हर साल 11 मई को मनाया जाता है। इसका मकसद खान पान के आनंद को सेलिब्रेट करना और खाने को लेकर गिल्ट ख़त्म करना है। अब मनचाहा भोजन, इसका मतलब हर दिन जंक फूड नहीं, हफ्ते में एक दिन पसंदीदा खाना खाने से मन खुश रहता है और बाकी दिन हेल्दी खाने की आदत बनी रहती है। तो ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर हम बात करें कंफर्ट फूड की, तो आपकी डिक्शनरी में कंफर्ट फूड की क्या परिभाषा है और कौन सा वो खाना है जो आपके लिए कंफर्ट फूड है। खाना देखिए सिर्फ पेट नहीं भरता, यादें बनाता है। दादी के हाथ के स्टफ्ड पराठे, जी हाँ, कभी आलू के पराठे, कभी मूली के, कभी मटर के, कभी सत्तू के, कभी प्याज के, तमाम तरीके के जो स्टफ्ड पराठे होते हैं ना, वो माइंड ब्लोइंग टेम्पटिंग। माँ की खीर, दोस्तों के साथ गोलगप्पे, ये सब खुशी से जुड़े होते हैं। तो ये सब हमारे कंफर्ट फूड होते हैं, या और भी बहुत सारे फूड हैं जो कंफर्ट फूड की कैटेगरी में आते हैं और उसके पीछे एक रीज़न भी होता है। तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर साझा करिए, हमें कॉल करिए 0522-2238-852, 0522-2982-377, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं अपने व्यूज़ हम तक पहुंचाने के लिए fmakashwanilakhnow@gmail.com। जब तक मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके मेल्स का, आपके कॉल्स का, आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, आप तक पहुंचाऊंगी ये बेहतरीन सा ट्रैक। सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 1:27 का वक्त और इस बेहतरीन से ट्रैक के साथ हमारे साथ ऑन एयर कोई कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी।
1: जी, सबसे पहले फातिमा पी आपको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप?
1: जी अपने, मैं तो बढ़िया हूँ। हमारे गांव का मौसम बड़ा ही खुशनुमा है, धूप निकली हुई है।
0: ओके,
1: और आपके लखनऊ का मौसम बताइए।
0: लखनऊ बिल्कुल बढ़िया हो रहा है मौसम। और देखिए भाई, गर्मी का मौसम है तो थोड़ी सी तो गर्मी होगी, और ये कोई और बात तो नहीं है। मतलब मौसम ही गर्मियों का है, तो मौसम गर्मी का अगर है तो गर्मी थोड़ा सा कभी कभी खुशगवार ढंग से भी कबूल करनी चाहिए, नहीं?
1: सही बात है।
0: हाँ फैज, आपने अपना तारुफ नहीं दिया, लेकिन मैंने पहले फटाफट आपका नाम बता दिया। आप हमें रामपुर कटरा बाराबंकी से कॉल कर रहे हैं, और मैं जानना चाहती हूँ कि भाई आपका कंफर्ट फूड क्या है और कैसे आप उसे एंजॉय करते हैं।
1: जैसे बात आए कंफर्ट फूड की, जैसे पहले बचपन में जैसे तली भुनी चीजें बहुत खाते थे, तो
0: जी
1: अम्मी पापा मतलब मना करते थे ये सब ना खाया करो, बहुत नुकसान करेगा। लेकिन अब मैं बड़े बड़ा हो गया हूँ, तो उसके बाद में जैसे अब जैसे कभी कभी मन कर जाता महीने में या 2 महीने में 1-2 बार, तो
0: जी
1: जैसे कुल्चा वगैरह है और जैसे मोमोज वगैरह, तो 1-2 बार में खा लेता हूँ।
0: अच्छा जी। तो पहले खाया करते थे ज्यादा?
1: जी।
0: अच्छा ओके।
1: अब लेकिन नहीं खाते, अब मान के महीने में 1-2 बार बहुत है, जब बहुत ही मन करता था।
0: उसके पीछे कोई वजह भी होगी, अब क्यों नहीं खा पाते ज्यादा?
1: क्योंकि आप मतलब जो ये सब बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं तो जानते होते हैं, पहले छोटे थे तो नहीं जानते थे
0: जी
1: ये बात। ये तो नुकसान है, लेकिन जब मन करता है कभी कभी महीने 2 महीने मतलब बर्दाश्त नहीं होता, तो क्या करें, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं।
0: ओके, बहुत शुक्रिया फैज़ आपका। और फैज़ ने जो बात कही ना, जब तक आपको किसी चीज़ की मालूमात नहीं है तब तक हर चीज़ एक्सेप्टेबल है, और एक बार मालूमात हो गई, अगर आप एजुकेटेड हो गए, आप अवेयर हो गए किसी चीज़ से रिलेटेड, तो फिर फ़र्ज़ बन जाता है आपका कि उस चीज़ को ताकीद से अपनाएं और उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स समझें। जी हाँ, तो अगर आप ऐसा कर पाने में सक्षम है ना, तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे जल्दी मेच्योर हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक ईमेल आ गई है मसूद की, लखनऊ से। इन्होंने लिखा है कि मनचाहा हमें खाना चाहिए पर बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितनी भूख हो उतना ही लेना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने लिखा है बच्चों को बताएं कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मनचाहा तो दूर 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। और मैं अगर अपने कम्फर्ट फूड की बात करूँ तो जैसा कि आपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कहा था ना कि वो स्टफ्ड पराठे वो मेरे मनचाहे होते हैं, तब वो चाहे मेरी वाइफ मुझे बना के दे, मेरी माँ बना के दे, या फिर कोई भी मेरे घर की जो महिलाएं हैं, अगर वो बना के देती है ना, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इन्होंने आगे लिखा है, अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पाता हूँ बिकॉज़ मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करती है। मैं ज़्यादा खा लेता हूँ तो मुझे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह जाते। ओके, तो कहीं ना कहीं स्टफ्ड पराठे जो होते हैं ना, हम सभी भारतीयों का स्टेपल फूड होते हैं, नहीं? तो फिलहाल इसी नोट पर मैं अपने बाकी लिसनर से रिक्वेस्ट करूंगी, 0522-2238-5229-2382-377, ये हमारे 2 नंबर्स हैं, इन पर कॉल करके हमें बताइए कि कौन सा वो फूड है जो आपका कंफर्ट है फूड, और दूसरी बात ये है कि क्यों है वो आपका कंफर्ट फूड, तो ये हम जानना चाहते हैं आपसे। और आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं, fmakashwani@gmail.com। फिलहाल ये बेहतरीन सा ट्रैक, रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: 1:36 का वक्त और हमारे साथ फोन लाइन पे कोई कनेक्ट हो गया है। हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, अपना तारुफ कराइए।
1: जी हम साहिबा अंसारी महवागंज जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं।
0: ओके, बहुत स्वागत है आपका। और फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हमें बताइए आपका कंफर्ट फूड क्या है, क्या खाना आपको पसंद है?
1: गोलगप्पे खाने पसंद है।
0: बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं। अच्छा, कोई खास वजह है? और आप कितना आप खा पाती हैं? जैसे कि पहले जब हम लोग छोटे होते हैं ना, तब तो फिर कभी भी खा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, मालूमात बढ़ती है, अपनी सेहत के तरफ हम ज़्यादा अलर्ट होते हैं, अवेयर होते हैं, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों का सेवन हम कम कर देते हैं। तो अब ऑन एंड ऑफ आप कितना खा पाती हैं?
1: 5 से 6 बताशे खा पाते हैं।
0: 5 से 6 बताशे। और कितने दिन के अंतराल पे खाती हैं?
1: जी मैम, लगभग वही 2 या 3 महीने जब हमारी खाला आती है तभी हम खाते हैं।
0: ओके, 2 या 3 महीने के बाद खा पाती हैं जब आपके खाला आती। कोई खास वजह ये 2-3 महीने ना खा पाने की?
1: नहीं मैम, क्योंकि हम अकेले रोड पे जाते नहीं है, इसलिए हम खाना ही खाते हैं, या तो मम्मी के साथ जाएं
0: जी
1: तो खाएं।
0: ओके, थैंक यू सो मच, ये जान के हमें बड़ा अच्छा लगा और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। ओके ओके।

थैंक यू सो मच। ऑल राइट, इसके बाद हमारे पास इधर देखिए ईमेल्स का जो सिलसिला है ना, वो बिल्कुल खटाखट मेल्स आती ही चली जा रही है। मोनू जी का मेल आया है, इन्होंने लिखा है, धूप बहुत है, मार्केट में हूँ और रेनबो सुन रहा हूँ। थैंक यू सो मच रेनबो सुनने के लिए, लेकिन हाँ टॉपिक पर भी कुछ गौर तवज्जो ज़रूर करिए। नेक्स्ट मेल हम शामिल कर रहे हैं प्रवीण का, और इन्होंने लिखा है, मुझे खिचड़ी खाना बहुत पसंद है, मेरा कंफर्ट फूड खिचड़ी है। वेरी गुड, खिचड़ी तो बहुत सारे लोगों को पसंद है, मुझे पता है। ओके ओके सुधाकर जाधव जी, ये प्रोग्राम है होठों पे तेरी बात, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस टॉपिक, इस प्रोग्राम में जो टॉपिक है इससे रिलेटेड ही बात करिए। आपकी पसंद का जो ट्रैक है ना, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आप तक पहुंचा पाएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास आ गया है मुनेश कुमार राज जी का, भानपुर हरौआ ज़िला लखीमपुर खीरी से। इन्होंने लिखा है, मुझे बाहर के गोलगप्पे कतई पसंद नहीं है। पहली बात तो गोलगप्पे खाने के लिए कटोरा हाथ में लेकर खड़ा होना पड़ता है। बाहर के गोलगप्पे खाना, कटोरा, ओ मुझे पसंद नहीं है, और इसलिए हम खुद घर पर बनवा लेते हैं और सभी लोग मिल बैठ कर जो खाते हैं गोलगप्पे और एन्जॉय करते हैं। ऑल राइट, तो ऑल इन ऑल इन्होंने कहा है ये हेल्दी कॉन्टेक्स्ट में अपने घर पे बनवा के खाते हैं, ये इनका कंफर्ट फूड है। ओके ऑल राइट, तालिब अंसारी ने लिख के भेजा है, बहुत तेज़ धूप है, अभी जा रहे हैं बाइक से और रेनबो एन्जॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रेनबो एन्जॉय करने के लिए, लेकिन हाँ इस प्रोग्राम में हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि भाई आपका कम्फर्ट फूड क्या है और क्यों, और अब कितना ज़्यादा आप उस कम्फर्ट फूड को एन्जॉय कर पाते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। हमारे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं 0522 2238 852, 0522 2982 377, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com। फिलहाल वक्त हो गया एक और बेहतरीन सा ट्रैक हम आप तक पहुंचाए, आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड।

एक बजकर 44 मिनट का वक्त हो गया है। राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें कासगंज से। आपने लिखा है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो कंफर्ट फूड्स की तरफ नहीं जा पाता हूँ, लेकिन हाँ मैं हैबिचुअल हो गया हूँ करेले की सब्ज़ी खाने का, बड़ी लाभदायक है मेरे लिए और वही अब मेरा कंफर्ट फूड है। ओके, थैंक यू। प्रवीण का मैसेज फिर से हमारे पास आ गया, उन्होंने लिखा है, खिचड़ी के बारे में मैंने सिर्फ लिख दिया था और अब मैं बताना चाहता हूँ, खिचड़ी मेरा कंफर्ट फूड है क्योंकि बड़ी आसानी से बन जाता है और पोषण से भरपूर होता है। उसमें दाल चावल, आलू, मूंगफली, दाने, चटपटे मसाले और उसमें आलू के अलावा भी कई हरी सब्जियां मिक्स करके बनाई जा सकती हैं। टमाटर मटर वगैरह भी डाल दीजिए, बड़ा टेस्टी साउंड देखिए, टेस्टी टेस्ट करता है, नहीं टेस्टी लगता है। ओके, थैंक यू सो मच रामेश्वर जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है और इन्होंने लिखा है, हम बराबर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू प्रोग्राम सुनने के लिए। और आगे लिखा है इन्होंने, हमें पराठा खाना पसंद है, ज़्यादा तली चीज़ नहीं खाते हैं हम। और इन्होंने लिखा है, ओके, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें जनरली नहीं खा पाते हैं, तो जो कंफर्ट फूड है वो इनका पराठा है, तो मौका जब भी मिलता है पराठे खाना पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे तो सादा पराठा और चाय भी बहुत पसंद है, पता नहीं हमारे बहुत सारे लिसनर्स होंगे जिनको भी पसंद होगा ये, तो खैर वही है कि अब बहुत ज़्यादा हम नहीं खा पाते हैं, बहुत ज़्यादा तले भुने और मिर्च मसाले से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ओके, जावेद अख्तर जी ने मेल हमें किया है लखनऊ से, और आपने क्या लिखा है, पराठे, कद्दू के पराठे वगैरह जिसे खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे। ओके ओके ओके ओके, क्या लिखा है इन्होंने, कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके, आजमगढ़ से आपने मेल किया, इन्होंने लिखा है कि मुझे आलू के पराठे खाना पसंद है। आगे लिखा है, कद्दू के पराठे वगैरह वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कद्दू के पराठे का कॉन्सेप्ट आप लाए हैं ना पसंदीदी में या फिर पसंद है आपको, नेक्स्ट मेल में ज़रूर क्लियर करिएगा, ये इनका कम्फर्ट फूड है। थैंक यू सो मच बाबू अंसारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने लिखा है, पनीर मुझे बहुत पसंद है, आई लव पनीर, बाराबंकी से मेल किया है आपने हमें, थैंक यू मेल करने के लिए। ओके ओके ऑल राइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास आया है, ओके, बसंत कुमार सिन्हा जी ने मेल किया है हमें और लिखा है, फुचका हमारे कोलकाता का फेवरेट। ओके, शाम को कोलकाता

अधिकतर लेडीज महिलाएं खाने को बेताब रहती हैं। कोलकाता में सभी जगह शाम को चौक नुक्कड़ पे पुचका पानीपुरी की रेडी आपको देखने को मिल जाएगी। और आपने हमें कोलकाता से मेल भी किया है। ऑल राइट, इसका मतलब है इन्होंने महिलाओं के बारे में तो हमें बता दिया कि उन्हें पुचका खाना पसंद है, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं हो पाई बसंत जी कि आपका स्टेपल फूड, इनफैक्ट आपका कंफर्ट फूड क्या है। नीरज कुमार जी का मेल हमारे पास आया है। इन्होंने लिखा है इन्होंने लिखा है हेलो एफएम रेनबो कार्यक्रम करने यार। ओके, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। हमें टॉपिक से रिलेटेड नहीं है कुछ हमारे पास इनकी मेल में। बबीता राव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया और आपने लिखा है कि मुझे जंक फूड, खस्ता, आलू के पराठे, कुल्फी, आइसक्रीम, ये सब मेरे कंफर्ट फूड है। ज़्यादा मैं नहीं खा पाती हूँ, लेकिन हाँ जब मौका मिलता है और जब काफ़ी दिन के स्ट्रिक्ट डाइट को मैं फॉलो कर लेती हूँ तो मैं ज़रूर खाना पसंद करती हूँ। आप हमारे लखनऊ शहर की रेगुलर लिसनर हैं, थैंक यू मेल करने के लिए। बाकी लिसनर्स को भी हम अभी कॉल पर लेना चाहेंगे और उनके मेल्स भी शामिल करना चाहेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया है कि हम एक बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुँचा दें। आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: 1:54 का वक्त और ये बॉम्बे फिल्म का ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 एफएम रेनबो पर, और हमारे साथ फोन लाइन पे कोई कनेक्ट हो गया। हेलो,
1: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, अपना तारुफ
1: क्या था
0: जी?
1: आदाब
0: आपको भी, आदाब। अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं जावेद अख्तर
0: जी,
1: रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ।
0: थैंक यू सो मच जावेद साहब। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है और किसके साथ एंजॉय करते हैं आप ये कंफर्ट फूड अपना?
1: देखिए हम तो कंफर्ट फूड में देखें तो ज्यादातर आलू के जो पराठे होते हैं
0: जी,
1: और जो चाय के साथ सादे पराठे होते हैं
0: जी,
1: ये हम मैं परिवार के साथ अपने घर के अंदर ही यूज करता हूँ। बाहर की चीजों से बहुत ज्यादा दूरी बनाए रखता हूँ, क्योंकि बाहर की चीजें जो भी होती है, जिसे जितनी भी चीजें होती है उसको बिल्कुल हम खाना पसंद नहीं करते हैं, जो भी करते हैं घर के अंदर करते हैं।
0: ओके, घर का बना हुआ स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार खाना जावेद साहब पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मेंशन किया था कि भाई अपने फैमिली मेंबर्स के साथ पसंद करते हैं, तो बहुत ही अच्छी अप्रोच हम तक साझा की, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। इसके बाद दिव्यता राज वर्मा ने मेल किया है हमें और इन्होंने लिखा है, मैम मुझे खाना सब कुछ पसंद है, सब कुछ कंफर्टेबल कंफर्ट फूड की कैटेगरी में आता है। कंफर्टेबल तब हो जाता है जब हम पूरी फैमिली के साथ में पुरानी बातों के साथ वो खाना एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए। और बाकी लिसनर्स जिन्होंने अभी हमें सॉन्ग सुनने के लिए रिक्वेस्ट की है ना, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्रोग्राम हॉटमेल में अपनी पसंद का ट्रैक सुनने के लिए हमें मेल करिएगा, और हाँ 2 बजे की बात करिएगा। फिलहाल वक्त हो गया एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप किया जाए, स्वादे के साथ एक छोटे से म्यूजिकल और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: Forecast isolated thunderstorms, lightning and gusty winds over northwest parts of the country till Thursday. Isolated hailstorm activity is also likely to be experienced in Jammu Kashmir, Ladakh, today and tomorrow. The weather agency has said that Himachal Pradesh and Uttarakhand are also expected to experience similar conditions tomorrow. Meanwhile, the Uttarakhand administration has urged the Chardham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and the day after tomorrow. In IPL cricket, Punjab Kings will face Delhi Capitals at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala this evening. The match will begin at 7:30 p.m. In football, India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continued to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1,000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाले 1,000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने

0: प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
0: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीर सेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता विजय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया।

0: गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीद कर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
4: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज 2 मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: तौहीद का मेल हमारे पास आया है। आपने हमें लिखा है, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। मलियाबाद से आपका भी मेल आया हमारे पास, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये सॉन्ग सुना दो। ओके, मलियाबाद से आपने मेल किया है, शायद इसीलिए इतने सारे हमें मैंगोज़ बना के भेज दिए हैं क्या? मतलब आपकी मेल में इतने सारे मैंगोज़ देख के ना मुझे बस मलियाबाद का जो कनेक्शन है ना वो कहीं ना कहीं आम से तो है ही। पारस मणि जी का मेल हमारे पास आ गया है। ऑल राइट, रेडियो श्रोता क्लब है इनका, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से मेल किया है। डैनी मनीष, दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल और हुदा बख्श खलीफा, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। थैंक यू। स्वर्ण सिंह जी, आपका भी शुक्रिया, आपका मेल मैं ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ। मोयसीन हाशमी जी का मेल आया हमारे पास, आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। गंज डुंडवारा से आपने मेल किया है। यासीन, नाजमा बेगम, तौसीफ, कलीम अंसारी, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। दीपेश वर्मा जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है छत्तीसगढ़ से। और पूनम, ज्योति, शिवांश, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की है, एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की है। हम पूरी कोशिश करेंगे सॉन्ग प्ले हो जाए आज प्रोग्राम में। नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पानीपत से आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं, थैंक यू। ओके ओके, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर जी, अनिल शर्मा जी, आपने मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक सॉन्ग प्ले करते हैं और वो हमारे किसी लिसनर की ही पसंद का है, बस चेक कर लेते हैं कोई छोटा सा कमर्शियल ब्रेक तो नहीं है, और अगर नहीं है बिल्कुल वो सॉन्ग प्ले हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग। बाकी लिसनर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज फटाफट हमें मेल करते रहिए अपनी पसंद का ट्रैक एंजॉय करने के लिए। ऑलराइट, ओके।

ऑलराइट, 2:43 का वक्त और मैंने सोचा बैक टू बैक अब तक दो गाने पहुंचा देती हूँ, दोनों ही हमारे लिसनर्स की पसंद के थे। राजू मिगलानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें हांसी से। बबीता, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग हम प्ले कर पाए आज प्रोग्राम में। सुजीत केशरी जी, हम आपके नए श्रोता हैं, कुछ ही दिन हुआ है हमें रेडियो सुनते हुए जी, आपसे निवेदन है कि हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए छत्तीसगढ़ पिपरिया से। और आपने लिखा है हम सभी अपने नाम के इंतजार में। ओके, सुजीत केशरी, सुनील केशरी, झिलमिल केशरी, कृष केशरी, देखिए सबके नाम ले लिए, मुझे लगता है सबके चेहरों पे मुस्कान आ गई होगी। दीपमाला त्रिवेदी जी इन्होंने लिखा है, मैं हरदोई से उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने लिखा है मैं एक सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, मेरी मम्मी का नाम दीपमाला, दीदी का नाम पलक है, वो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, कृपया करके नाम शामिल कर लीजिए। शामिल कर लिया हमने नाम, और ये जो सॉन्ग है ये भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्ले हो जाए आज प्रोग्राम में। शंकर लाल जायसवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से आपने मेल किया। गणेश लाल, शुभ प्रसाद, डॉक्टर अनि कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल, माफी चाहेंगे। ओके, आप सबका नाम हमने ले लिया। मुकेश कश्यप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आपने मेल किया। सोनू राजपाल, काजल मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलवीर, किसी भी गीत के साथ बस हमारा मेल शामिल कर लीजिए। हमने मेल शामिल कर लिया। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आपने मेल किया है। तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, किसी भी गीत में शामिल कर ले, लिखा है, हमने शामिल कर लिया आपको। ओके, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी आपका भी शुक्रिया, आपने तो मेल से पहले हमें किया था। संजय साहू पोटिया काला से आपने मेल किया है। सभी गीत एक से बढ़कर एक हैं, आपके खूबसूरत कार्यक्रम का सपरिवार आनंद उठा रहे हैं हम, मनमोहक कार्यक्रम के लिए आपको भी बधाई। आपको भी ढेर सारी बधाई सभी लिसनर्स को, क्योंकि जितने भी सॉन्ग्स आज प्ले हो रहे हैं वो सब आपके पसंद के हैं, थैंक यू। रमेश कुमार जी पटेल नगर मालौत से आपने मेल किया। गीता रानी, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया, गुड्डू, इन सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, थैंक यू। रामराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से आपने मेल किया है। पप्पू, पवन, मिर्ज़ा, इमरान बेग और जितेंद्र रामेश्वरी, ओके ऑल राइट, जितेंद्र रामेश्वरी पर फिर माया एक गीत है जो इन्होंने सुनने की रिक्वेस्ट की है, हम पूरी कोशिश करेंगे ये ट्रैक प्ले हो जाए आज प्रोग्राम में। दिलीप रामेकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अमरावती महाराष्ट्र से मेल किया है। रामेकर जी ने अक्षय रामेकर, रुद्र रामेकर, रुचिका रामेकर और समस्त रामेकर परिवार का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, हमने नाम ले लिया, थैंक यू। शाहरून नूर अंसारी जी के आईडी से हमारे पास मेल आ गया, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, धन्यवाद। हर हरपुर मटकली जिला बरेली से आपने मेल किया। फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद, मोइन तस्लीम और डीजे प्रधान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी ढेर शुक्रिया। सुरेश नारंग जी आपका भी शुक्रिया, और ये जो सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की ना मुझे बहुत पसंद है, कोशिश आज करूंगी कि ये सॉन्ग प्ले हो जाए। सहारनपुर से आपने मेल किया है। आशा नारंग, सुरेश नारंग, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। ओके, जावेद अख्तर जी आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। मोहब्बत और प्यार भरे अंदाज में पूरे लखनऊ शहर को गुड आफ्टरनून विश करते हैं ये। ओके, सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरे इनसे जो नेक्स्ट ट्रैक होगा ना वो आप सबको डेडिकेटेड होगा, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, रिक्वेस्ट की है। रविंद्र मोहनदास जी ने किशनगंज बिहार से आशा देवी जी का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके, फटाफट कुछ नाम और ले लेती हूँ मैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नाम शामिल हो जाए। राधे कुमार विद्यार्थी जी ने हमें मेल किया है सहरसा बिहार से। राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके, रविंद्र मोहनदास जी, ओके आपका मेल हम

फूल और कांटे फिल्म का ये ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 एफएम रेनबो पर, और 2:54 का वक्त हो गया। फटाफट नाम ले लेती हूँ कुछ, मोहम्मद शहीर जी, पीएस नवाकर जी, रामराज जी, छाबी राम सिंह राजपूत जिला फरुखाबाद से आपने मेल किया है, उत्तम कुमार भगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए, सुनील पाठक जी आपका भी बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए, आपने लिखा है मैं हमारे मेल शामिल नहीं होते हैं, देखिए हमने शामिल कर लिया है बस वक्त हमें इजाज़त नहीं देता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स हम प्रोग्राम में शामिल कर पाएँ। रामराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रायबरेली से आपने मेल किया, थैंक यू मेल करने के लिए हमें, ओके ओके ओके ओके। दिलीप रामेकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमरावती महाराष्ट्र से आपने मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। सुरेश नारंग जी आपका भी शुक्रिया, सितमगढ़ ओके ये कोई सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की है, सहारनपुर से मेल किया हमें, थैंक यू मेल करने के लिए। ऑल राइट, देखिए किसी का मेल छूट तो नहीं रहा है, फटाफट मैं देख दे लेती हूँ। संजय कुमार जी थैंक यू सो मच मेल करने के लिए हमें, नजीबाबाद बिजनौर से आपने मेल किया है, जाकिर जी आपका भी बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए हमें, ओके आपने कहाँ से मेल किया है, मुंगीसापुर से आपने भी मेल किया है, मुंगीसापुर से कई मेल्स आए हमारे पास, बड़ा अच्छा लगता है ऐसा सुन करके, और जब हम रीड करते हैं ना तो बहुत इत्मीनान फील होता है कि हाँ लोग हमें कहाँ कहाँ तक इन्जॉय कर रहे हैं। ओके सरिता अभिजीत गोहानकर जी का मेल आया है, आपकी पसंद का सदाबहार गीत सुनाने का कष्ट करें, और सरिता जी ने प्रणिता लाडला टुकटुक इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, महाराष्ट्र से मेल आया हमारे पास, थैंक यू। सैफुद्दीन अंसारी जी, संजय धिंगिया जी, आर्यन राज, ब्रजेश विश्वकर्मा, तुलसी मस्कीन, फागुराम यादव जी आप सब का शुक्रिया, अगर किसी का नाम रह गया है तो प्लीज़ मायूस मत होइएगा, नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करिएगा आपके मेल्स ज़रूर शामिल किए जाएंगे। फिलहाल इस बेहतरीन से ट्रैक के साथ अब वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को, इस वादे के साथ एक छोटे से म्यूज़िकल और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सिटी की हार्ट बीट से कनेक्ट हो चुके हैं आप। 3 बजे का वक्त और इस वक्त को अब बनाने म्यूजिकल आपकी रेनबो होस्ट पूर्णिमा आज की है आपके करीब हमारे इस शो म्यूजिक आर के साथ।

नेहा बासिन और बप्पी लहरी की आवाजों को सुना भी आपने। सो वेलकम आप सभी का हमारे शो में। जी हाँ, ये शो म्यूजिक आर्ट, जहाँ कानपुर की म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो चुके हैं आप। जी हाँ, वहाँ से कनेक्ट हैं आप, जहाँ की गलियों का भी है अपना बिल्कुल अलग ही स्वैग।

जी हाँ, स्वैग से स्वागत तो हम कर चुके हैं आप सभी का। और आज का म्यूजिक आर क्यों है खास, तो सबसे पहले आरजी पूर्णिमा है आपके साथ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये पूरा एक घंटा कानपुर की गलियों से होते हुए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को। जहाँ की गलियों में चाय की खुशबू, कहीं ठेलों की रौनक, कहीं बाइक वालों की तेज रफ्तार, तो कहीं भैया जरा साइड देना कि ये आती है पुकार। फिलहाल जो राज के हैं ना पर्दे, वो धीमे धीमे उठ जाएंगे जब आप हमारी बातों से कनेक्ट होते जाएंगे। फिलहाल कनेक्ट हो जाइए इस ट्रैक के साथ 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर, जहां इस प्रोग्राम को लेकर आपकी है उस ट्रेन में आरजी पूर्णिमा है आपके साथ।

वेल, बाहर का मौसम जैसा भी हो, बट हमारे स्टूडियो का मौसम बहुत दिलचस्प है, जहां मेरी प्यारी प्यारी बातों के साथ हो रही है ब्यूटीफुल सॉन्ग्स की बारिश, जिसमें भीग जाने वाला है आपका मन। सो रेनबो लिसनर्स, बाइक वाले सॉन्ग के साथ आप झूम लिए, पर अब होने वाली है सड़क पर समझदारी की असली ड्राइव की पहचान। तो आप जल्दी से भेजिएगा हमें अपने मैसेजेस की, रोड पर ड्राइव करते हुए आप किन बातों का रखते हैं ख्याल। जी हाँ, पीसफुली रोड सेफ्टी रूल्स को करते हैं फॉलो, या फिर धूम मचा ले जैसे राइडर्स आपको करते हैं बेहाल। शेयर कीजिए हमसे अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव, अपने विचार। हमारी मेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com और हम मचाते हैं म्यूजिकल धूम आपके साथ यहाँ स्टूडियो से। पर उससे पहले एक मेल हमारे सामने आज की है, ये है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा की। इन्होंने लिखा है कि मैम, प्रोग्राम का बहुत ही खूबसूरत अंदाज हुआ है आपके साथ म्यूजिकार का, और लिखा है इन्होंने कि मेल के पढ़े जाने से ये प्रोग्राम, इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। सो थैंक यू सो मच संजय जी, और आप सभी के मेल्स का हमें भी है बेसब्री से इंतज़ार। फिलहाल जो इंतज़ार आपके ट्रैक का है ना, उसे हम करते हैं यहाँ पर ख़त्म, क्योंकि पे किया है हमने इस ट्रैक, यानी इस प्रोग्राम का, ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपके साथ।

चलती है मुझे क्या वाली सोच। और इसी बीच ना कई बार जिंदगी जो है वो स्लिप हो जाती है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी स्मार्टनेस आपकी ड्राइव को बना सकती है सेफ। सेफ होकर चलिए और दूसरों का भी पूरा ख्याल रखिए। और इसी के साथ ही देखिए ना, इन सारे व्यूज को लेकर के हमारे पास मेल आ चुकी हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। संजय ढींगिया जी ने भी मेल किया, उन्होंने लिखा है कि मैम ये सबसे ज़रूरी है कि हम सड़क पर चलने से पहले जो हमारे आसपास चलने वाले लोग हैं उनका भी ख्याल रखें कि हम हमारी जो बाइक की स्पीड है, या हम फोर व्हीलर से भी हैं तो भी हमारी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि हम उसे किसी भी कंडीशन में आने पर अगर कोई ऐसी अचानक से कोई स्पीड या कोई बाइक हमारे सामने आती है तो हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सके। और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जी ने भी ऐसी ही कुछ मेल की है कि हम सबसे पहले हमारी ये जिम्मेदारी है, भले ही हमें हमारी सरकार हमें कितने ही रूल्स को फॉलो कराए, हम ये सप्ताह जो मना रहे हैं एक यूएन रोड सेफ्टी वीक, इसका बस एक ही एम होना चाहिए कि हमारे साथ जो चलने वाले लोग हैं वो सेफ होने के साथ साथ जो सड़कों पर चल रहे लोग हैं, भले ही वो किसी भी व्हीकल से हैं या पैदल हैं, उनका भी हम खास ख्याल रखें। बिल्कुल आप सभी लिसनर्स के साथ ही कनेक्ट जाने से हमारा जो प्रोग्राम म्यूजिक आर है ना ये और भी स्पेशल हो चला है। फिलहाल एक ट्रैक हम प्ले करते हैं आप सभी लिसनर्स के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ी ही दूर क्यों ना जाना हो या फिर हो, हमारी लॉन्ग ड्राइव हमारी इस जर्नी को बनाती है बिल्कुल सेफ, अगर हम है सेफ। 102.2 के फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट है यहाँ प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर, जहाँ इस प्रोग्राम को लेकर आपकी रेनबो होस्ट पूर्णिमा है आज आपके साथ। और चलिए हमारे साथ इस ट्रैक को एंजॉय करते करते इसकी ड्राइव के संग। पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आपको करते रहना है हमें मेल। हमारी सेफ ड्राइविंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट है वो लोग और कितनी जिम्मेदारी है हमारी।

जी हाँ बिल्कुल, धूम मचाइए मस्ती की, फन की, एंजॉयमेंट की। पर ये वाली जो धूम है ना बाइक राइडर्स वाली, ये नहीं मचानी है। और ऐसे धूम मचाने वाले राइडर्स हमें सड़कों पर दिख जाएंगे, क्योंकि आजकल की रोड्स पर ना सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, चलता है एटीट्यूड। चलती है जल्दी पहुंचने की होड़, और

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की 1 बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: 102.2 फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है आपने, प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिकार, जहां आज बातें हैं आपकी सेफ्टी की, सड़क पर चलते हुए आपकी सावधानी की, और साथ ही हम कैसे दूसरों को भी सेफ कर सकते हैं। पर फिलहाल इस प्रोग्राम में इस कमर्शियल ब्रेक के बाद की ब्यूटीफुल ट्रैक हम पहुंचा रहे हैं आप तक।
1: पल्ले आ जा।

वेल, हमारे इस सॉन्ग को सुनकर के हमारे पास थोड़ा सा भी मेल पहुंची है। अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेग अंसारी और बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर जी की, उन्होंने लिखा है कि मैम, जैसी है आपकी खूबसूरत आवाज़ वैसा ही है आपका बिंदास अंदाज, सो थैंक यू सो मच। और उन्होंने लिखा है कि जैसे सॉन्ग में कार और बाइक सब की बात थी ना, वैसे ही हम कहते हैं कि रोड पर सेफ्टी को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी बात है कि अगर हमें थोड़ी दूर के लिए जाना है तो हम अपनी किसी भी व्हीकल का इस्तेमाल ना करें, हम अपने जो रब के दिए हुए ये जो हमारे नायाब तोहफे हैं हमारे हाथ और पैर, हम इनका इस्तेमाल करें और इन पैरों से चलकर के उस दूरी को तय करें, फिट रहें, हेल्दी रहें, साथ ही अपने इस नेचर को, इस एनवायरनमेंट को भी सेफ रखें। क्या बात है। आपकी मेल्स पहुंच रही हैं हम तक, बिल्कुल, और आप ऐसे ही हमें मेल्स करते रहिए। फिलहाल एंजॉय क्या कर रहे हैं आप प्रोग्राम म्यूजिक और आरजे पूर्णिमा के साथ। और देखिए ना दोस्तों, आपने कानपुर की रोड देखी हैं तो आप समझ ही गए होंगे, कहीं स्कूटी पर पूरा परिवार हमें दिख जाता है, कहीं एक हाथ से बाइक, दूसरे से फोन, कहीं बिना इंडिकेटर के अचानक टर्न और कहीं वो लेजेंडरी डायलॉग कि भैया निकल जाएगा, स्पेस है। जी हाँ, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो स्पेस हम ढूंढ रहे हैं ना, उससे निकलने में कई बार कितनी परेशानी हो जाती है कि हम एक्सीडेंटल का शिकार होने से बच जाते हैं। तो देखिए ना, दिन रात जो बढ़ती हुई भीड़ है, इससे सबसे सेफ है ना कि हम बिल्कुल सेफ्टी से चलें, थोड़ा सा टाइम लेकर के चलें और हम खुद देखते हैं ऑन ड्राइव रोड पर कि माल रोड हो, नवीन मार्केट हो, गुमटी हो, बड़ा चौराहा या फिर शाम के वक्त कंपनी बाग के आसपास की रोड्स, हर जगह स्पीड भी है, हॉर्न भी है और इंपेशेंस भी है, यानी कि लोगों के पास बिल्कुल भी धैर्य नहीं है कि थोड़ा सा वेट कर लें। लेकिन सच बताइए, क्या 5 मिनट जल्दी पहुंचने के लिए हम अपनी सेफ्टी को रिस्क में डाल सकते हैं? आप सोचिए और हमें लिख भेजिए अपनी रिप्लाई। ट्यून इन है आप रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट के संग और साथ ही एंजॉय करते चलिए हमारे साथ इन ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक्स को। ये दिल आशिकाना इस मूवी से है ये ब्यूटीफुल सॉन्ग।

102.2 की फ्रीक्वेंसी से ट्यून है आप कॉलेज की लड़कियों ब्यूटीफुल ट्रैक और इन कॉलेजेस के बाहर हम कितने ही बाइक राइडर्स को देखते हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं हम सब की लाइफ से जुड़ा होता है ये मोमेंट जब हम उस ऑरा में होते हैं। और देखिए ना, उस टाइम पर भी हमें ड्राइविंग सेंस के साथ ही काम करना होता है। रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं हम, तो थोड़ी सी बातें स्मार्ट ड्राइविंग की भी करते हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट आपकी शील्ड है, स्टाइल बाद में सेफ्टी पहले। जी हाँ, और वाइल्ड ड्राइविंग नो फोन कॉल्स बिकॉज एक मैसेज आपका वेट कर सकता है बट जिंदगी नहीं। बारिश या धूल में स्पीड कम रखनी चाहिए हमें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर हॉर्न का जवाब हॉर्न नहीं होता जनाब, कभी कभी साइलेंस सबसे सेफ आंसर है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि रॉन्ग साइड आपको हीरो नहीं बनाती बल्कि एक्सीडेंट के चांस बढ़ाती है। तो अब इस प्रोग्राम में चांस एक और ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ को एंजॉय करने का, जहां पर ना देखे इस ट्रैक में आप इस सीन को विजुलाइज करेंगे कि एक गली है, उस गली के बीच में चरखा है और एक डांसिंग पूरा जो गैंग है वो डांस कर रहा है।

एम श्योर हमारे कुछ लिसनर्स इन सॉन्ग्स पर झूमेंगे जरूर। रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से एंजॉय कर रहे हैं आप प्रोग्राम म्यूजिक आर्ट।

जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं आप हमारे साथ ही प्रोग्राम म्यूजिकार। एंड आई एम श्योर बहुत सारी फीलिंग्स के साथ आपका भी जुड़ा होगा कोई ना कोई रोमांटिक एक्सपीरियंस। गलियों से होकर गुजरते ये दिल के सारे नज़ारे कुछ तो रोशन हो जाते हैं और कुछ हवा के संग उड़ जाते हैं, जैसे आप अभी इंजॉय कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम हमारे साथ। रेनबो कानपुर के इस म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी पर से मैं वो भी उतने ही खुश होते हैं जो आपका घर पर इंतजार कर रहे होते हैं। दिल से सोचिए ना कि माँ कहती है धीरे जाना, दोस्त कहते हैं पहुँच कर एक कॉल करना, और कुछ लोग तो आपकी सेफ स्माइल का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए रोड्स पर कूल रहिए, बच के अलस नहीं। डियर लिसनर्स, रोड्स पर ड्राइविंग करते टाइम ऐसा कोई रूल ब्रेक ना करें कि पुलिस या कोई भी आपके पीछे पड़ जाए। यही तो है यू एंड रोड सेफ्टी वीक का असली मोटिव। जी हाँ, जिस पर बेस रहा हमारा आज का ये प्रोग्राम म्यूजिक आज, जहाँ बातें हुई सड़क पर समझदारी की असली ड्राइव पर। तो याद रखना है, सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, ये घरों तक लौटने की उम्मीद होती है। ट्रैफिक रूल्स को बोझ नहीं अपनी जिम्मेदारी समझिए। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी समझदारी और सफर हो जाएगा सेफ एंड ब्यूटीफुल। एंजॉय कीजिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक। आरजी पूर्णिमा को दीजिए इजाजत फिलहाल इस प्रोग्राम से। मिलूंगी आपसे मैं बस थोड़ी देर में। आप एंजॉय कीजिए और ट्यून इन रहिए रेनबो कानपुर की इस फ्रिक्वेंसी के साथ।

और देखिए इसी के साथ एक मेल हमें आ चुकी है, बिल्कुल अभी इन्होंने मेल की है। तनु शर्मा राजधानी लखनऊ से मेल कर रही, इन्होंने लिखा है कि मैम अभी तो आपने प्रोग्राम शुरू किया था और अभी आपने लिखा कि वाइंड अप कर रही हैं आप इस प्रोग्राम को, बहुत ही शानदार रहा आज का म्यूजिक आर्ट प्रोग्राम, थैंक यू सो मच मैम, आप भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्या बात है, थैंक यू सो मच आपके इस ख्याल के लिए, आप सब भी रखिए अपना खास ख्याल और जुड़े रहिए यूं ही FM रेनबो कानपुर के साथ।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हेल्थ मैगजीन। आइए सुनते हैं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सार्वभौम त्रिपाठी से अतीक सिद्दीकी की बातचीत, विषय किडनी रोगों से बचाव।
1: हेल्थ मैगजीन कार्यक्रम के आज के इस अंक के प्रायोजक हैं किडनी केयर क्लिनिक कानपुर।
2: क्या आपको किडनी से जुड़ी कोई भी परेशानी है? तो आप चिंता छोड़िए, किडनी केयर क्लिनिक कानपुर में मिले अनुभवी डॉक्टरों से और पाएं बेहतर इलाज, आधुनिक सुविधाएं, सटीक जांच और पूरी देखभाल। तो आज ही आइए किडनी केयर क्लिनिक, अशोक नगर, निकट मोती झील चौराहा, कानपुर।
3: हेल्थ मैगजीन सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को अतीक सिद्दीकी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आज के इस अंक में एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर सार्वभौम त्रिपाठी जी, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही जिन्होंने SGPGI लखनऊ में एज DM नेफ्रोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दी हैं, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहे हैं। और आज एक बार फिर हम इनसे बात करेंगे, हमारा विषय है किडनी रोगों से बचाव। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि आम जो किडनी की समस्याएं हैं उसमें हम किस तरह की सावधानियां बरतें हैं, क्या लक्षण हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या खाएं, क्या पिएं। आज हम आपसे और गहरी बातचीत करेंगे कि डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जो आगे के स्टेज की ट्रीटमेंट है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डायलिसिस होता क्या है।
4: जैसे किडनी डिजीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होगी एक्यूट किडनी इंजरी, दूसरी क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज के 5 स्टेजेस हैं, उसमें स्टेज 5 में जब क्रिएटिनिन काफ़ी हाई होता है, पेशेंट को झटके आते हैं, पैरों में इतनी सूजन होती है कि दवा असर करना बंद कर देती है, पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उस जानलेवा कंडीशंस में हम डायलिसिस का यूज़ करते हैं। बेसिकली डायलिसिस खून को साफ करना, यूरिया क्रिएटिनिन को रिमूव करना, इवन जो एक्स्ट्रा बॉडी में फ्लूइड या पानी भर जाती है उसको रिमूव करना, ताकि पेशेंट की सांस फूलने में समस्या दूर हो जाए और यूरिया क्रिएटिनिन सब क्लियर हो जाए बॉडी से। मेनली फिल्टरिंग का काम करता है, जो किडनी अभी हमारी नहीं कर पा रही है। तो डायलिसिस लाइफ सेविंग होता है, जो पेशेंट्स के लिए वो उसकी नीड हो। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि एक मिथ है कि डायलिसिस लाइफ को थ्रेटनिंग है, बट आई विल से इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसेस फॉर पर्सन हु नीड इट दैट टाइम।
3: किसी किडनी के मरीज को डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है, यानी किस स्टेज पर, वो कैसे आप पहचान करते हैं?
4: बेसिकली सीरम क्रिएटिनिन की जांच जब ज़्यादा होता है, कभी कभी 8 सीरम क्रिएटिनिन 8 को हम लोग टारगेट पकड़ते हैं, और GFR बिलो 15 जो CKD स्टेज 5 हम कहते हैं। दूसरा, जिनकी सांस फूलती है, सूजन इतनी हो जाती है कि दवा के माध्यम से कम नहीं होती, खून की काफ़ी कमी होना, भूख ना लगना, झटके आना, ये सब कंडीशंस होती हैं जिसमें डायलिसिस शुरू की जाती है।
3: जी, तो हम ये जानना चाहेंगे, क्या ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं, क्या वो BP के मरीज़ रहते हैं या डायबिटीज़ से जुड़े हुए मरीज़ हैं, किस तरह के मरीज़ ज़्यादा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है?
4: तो जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं किडनी डिजीज़ के लिए। तो जो डायलिसिस कराते हैं उनमें ये चीज़, तो शुगर और BP की प्रेवेलेंस ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनकी BP नॉर्मल होती है और उनको शुगर की बीमारी रहती नहीं है, और किडनी में छोटे किडनी होने के कारण बचपन से उनको भी डायलिसिस की नीड पड़ती है, और यूजुअली डायलिसिस पेशेंट में BP हाई रहती है।
3: आम लोगों में एक भ्रांति ये भी है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो अभी ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इसमें कितनी सच्चाई है?
4: एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट्स होते हैं उनमें हो सकता है कभी कभी 2 या 3 डायलिसिस की नीड पड़े और उसके बाद डायलिसिस की नीड ना रहे। तो डायलिसिस की नीड ना रहना भी एक पॉसिबिलिटी है अगर पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी के हों। मान लीजिए CKD स्टेज 5 के भी पेशेंट हैं, उनमें डायलिसिस की नीड है, तो डायलिसिस उनके लिए लाइफ सेविंग है, और डायलिसिस कराने के बाद पेशेंट की लॉन्जिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, और तो इससे डरने की वजह से पेशेंट्स की ज़्यादातर मोर्टैलिटी या डेथ होने के चांसेस भी रहती है। तो आई विल से डायलिसिस लाइफ सेविंग है, लाइफ एंडिंग नहीं है, तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर पेशेंट्स।
3: तो श्रोताओं आपने सुना ना कि डायलिसिस जो है वो लाइफ सेविंग है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। कार्यक्रम के इस मौके पर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पसंद का कोई एक गीत हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
4: सर अभी मशहूर सिंगर हमारी आशा भोसले जी का निधन हुआ है, तो मैं उनके मेमोरी में उनके गाए हुए कोई भी गाना जो आप चाहें वो।
3: जी तो दोस्तों आइए सुनते हैं हमारी आशा भोसले जी की आवाज़ में गाया गया ये गीत।

0: सब अभी हम बात कर रहे थे डायलिसिस के बारे में, आपने बहुत बखूबी चीज़ों को समझाया। अब हम किडनी ट्रांसप्लांट पर बात करना चाहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है।
1: किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दा प्रत्यारोपण वो फाइनल स्टेज ऑफ किडनी डिजीज जो है CKD5 के बेस्ट इलाज माना जाता है, इवन बेटर देन डायलिसिस अगर ट्रांसप्लांट हो पाए। इसमें किडनी एक हेल्दी डोनर से, जो रिलेटेड डोनर हो या फिर कैडावरिक डोनर हो, उनसे लेके हमारे किडनी डिजीज पेशेंट में पेट के निचले भाग में ट्रांसप्लांट किया जाता है और उसकी मदद से फिर नॉर्मल जीवन यापन पेशेंट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने डोनर के दो टाइप्स बताए थे, एक बार समझा दें आसान भाषा में।
1: एक होते हैं लाइव रिलेटेड डोनर, जो रिश्तेदार फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, माता पिता भाई बहन या हस्बैंड वाइफ, ये अपने किडनी अपने रिलेटिव को डायरेक्ट डोनेट कर सकते हैं
0: जी।
1: वो हो गए लाइव डोनर। और जब पेशेंट्स की कभी कभी डेथ हो जाती है, जो ब्रेन स्टेम डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के वजह से, उनमें भी अगर उनके रिलेटिव्स एग्री करते हैं डोनेशन के लिए, तो वो कैडावरिक डोनर भी एक तरीके के डोनर हैं, जो कि यूपी में काफ़ी कम कैडावरिक डोनेशन हो पाती है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। तो जैसे लाइव डोनर हो गए वो तो रिलेटेड डोनर ही होते हैं
0: जी।
1: तो उनको भी हम लोग काउंसलिंग, जो विलिंग है तो विलफुल डोनर ही डोनेट करता है, और जो डोनर हैं उनके लिए ज़्यादा रिस्क कुछ रहता नहीं है, उनके सारे टेस्ट्स किए जाते हैं और जो एलिजिबल होते हैं तब भी जाके उनको डोनर के तौर पे सिलेक्ट किया जाता है। ये हो गई हमारी लाइव वाली। और जब कैडावरी की बात करते हैं तब वो एसिडेंटल ब्लड ग्रुप अगर मैच करता है तो फिर हम रेसिपियंट्स को बुला के उनमें ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू करते हैं
0: जी। तो एक बार अगर किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दा प्रत्यारोपण हो जाता है, इसके बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: क्योंकि गुर्दा प्रत्यारोपण दूसरे की किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो बॉडी यूजुअली किडनी को एक्सेप्ट करता नहीं या रिजेक्शन के चांसेस रहती हैं, इसलिए उनमें से उनमें कुछ मेडिसिंस, इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हैं, वो चलना पड़ता है उनमें, जैसे वाइसोलोन हो गई या MMF की दवा हो गई, और ये सब दवा से बाकी इन्फेक्शन होने के खतरा थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए उनमें मास्क का प्रयोग करना या बाहर भीड़ में ना जाना, ये सब की सलाह की जाती है, और शुद्ध खाना खाना, कोई इम्प्योर या बाहर की चीज़ें ना खाने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करते हैं
0: जी। और किस तरह की चीज़ों से बचाव रखना चाहिए, क्या खान पान में क्या बचाव रखें?
1: तो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में यूजुअली नॉर्मल तरीके से जो रेस्ट्रिक्शन हम डायलिसिस पेशेंट में करते हैं उस तरह के रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते हैं, बट हेल्दी नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट के लिए उनको कहा जाता है, बाकी उनमें रेस्ट्रिक्शन सारे हट जाते हैं जो डायलिसिस पेशेंट में इतने सारे रेस्ट्रिक्शन हैं, बट उस पर प्योरिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की ध्यान रखनी पड़ती है, साफ सुथरा होना चाहिए
0: जी। तो डॉक्टर सार्वभौम त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छे से किडनी से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में जानकारी दी। आशा है कि लोगों में इसके प्रति थोड़ी सी सजगता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों को लाभ भी मिलेगा। आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और इतनी अच्छी

0: जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।
0: इसी के साथ कार्यक्रम हेल्थ मैगजीन को खत्म करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।
2: हेल्थ मैगजीन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सार्वभौम त्रिपाठी से अतीक सिद्दीकी की बातचीत। विषय था किडनी रोगों से बचाव।
3: हेल्थ मैगजीन कार्यक्रम के आज के इस अंक के प्रायोजक थे किडनी केयर क्लिनिक कानपुर।
4: क्या आपको किडनी से जुड़ी कोई भी परेशानी है, तो आप चिंता छोड़िए। किडनी केयर क्लिनिक कानपुर में मिले अनुभवी डॉक्टरों से और पाएं बेहतर इलाज, आधुनिक सुविधाएं, सटीक जांच और पूरी देखभाल। तो आज ही आइए किडनी केयर क्लिनिक अशोक नगर, निकट मोती झील चौराहा, कानपुर।
5: हाय, दिस इज उदित नारायण। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
2: वन जीरो टू पॉइंट टू की फ्रिक्वेंसी को ट्यून किया है आपने, और अब आइए एंजॉय करते हैं ये म्यूजिकल शो, यानी बैक टू बैक म्यूजिकल सॉन्ग्स।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: FM रेनबो सुबह 6 से रात 12 बजे तक, हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपका सच्चा हमसफर।
5: वेल 5:18 हो गए हैं और ये जो काउंटडाउन शो है ये शुरू हो चुका है। आपने 10वां नंबर गीत और 9वां नंबर गीत जो है वो सुन लिया है, जो कि फिल्म यारा दिलदारा और हिना से थे। अब बारी है 8वें नंबर गाने की और ये यशराज की फिल्म है और इसमें मेन एक्टर्स अनिल कपूर, श्रीदेवी, अनुपम खेर और वहीदा रहमान थे और शिव हरी का संगीत है, जो कि ऑब्वियसली जो यशराज फिल्म के काफ़ी चहेते म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। और इस गाने में लेजेंडरी लता जी की आवाज और साथ में हरिहरन की आवाज। फिल्म है लम्हे और गाना है कभी मैं कहूं कभी तुम कहो।

वेल 10, 9, 8 हो गए, अब बारी है 7 नंबर की। और ये जो गाना आप सुनने वाले हैं, इसमें आवाजें हैं कविता कृष्ण मूर्ति की, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह और मनहर उदास की। सुभाष घई की ये फिल्म है, उनकी प्रोडक्शन है। और इसमें खास बात यह है कि दिलीप कुमार और राजकुमार पहली बार नहीं, दूसरी बार इस फिल्म में आए थे। 1991 में ये फिल्म आई थी और दूसरी बार ऐसा मौका था जब ये दोनों दिग्गज कलाकार एक साथ आए थे। इससे पहले 1959 में ये साथ में आए थे, फिल्म थी पैगाम। और विवेक मुश्राण और मनीषा कोरेला की ये डेब्यू फिल्म थी और संगीत है लक्ष्मी प्यारे का। फिल्म तो आप समझ गए होंगे, जी हाँ, फिल्म है सौदागर और गाना ये वाला।

well, ये तो सौदागर का गाना आपने सुना, लेकिन अब काउंटडाउन को आगे बढ़ाते हैं और छठे नंबर पर कौन सा गाना है ये जल्दी आपको पता चलेगा। और ये है फिल्म, मतलब ये जो फिल्म थी ये अजय देवगन की डेब्यू फिल्म थी बिल्कुल, और आप समझ गए होंगे क्योंकि सुन सुन की एंट्री जो है वो काफ़ी मशहूर हुई थी। और इस फिल्म से हिंदी में डेब्यू किया था इस फिल्म की हीरोइन मधु ने, वैसे वो साउथ में फिल्म कर चुकी थी लेकिन इस हिंदी की अगर बॉलीवुड की बात करें तो ये फिल्म भी उनकी डेब्यू फिल्म थी। और गीत लिखे थे समीर ने और नदीम श्रवण का संगीत था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट थी, आवाज़ कुमार सानू और अनुराधा पौड़वाल की।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: वेल, अगले नंबर के फिल्म यानी कि पांचवें नंबर पर वो गाना है जो कि प्यार को दर्शाता है, यानी कि फिल्म है लव, और इसमें सलमान खान और रेवती मुख्य भूमिकाओं में थे। और ये तेलुगु फिल्म प्रेमा की रीमेक थी एक्चुअली, और फिल्म एवरेज थी पर गाना याद किया जाता है, और म्यूजिक आनंद मिलिंद का है और आवाज़ SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा की।

Well, 1991 के इस काउंटडाउन में हमने गाने सुन लिए और अब पायदान पर पहुंच गए हैं चौथे नंबर के, और चौथे के बाद तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। वेल, चौथे नंबर पर कौन सी फिल्म है? इस फिल्म में सितारों या कलाकारों की भरमार थी और ये बहुत ही एंटिसिपेटेड फिल्म थी। फिल्म इसलिए एंटिसिपेटेड थी क्योंकि इसमें बिग बी अमिताभ बच्चन थे और इनके अलावा गोविंदा, रजनीकांत, किमी काटकर, शिल्पा शिरोडकर और साथ में अनुपम खेर, डैनी और कादर खान, यानी कि कलाकारों की और एक्टर्स की कमी नहीं थी। और फिल्म भी काफ़ी हिट थी और म्यूजिक दिया था लक्ष्मी प्यारे ने, और फिल्म थी, जब इतने सारे थे कलाकार तो सब ये कह रहे थे भाई इसमें तो हम हैं, हम हैं। जी हाँ, फिल्म थी हम और गाना ये रहा आपके लिए।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: और अब बारी आती है तीसरे नंबर के पायदान की, और इसमें वो है कि जब भैया दिल है कि मानता ही नहीं। जी हाँ, ये फिल्म का नाम भी और गाना भी है। इसमें मेन एक्टर्स आमिर खान और पूजा भट्ट थे, और महेश भट्ट की डायरेक्शन थी इस फिल्म में, और म्यूजिक नदीम श्रवण का था, और फिल्म कमर्शियली सक्सेस रही।

वेल, अगला गाना जो आप सुनने वाले हैं, यानी कि इस काउंटडाउन का नंबर टू, दूसरे नंबर के पायदान पर जो गाना है, उसमें संजय दत्त, पूजा भट्ट उस गाने में नजर आएंगे, लेकिन इस फिल्म में सदाशिव अमरापुरकर भी थे, एक साथ नजर आए थे, और डायरेक्टर महेश भट्ट, सिंगर्स अनुराधा पौड़वाल और कुमार सानू, म्यूजिक जो दिया था वो नदीम श्रवण का था, और लिरिक्स, जी हाँ, 90s के दौर में बहुत ही सफल और बहुत सी फिल्मों में जिन्होंने गाने लिखे, समीर।

और अब आपको इंतजार होगा कि 1991 की टॉप 10 में नंबर एक पायदान पर कौन सी है। वो फिल्म है जो फिल्म काफी हिट हुई थी और ये गाना उसी फिल्म से है। इसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान थे। म्यूजिक नदीम श्रवण का और लिरिक्स समीर के। 1991 की सबसे सफल फिल्म थी ये और गाना भी काफी हिट था। तो आज के इस काउंटडाउन का नंबर एक गाना 1991 का ये रहा। इसी के साथ दीजिए देव को इजाजत, जल्द मुलाकात होगी आपसे, क्योंकि कहीं नहीं मैं जा रहा हूं और कहीं नहीं आप जा रहे हैं। बस अगले घंटे फिर बने रहिए 100.7 FM के साथ और देव के साथ।

शाम के 6 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और इस प्रगति में सांस्कृतिक विरासत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में पवित्र ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया। इस दौरान मंदिर परिसर में गुजरात से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के मुख्य आयोजन का लाइव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। बागपत में एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र कर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और सनातन धर्म की उदारता पर प्रकाश डाला। जिले के शिव गोरखनाथ आश्रम में नवनाथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और विदेशी आक्रमण पर बोलते हुए कहा कि यह धरती विकास और गौरव की प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लखनऊ के केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान एनबीआरआई के निदेशक डॉ ए के शासनी ने कृषि और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों के महत्व से अवगत कराया। वहीं वैज्ञानिक डॉ अश्विन काशीकर ने एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से जलवायु अनुकूल और उच्च उत्पादकता वाली फसलों के विकास पर प्रकाश डाला। इसके अलावा सीमैप में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न समझौता ज्ञापनों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर दिए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए खेल क्षेत्र से जुड़े उत्कृष्ट खिलाड़ियों और खेल हस्तियों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय खेल कार्यालय केडी सिंह बाबू स्टेडियम की ओर से सूचना जारी की गई है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी डॉ अतुल सिन्हा ने बताया, इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र की 3 प्रतियों के साथ अपना आवेदन 30 मई तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ खेल उपलब्धियों एवं व्यक्तित्व से संबंधित विस्तृत साइटेशन भी प्रस्तुत करना होगा। अयोध्या में 2 दिवसीय श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान गैलरी के सभी कार्य 30 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण की प्रगति समीक्षा में निर्णय लिया गया कि मंदिर परिसर स्थित संग्रहालय दिसंबर के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। श्री मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर में विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। 7 बजे सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज़।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

वेल फ्रेंड्स, 6:08 का ये वक्त हो रहा है। जैसे मैंने कहा था कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और हाजिर रहूँगा आपके पास, आपके साथ रहूँगा 107.7 FM पर। और इस वक्त जो है ये अगला शो, अगला प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है शाम अवध। वेल, देव का सलाम कबूल कीजिए। मुझे पता है इस वक्त आप चुने हैं हमारे साथ, और ये शाम का ये वक्त जब आप हमारे साथ गुजारते हैं, जब बिताते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता है कि सुबह से लेकर रात तक जब आप का साथ हमें मिलता है तो इससे हमें हौसला मिलता है। और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम बिल्कुल आपके साथ, मतलब अच्छे प्रोग्रामों के ज़रिए जुड़े रहें, अच्छे गानों के ज़रिए जुड़े रहें और आपका एंटरटेनमेंट करते रहें, और आप इसी तरह खुश रहें, मस्त रहें और बस खिलखिलाते रहें। फिलहाल शाम अवध का ये सफ़र शुरू हो चुका है। आज रहिए इस सफ़र में अपने दोस्त देव के साथ, तो सुनते रहिए। फिलहाल ये अगला ट्रैक आपके लिए आ रहा है और इसके बाद लौट कर आता हूँ, और शाम की कुछ बातें, कुछ खास हलचल जो हो रही हैं शहर में, हमारे आसपास, उन चीज़ों का जिक्र, उन चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा आपको। पर बने रहिए हमारे साथ शाम अवध में 107.7 FM पर।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
3: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।
4: तो

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: स्टे ट्यून्ड।

ये समय जो है वो ये कह रहा है कि फिलहाल जो है भी गर्मी पड़ रही थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन जो मौसम ने करवट बदली, थोड़ी बहुत फुहार हुई, कहीं आंधी तूफान आया, पानी बरसा, तो उससे जो है वो टेम्परेचर काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गया, यानी कि राहत मिली है। लेकिन अभी बस एक दो दिन की राहत है, उसके बाद जो है मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी 2 दिन के बाद से जो है वो तापमान यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ा सा, थोड़ी सी गर्मी आएगी। भाई गर्मी में गर्मी ना पड़े तो क्या मज़ा है, फिर आम फसलों का भी तो पर भी तो असर पड़ता है, अब आम पकेंगे कैसे, तो उसके लिए थोड़ी गर्मी तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी 2 दिन के बाद फिर से तापमान बढ़ेगा, लगभग 5 से 6 डिग्री का जो है वो फर्क आएगा, बढ़ेगा। लेकिन अभी एक दो दिन जो है वो कहीं कहीं छुटपुट बारिश भी हो सकती है, और थोड़े हल्की फुल्की जो है आंधी तूफान भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो है मौसम बदलेगा और फिर जो है वो गर्मी का सामना एक बार फिर से करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर गर्मी है भी तो आप अपने घर में रहिए और आराम कीजिए दोपहर के वक्त, मतलब ऐसे जो पीक टाइम होता है उसमें बाहर ना निकलें, और उस दौरान जब आप कहीं बाहर ना निकलें, कोई ऐसा ज़रूरी काम ना हो, तो आप हमारे साथ अपना वक्त बिताइए, यानी कि FM के साथ, 100.FM के साथ रहिए, और बस गाने एंजॉय कीजिए, म्यूज़िक एंजॉय कीजिए, और देखिए आपकी सारी गर्मी जो है बिल्कुल दिमाग ठंडा कूल एकदम सुकून से भरेगा, और बिल्कुल आराम से मज़े से म्यूज़िक को एंजॉय करके अपना दिन जो है वो बिता सकते हैं।

छः बजकर 24 मिनट का ये वक्त हो रहा है और कुछ ज़रूरी चीज़ें शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से जो पोस्ट ग्रेजुएट सम सेमेस्टर परीक्षाएं वो 16 मई से मतलब ये शुरू हो जाएंगी और जो एग्ज़ाम है वो मतलब जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कई जो पाठ्यक्रम हैं उनकी परीक्षा कार्यक्रम जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है और इसको डिटेल्स जो है वो आप वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएट सम सेमेस्टर नॉन NEP की परीक्षाएं जो है उसका भी स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया। ये परीक्षाएं, ये एग्ज़ाम्स 15 मई से शुरू हो जाएंगी और जो भी इनका डिटेल्स है या समय सारणी है ये सारी चीज़ें आपको साइट पर मिल जाएंगी। तो भाई अभी तक अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक डिटेल्स आएंगे, कब तक एग्ज़ाम्स शुरू होंगे, तो ये 16 और 15 से शुरू हो रही, बाकी डिटेल्स आप साइट पर जाकर ले सकते हैं। 6:25 का ये वक्त, मैं हूं देव आपके साथ लेकर आया हूं शाम अवध।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: रूहानी इश्क की मध्यम लौ में पकता, सर्दियों की सुबह किसी झील के शिकारे पे रखी कांगड़ी से निकलते कहवे की माफिक लज्जतदार। खामोश निगाहों के पीछे छुपी कोई चिंगारी जो सुर्ख रोहे की शक्ल में आंखों में पड़ती नजर आ जाए। सरहदों में पश्मीने की माफिक जवां दिलों में हौले से मुकम्मल होते हुए किसी सुनहरे ख्वाब की ताबीर बताता। रेडियो प्रोग्राम रजनीगंधा, सुनिए हर रात 10 से 12 100.7 FM रेनबो पर।
1: जी हाँ, 10 से 12 तो आप ये सुन सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप एंजॉय कर रहे हैं 107 FM पर कौन सा प्रोग्राम शाम अवद, और मैं आपका दोस्त देव। अभी बहुत कुछ है आपके लिए और सुनने के लिए भी, मतलब म्यूज़िक एंजॉय करने के लिए भी, और भी कुछ चीज़ें, कुछ खास बातें, कुछ जानकारियां जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 107 FM शाम अवद में।

संजय गांधी पीजीआई यानी कि जो लखनऊ में स्थित है, यहाँ के एक ज़रूरी बात जो कि मतलब कुछ जो तीमारदार जो मरीज़ वहाँ पे जाते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि एफ ब्लॉक में, वहाँ के एफ ब्लॉक में आयुष्मान भारत के अंतर्गत, आयुष्मान जन आरोग्य योजना के अंतर्गत एक नई हेल्प डेस्क शुरू की गई है। और ये हेल्प डेस्क जो प्रेमिसेस है, अस्पताल का जो परिसर है, वहाँ पर एक मतलब ऐसी जगह पर बनाएगा जहाँ जो मरीज और तीमारदार है वो आसानी से पहुँच सकते हैं और इस योजना से जुड़ी जो जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अभी तक ये सुविधा जो उनको नहीं मिल रही थी वो अब आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनको, जो भी मरीज़ हैं वो अपनी सारी जो डिटेल्स या फिर जो भी जानकारी, जो भी क्वेरीज, जो भी सवाल हैं वो हेल्प डेस्क पर जाकर, वहाँ पर एफ ब्लॉक में, हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा, एफ ब्लॉक में है, और वहाँ पर जाकर आप मरीज से जुड़ी या फिर डॉक्टर से जुड़ी या अस्पताल से जुड़ी, इस योजना से जुड़ी कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी। इसमें बहुत से लोगों को फायदा मिलेगा।

बीएनए की बात करें तो भारतेंदु नाट्य अकादमी यानी कि बीएनए जो युवाओं के साथ बच्चों को भी नाट्य कला का प्रशिक्षण देने जा रहा है, यानी कि जो ड्रामेटिक्स में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए भी अब ये बीएनए जो है ये जो नाट्य कला का प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग है वो शुरू करने जा रही है, और इसके लिए 8 जून से लेकर 5 जुलाई तक जो रंगमंच प्रशिक्षण कार्यशाला है, जो ये कार्यशाला है वो आयोजित की जाएगी, और बाल रंगमंच मतलब निर्देशक वॉल्टर पीटर जो हैं वो बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, और इसमें जो कार्यशाला जो होगी इसमें 7 साल की उम्र से लेकर 17 साल की जो आयु है वो अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, और 16 मई से लेकर 5 जून तक जो है वो एप्लीकेशन अपना भर सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे। तो भाई जो भी बच्चे हैं, मतलब अभी समर टाइम जो है वो छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, उसको अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हैं तो ये जो ड्रामेटिक्स है ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों में जाते हैं, हॉबीज़ होती हैं उनको पूरा करते, कुछ स्विमिंग जाते हैं, कुछ दूसरी क्लासेस जो हैं वो अटेंड करते हैं, तो इसमें एक ये जो ड्रामेटिक्स की कार्यशाला ये जो होने वाली है बीएनए में, इसको भी आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं, या जो भी इंटरेस्टेड हैं वो जाकर मतलब बताएं, इन्होंने 17 साल की उम्र तक जो है वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कि अच्छा एक अच्छी चीज़ जो है उसके साथ जुड़कर जो है वो कुछ अच्छा बढ़िया सीखेंगे आपके बच्चे, और जिनको इंटरेस्ट है वो तो खैर ऑब्वियस जाएंगे, लेकिन डेट का ध्यान ज़रूर रखिएगा।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: और इसी के साथ दोस्तों, दीजिए देव को इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि अभी जो है एक घंटा और मैं आपके साथ हूँ। और पता है ना आपको कि अगला प्रोग्राम कौन सा है? जी हाँ, हेलो एफएम, जिसमें आप अपनी बात हम तक पहुँचाते हैं और अपनी फरमाइश हम तक पहुँचाते हैं जो हम पूरी करते हैं। तो 2238852 और 2982 3770 यानी कि 2982377 पर डायल कीजिए। मैं हूँ बिल्कुल तैयार। क्या आप हैं तैयार? फिलहाल इस प्रोग्राम से लेता हूं इजाजत, जल्द मिलता हूं आपसे। सुनते रहिए 100.7 FM देव के साथ।

शाम के 7 बजे हैं। नमस्कार, अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर में विशेष महापूजा, 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए जल से मंदिर के शिखर पर किया जल अभिषेक। पीएम ने कहा, भारत की प्रगति में सांस्कृतिक विरासत ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। प्रदेश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और कलश यात्राओं का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने काशी विश्वनाथ मंदिर में लिया सोमनाथ संकल्प महोत्सव में हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत के शिव गोरखनाथ आश्रम में नवनाथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, भारत की धरती है विकास और गौरव का प्रतीक। सीएम योगी ने नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई वार्षिक बिजनेस समिट 2026 को किया संबोधित। कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का किया गया प्रावधान। प्रदेश के परिषदीय और कस्तूरबा विद्यालयों में 13 से 19 मई तक भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर होंगे आयोजित। बच्चों को पढ़ाई के साथ भारतीय भाषाओं और सांकेतिक संवाद की दी जाएगी शिक्षा। अयोध्या में मंदिर परिसर का विकास कार्य तेजी से बढ़ रहा आगे। निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, विरासत संरक्षण के लिए परिसर में स्थापित की जा रही अत्याधुनिक प्रयोगशाला। भव्य हनुमान गैलरी का काम 30 मई तक होगा पूरा। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों को भी नैक रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों को दी जाएगी गुणवत्ता सुधार की ट्रेनिंग। क्षेत्रीय खेल कार्यालय केडी सिंह बाबू स्टेडियम ने गणतंत्र दिवस 2027 पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों और खेल हस्तियों से मांगे आवेदन। अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र की 3 प्रतियों के साथ 30 मई तक कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश में बीते 24 घंटों में मौसम रहा शुष्क, तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का जताया अनुमान। इस बुलेटिन में इतना ही। 7:20 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।

जी हाँ, जिसे हर दिल गुनगुनाए। और 7:03 का ये वक्त हो रहा है, और ये वक्त होता है किसका, जब आप बोलते हैं हेलो और नंबर डायल करते हैं हमारा, जो कि है 0522 जो कि यहाँ का कोड है लखनऊ का, और इसके बाद आप नंबर डायल करेंगे 2238852 यानी कि 2238852, और एक और दूसरा नंबर है 2982377 यानी कि 2982377। तो ये दोनों नंबर डायल करके आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं, साथ ही अपनी फरमाइश भी हमसे पूरा करवा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक गाना प्ले करते हैं, और आज आपकी ये फरमाइश और आप तक ये जो सफर है यानी कि आपसे जो बात करेगा वो है आपका दोस्त देव 100.7 FM पर, और प्रोग्राम हेलो FM। तो तैयार रहिए, और बस वैसे फोन हमारे पास आ रहे हैं तो जल्दी से गाना प्ले करता हूं और देखता हूं कि किससे बात हो रही है और किसकी फरमाइश पूरी हो सकती है। तो फिलहाल चलिए एंजॉय कीजिए।

0: वल देखते हैं किसकी नहीं है। कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLife, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पहले से सोच के रखती हूँ।
2: चलिए बढ़िया, क्या करती हैं आप निशा जी?
1: मैं सिलाई करती
2: हूँ। ओके, वेरी गुड। और इस वक्त अभी कौन है साथ में आपके?
1: मम्मी बैठी है मेरे साथ।
2: तो मम्मी भी गाना सुनती है,
1: सुनती है?
2: अच्छा अच्छा गुड। अच्छा ये बताइए कि आपको फिल्में किस तरह की, मतलब पहले की फिल्में पसंद है या अभी जो आ रहे हैं, गाने वगैरह कैसे पसंद हैं आपको?
1: जी हमें 90s के ज्यादा पसंद है, फिल्में देखते हैं। आप तो नहीं देखते हैं, रेडियो ही ज्यादा सुनते हैं।
2: अच्छा 90s के गाने पसंद है। फिलहाल आपने ये जो गाना पसंद किया है, इसमें क्या एक्टर पसंद है या मतलब जो हीरोइन है वो पसंद है या फिर फिल्म पसंद थी या फिर सिर्फ गाना पसंद है?
1: जी सब गाना पसंद है, इसकी म्यूजिक अच्छी लगती है हमें।
2: अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छा। चलिए हम आपका गाना जो है वो प्ले कर रहे हैं और
1: मैं नाम लेना चाहती हूँ।
2: जी

0: जल्दी से।
1: पहले तो आप
0: थैंक यू
1: टीम को संडीला से गुलाबका सिद्दी की है
0: जी,
1: लखीमपुर सीरी सनी है साहिबा अंसारी,
0: ओके ओके,
1: खुदमान सारी, रुसान अंसारी, सानी अंसारी और जितने सभी को।
0: चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच निशा जी।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: और बस हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर जो

उड़ गए हैं, जल्दी से उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हेलो। लगता है कुछ दिक्कत होगी, जुड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं, उनकी पसंद जो थी वो हम ज़रूर प्ले कर दे रहे हैं, और उम्मीद है वो इस वक्त सुन रहे होंगे और एन्जॉय करेंगे अपनी पसंद का ये। लगता है कुछ दिक्कत हो गई, बात नहीं हो पाई, और चलिए आप लोग ट्राई करते रहिए, हो सकता है।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, चलिए, लगता है फिर से आपकी लाइन जुड़ गई। जल्दी से बात करते हैं क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। जी बताइए अपना नाम।
1: सर जी, सर जी हम तारीख बोल रहे हैं सर जी, वो अनियर पे। सर जी आप आज नहीं आ रही थी सर जी, बोलते हैं हेलो हेलो
0: जी, आप होल्ड किए हुए थे।
1: जी, होल्ड किए हुए थे
0: जी चलिए, हाँ बताइए अपना नाम।
1: जी। हेलो
0: हाँ जी बताइए।
1: जी, नमस्ते सर जी।
0: जी, नमस्कार, बताइए।
1: जी तालिब अंसारी बोल रहे हैं वाराणसी से।
0: जी तालिब जी, वो कुछ दिक्कत हो गई थी तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हमने आपका गाना प्ले कर दिया था। ठीक है,
1: ठीक है सर जी।
0: अच्छा। और ऐसा है क्योंकि अभी वक्त हो रहा है समाचारों का, थोड़ी देर में समाचार आएंगे प्रादेशिक, तो मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका गाना जो है वो प्ले हो जाए और आपसे बात जो है वो डिटेल में फिर कभी हो जाएगी, है ना। कहाँ से बोल रहे हैं वैसे बता दीजिए।
1: जी हम राजा कटरा बाराबंकी से बोल रहे हैं सर जी, और ये गाना डेडिकेट रहेगा मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद साबिर भाई को।
0: चलिए चलिए, ठीक है। और दोबारा इसके बाद जब आपका फोन लगेगा तब आपसे थोड़ा और विस्तार से बात होगी, ठीक है।
1: अनियर पे नहीं जा पाए
0: अरे बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप लोग तो फोन लगाते हैं, बिल्कुल लग जाता है। चलिए चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।

0: बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थ स्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना, मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों के भी नए रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य, उच्च शिक्षा मंत्री

0: योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं।
1: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है, और हम सब आभारी हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को प्राप्त हो रहा है, उसी का परिणाम है सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज सोमनाथ में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी आध्यात्मिक चेतना में निहित होती है, और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है।
2: यह पर्व हमें अपने गौरवशाली अतीत से ऊर्जा लेकर भविष्य के भारत के निर्माण का संकल्प देता है। ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, अपनी संस्कृति पर गर्व करता हो और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हो। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक समृद्धि, भौतिक संस्थान या तकनीकी प्रगति में नहीं होती, बल्कि उसकी सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और आत्मिक आधार में निहित होती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है, नीति निर्माण में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। आज उत्तर प्रदेश ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है।
3: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें, और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वह थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक

0: समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली के शुभारंभ के साथ भारत ने प्रौद्योगिकी आधारित राजमार्ग प्रबंधन के एक नए युग में प्रवेश किया है। नई दिल्ली में इस उन्नत टोल प्रणाली का उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पहल से टोल प्लाजा पर लगने वाला अधिक समय कम हो जाएगा और ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और यात्रा में होने वाली देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी और प्रतिवर्ष 81,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विश्वविद्यालयों के साथ ही प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को भी नैक और अन्य राष्ट्रीय रैंकिंग दिलाना है। इसके लिए कॉलेजों के प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें उन्हें बताया जा रहा है कि संस्थानों में गुणवत्ता, रिसर्च कल्चर, डिजिटल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाकर किस प्रकार रैंकिंग हासिल की जा सकती है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कॉलेजों में छात्र संख्या बढ़ाने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में दो दिवसीय श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष नीपेन्द्र मिश्र ने बताया है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभा कार्य 30 मई तक पूरा कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा में निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर स्थित संग्रहालय दिसंबर के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। श्री मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर में विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
1: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने दो अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं, लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान सीमैप और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NVRI में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विन कशिकर ने AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रिसीजन ब्रीडिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से जलवायु अनुकूल और उच्च उत्पादकता वाली फसल किस्मों के विकास पर प्रकाश डाला। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थस्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना, मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों को भी रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: जी।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ओके, तो लखनऊ कितनी बार आना हो जाता साल में?
2: लखनऊ तो मैं मतलब अपने जीवन में 3 या 4 बार ही गई हूँ।
1: जीवन में 4 बार गई है?
2: जी सर, लेकिन अब आना जाना लगा रहता है।
1: अच्छा अच्छा, अपने घर पे आप अपने घर पे कितनी बार आती हैं आप साल में?
2: उसमें साल में तो मुझे खुद ही नहीं काउंट है, 2-3 महीने होते हैं, जैसे मेरे पास पैसे आते हैं मैं सीधा पहले घर भागती हूँ।
1: क्या बात है। तो आप अकेले आती हैं, फैमिली भी आती पूरी वहां से आपकी? वेरी गुड। चलिए, और अक्सर मेरे ख्याल से आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं और बीच बीच में आपसे बात होती भी रहती है, और मेरी भी शायद आपसे पहले बात हुई।
2: जी सर, 7 फरवरी को हुई थी हमारी बात आपसे।
1: बिल्कुल, सबका नोट करके रखती हैं आप।
2: जी सर,
1: क्या बात है, क्या बात। और तो चलिए, आपकी पसंद जो है वो आपने हम पर छोड़ रखी थी, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा।
2: बिल्कुल पसंद आएगा। और मैं 2 नाम ले लूँ सर?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
2: सर। अभी आपको बबीता राव जी सुन रहे हैं गोसाईगंज से।
1: ओके,
2: और हमारी मेरी दीदी शर्मा है जो रूपुर चले ना, उन्नाव से सुन रही है आपको।
1: चलिए,
2: और मियागंज से एक यासिफ भाई हमारे, और राजस्थान से हमारे महेंद्र भैया सुन रहे हैं आपको।
1: अच्छा, आपने पूरा पैन इंडिया पूरा ले रखा है
2: हमारी।
1: चलिए चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रोशनी जी, और बिल्कुल ऐसी, और मतलब आपसे बात करके ऐसा लगा बिल्कुल मतलब खुशी
2: बस आपकी ही थ्रू है, सुन सुन के ही ऐसे हैं।
1: चलिए, बस ऐसे ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए हमेशा।
2: धन्यवाद।
1: ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बाय बाय।

0: किसी से कहीं ना कहीं, लेकिन ये तो कहना जरूरी है ना कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर एक कॉलर हैं और कहना भी चाहते हैं वो, और उनका कहना जरूरी भी है, बनता भी है। हेलो।
1: हेलो सर जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग जी, नाम बताएं अपना।
1: सर हम रजनीश और से बात कर रहे हैं नौबो के शहर लखनऊ से, और इस समय हम ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ से बात कर रहे हैं।
0: क्या बात है, मतलब आप अपने शहर लखनऊ से बात करें ट्रांसपोर्ट नगर से। रजनीश जी, वेल आपने कहा नवाबों के शहर लखनऊ से है ना, तो आपके पास मतलब आपके अंदर फील है वो नवाबों वाली, मतलब कुछ ऐसा करते हैं जिससे लगता है कि हाँ भाई।
1: सर ऐसा तो कुछ भी नहीं, हम टू व्हीलर के मैकेनिक थे और आपका कार्यक्रम सुन रहे थे तो घर जा रहे थे, रास्ते में हम कॉल भी ट्राई कर रहे थे तो लग गया।
0: तो कैसे जाते हैं, अपने साधन से अपनी गाड़ी से जाते हैं, कैसे जाते हैं?
1: जी सर टू व्हीलर से जाते हैं।
0: तो कैसे सुन रहे हैं फिर?
1: फिर सर एयरफोन से एफएम से सुन रहे थे।
0: तो अभी रुके हुए हैं, अभी भी ड्राइव चला?
1: अभी रुके हुए हैं फिलहाल। मुझे गाना सुनवा दीजिए, फिल्म है का नाम है एम एस धोनी, गाने के बोल कौन तुझे, जितने लोग सुने सभी के लिए।
0: जी जी बिल्कुल, आपने बहुत ही मतलब अच्छा, इससे पहले कभी बात नहीं हुई आपकी, फर्स्ट टाइम है ये?
1: नहीं सर, हम बहुत पुराने कॉलर हैं लेकिन महीने में एक दो बार कॉल लगा लेते हैं।
0: बात होती है आपकी?
1: जी जी सर।
0: तो चलिए बिल्कुल, आप अपने मतलब अपने घर पे जाइए और देखिए चलते चलते ये गाना है आपका, ये मैं प्ले कर रहा हूँ, इसको एंजॉय करते सुनते हुए जाइए। ठीक है, ओके, बाय बाय रजनीश जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।

0: वल अभी इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर हैं और चलिए इनसे बात करते देखें वो क्या कह रहे हैं। हेलो,
1: मुझको जान से प्यारा कह लो या आँखों का तारा कह लो।
0: जी,
1: मुझको जान से प्यारा कह लो या आँखों का तारा कह लो, इतना तो हक बनता ही है ए दोस्त, इतना तो हक बनता है ए दोस्त, खुद को आप हमारा कह लो।
0: क्या बात है, क्या बात,
1: हमारा कह लो,
0: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। और ये जो मतलब शख्स ये कह रहा कि खुद को हमारा कह लो, उस शख्स का, उस इंसान का नाम जान सकते हैं?
1: जी बिल्कुल जान सकते हैं, अकबर बात कर रहा हूँ, विलेज चौखंडी डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी।
0: अरे बाप रे, नाम भी बड़ा मतलब भारी सा है आपका। जी अकबर जी, बाराबंकी से भी बात कर रहे हैं आप ना?
1: हाँ जी, बाराबंकी से बात कर रहा
0: हूँ। और वैसे मतलब क्या आप कह रहे हैं ना कि अभी बाराबंकी से बात कर रहे, तो मतलब क्या बाराबंकी के अलावा भी कहीं और रहते हैं क्या, आप जाते हैं?
1: जी जी हम पूना में रहते हैं, जरी का काम करते हैं, तो साल भर पे या 8-6 महीने पे जो भी आना हो जाता है पर्व त्योहार में तो आ जाते हैं। फिलहाल हम ईद पे आए हुए थे, तो जब से अभी यहीं पर हैं, जाने की तैयारी थी लेकिन
0: तो टाइम तो हो गया काफी है ना,
1: जा नहीं पाए। जी जी टाइम 2 महीने हो गए।
0: तो चलिए अब जब परिवार के पास आते हैं, फैमिली के पास आते हैं, तो फिर मन भी तो नहीं करता जाने का, जल्दी लौटने का, है ना?
1: जी अब परिवार से जब मिलते हैं तो मन तो वैसे भी किसी का जाना नहीं होता, लेकिन ये होता है मजबूरी होती है तो इंसान बाहर निकलता है, क्या करे।
0: अच्छा, आप पुणे में जरी का काम करते हैं, यहाँ जब लखनऊ में थे तब यहाँ पे भी करते थे क्या, मतलब बाराबंकी में?
1: यहाँ भी करते थे।
0: तो उसके बाद वहाँ पे आपने जाने का सोचा कैसे, आपके पास आइडिया है या किसी ने आपको बताया कि भाई अगर तो और बढ़ना है, आगे करना है, बिजनेस फैलाना है, काम फैलाना, तो बाहर जाके भी अपना हुनर दिखाओ?
1: हाँ बिल्कुल, हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि बाहर निकला जाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी कमाई है नहीं, बाहर निकलने का थोड़ा पैसा और काम भी बराबर होता रहता है।
0: जी हाँ, क्योंकि बाहर से जो भी
1: हर चीज एडजस्ट होता रहता है।
0: जी हाँ, क्योंकि बाहर से जो भी लोग आते हैं लखनऊ में, वो जरी का और चिकन का ये जो काम है वो यहाँ से लेकर जाते हैं, उनको लगता है कि लखनऊ आए तो कुछ लेकर जाएं इस तरह की चीज।
1: जी बिल्कुल
0: हाँ। और वहाँ पे जाके क्या आपको लग रहा है, कुछ मतलब बढ़ा है काम वहाँ पे, मतलब कुछ जाके फायदा है?
1: जी वहाँ पे फायदा भी है और काम भी बराबर होता रहता है, तो हर चीज।
0: अच्छा, मतलब वहाँ पे भी काम मिलता है आपको, है ना? अच्छा
1: हाँ जी, बराबर काम रहता है।
0: चलिए चलिए, बढ़िया, अच्छी बात है। और ये आपकी पसंद का ये गाना हमने मतलब लगा दिया,
1: टाइम से कई रिंग हो गई आपके प्रोग्राम में, हमने की लेकिन उठा नहीं, अब जाकर उठा, कोशिश करते रहे, आज बात करके ही रहेंगे आपसे।
0: लेकिन चलिए आखिरकार सफल तो हो गई मेहनत आपकी।
1: जी बिल्कुल, मैं कुछ नाम देना चाहूँगा।
0: जी जल्दी जल्दी बिल्कुल।
1: ये हमारे दोस्त हैं मोहम्मद तालिब, मोहम्मद आसिफ और निशा अंसारी हैं, जो की त्रिलोकपुर से हैं, और समा परवीन है, सादिया साजिया हैं, और साहिबा जी हैं, और बाकी सभी सुनने वाले हैं, मीराल यासिफ जी हैं।
0: चलिए चलिए, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, और चलिए।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: वाले 7:50 का ये वक्त हो रहा है और ज्यादा वक्त नहीं है, और देखते हैं जल्दी से जल्दी कितने कॉलेज से बात हो पाती है। और इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है, कृपया अपना नाम बताएं। हेलो
3: हेलो
2: हेलो।
3: हाँ
2: जी
3: सर, नमस्ते, गुड इवनिंग।
2: जी जी नमस्कार।

0: कौन बोल रही हैं आप?
1: पिंकी पिंकी बात कर रहे हैं, जगदीशपुर सेवगढ़ जिला रायबरेली से।
0: रिंकी पिंकी जी, रिंकी पिंकी जी से आपसे तो कई बार मेरी बात हो चुकी है और आप भी रेगुलर कॉलर हैं।
1: जी सर, काफी अंतराल के बाद आपसे बात हो रही है।
0: जी हाँ, लेकिन मेरे से आपकी अंतराल के बाद बात हो रही है, लेकिन एफएम में तो आपकी बात होती रहती है, उसमें तो कोई अंतराल नहीं पड़ता है ना?
1: सर काफी दिनों से कॉल ट्राई कर रहे हैं, कोई कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा हमारी।
0: अब भाई देखिए, तो किस्मत की बात है, क्योंकि इस पे नाम दिखता नहीं है। अब भाई जिसका उड़ जाता है, अब उसकी किस्मत होती है, खुल जाती है।
1: जी सर,
0: क्या
1: और सब
0: कर रही हैं?
1: कैसे हैं आप?
0: जी हम तो
1: सर
0: बढ़िया हैं,
1: कुछ
0: और
1: नहीं,
0: बता।
1: आलू के पराठे बना रहे खाने के लिए, आ जाइए।
0: बस बिल्कुल, अभी देखिए प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद फिर हम पहुंच रहे हैं।
1: जी सर बिल्कुल, आपका इंतजार रहेगा,
0: हाँ तो मेरे लिए कितने ज्यादा बनाएंगी आप?
1: जितने खाएंगे उतने बनाएंगे।
0: अभी से बना के रखेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, हम आएंगे उसके बाद बनाइएगा।
1: जी सर बिल्कुल, आइए आप।
0: चलिए ठीक है। और ये बताइए कि इस वक्त आप पिंकी बोल रही हैं या रिंकी बोल रही हैं?
1: सर रिंकी बोल रहे हैं।
0: अच्छा, पिंकी पीछे से सुन रही हैं।
1: जी सर, सभी लोग सुन रहे हैं हमारे घर में। सर
0: ओके, कौन कौन है इस वक्त से?
1: मम्मी है, पापा तो काम पे गए अभी नहीं आए, भाई है, बहन है। जी
0: अच्छा,
1: सर,
0: तो ये गाना सुनना आप ही लोगों को पसंद है या पूरी फैमिली को? सभी लोगों को गाना सुनना अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं।
1: हमारे यहाँ सुबह से लेकर रात 10 बजे तक रेडियो ऑन रहता है, सभी लोग सुनते रहते हैं।
0: क्या बात है, मतलब रेडियो ऑन अपना काम करता रहता है और आप अपना काम करते रहते
1: जी सर बिल्कुल सर,
0: हैं।
1: कार्यक्रम से भले ना जुड़ पाए लेकिन रेडियो हमेशा हमारे यहाँ चलता रहता है।
0: चलिए चलिए ठीक है। जल्दी से अगर मैंने आपका गाना प्ले कर दिया है और अगर
1: सर कुछ
0: कुछ।
1: नाम लेना चाहेंगे? सर
0: जी बिल्कुल।
1: सबसे पहले तो आप हैं,
0: ओके थैंक
1: उसके
0: यू।
1: बाद पूनम दीदी है कानपुर से, गुंजन तिवारी है, समा परवीन है, साहिबा अंसारी है, मोहम्मद फैज भाई, वकील अहमद भाई, जावेद अख्तर भाई, और हिमांशु यादव जो सावस्ती से, और ममता ममता गौतम है, और सुरभी सिंह है सीतापुर से, और सब जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए, और जिनके नाम छूट गए उनको भी।
0: चलिए चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच रिंकी जी,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: और आज की लास्ट कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं, जल्दी से उनसे बात करते हैं, उनकी पसंद का ट्रैक जो है वो प्ले करना पड़ेगा। हेलो
1: कमल को गुलाब बना देंगे, गुलाब को कमल बना देंगे।
0: क्या बात है?
1: कमल को गुलाब बना देंगे, गुलाब को कमल बना देंगे। देर सर एक बार कह दो, देर सर एक बार कह दो, हम आपके लिए लखनऊ में ताजमहल बना देंगे।
0: क्या बात, चलिए हमने कह दिया,
1: हम आपके लिए लखनऊ में ताजमहल बना देंगे।
0: लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मतलब ताजमहल तो कब बनेगा, मतलब जब कब बनता है ये तो आपको पता है ना, तो अभी कुछ समय और मुझे जी लेने दीजिए।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम।
1: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर और बताइए आप कैसे हैं?
0: जी हम तो बढ़िया, आप बताइए जल्दी से आप कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे हैं सर, बहुत दिनों के बाद आए हैं, जल्दी आया करिए।
0: अब ये तो भाई देखिए, अब ये हमारे हाथ में तो है नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाला चाहता है। अब जैसे जैसे हम मतलब ऊपर वाला चाहेगा।
1: आगे सर जल्दी आना प्रोग्राम करने, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, हम आपको 4 बजे से सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे गाने बजाते हैं।
0: चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच जरा नवाजी को, आपको अच्छा लगा। बस हम हमारी कोशिश यही रहती है कि बस आप लोगों को पसंद आए प्रोग्राम, गाने अच्छे लगे और आप हमेशा एंटरटेन होते रहे।
1: एक बात ये बताइए
0: जी,
1: जो अभी पूना से भाई फोन किए थे उनका क्या नाम था? वो हमारा नाम लिए थे, हम भी उनका नाम लेंगे, इसलिए पूछ रहे हैं, नाम याद नहीं उनका, भूल गए।
0: अभी तो मुझे देखना पड़ेगा।
1: जो बाराबंकी से थे, पूना में जरी का काम
0: जी जी हाँ वो मैं समझ गया, तो आप ऐसे ही बोल दीजिए, वो सुन रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
1: तो हम गाना डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: जी जी अच्छा सुनिए, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं, गाना हम प्ले कर रहे हैं और आपसे विस्तार में और मतलब तसल्ली से बात होगी फिर आगे, ठीक है? कभी बात होगी आपसे,
1: थोड़ा भाई बहनों का नाम तो लेने दो
0: जल्दी से जल्दी से।
1: सबसे पहले आपको, फिर रिंकी पिंकी हैं जो जगदीशपुर में रहती हैं, और जो ये भाई अभी पूना से फोन किए थे ये भी हैं, और वकील अहमद भाई हैं, मोहम्मद आसिफ भाई हैं, गुलाब साहब की, साहबान भाई, साजियान भाई, जितने सुन रहे हैं उन सभी को, और जितने का नाम हम समय कम है नहीं ले पाए हैं इसके लिए सॉरी, बुरा मत मानना, और तो भी करेंगे तब बात
0: होगी। चलिए चलिए, ये आपका ये जो ट्रैक गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा प्ले हो गया, एंजॉय कीजिए शमा जी।
1: Okay, bye.
0: और दोस्तों इसी ट्रैक के साथ और इसी आखिरी कॉलर के साथ प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, जल्द होगी फिर आपसे मुलाकात यहीं पर, सो स्टे ट्यून्ड ऑन 100.7 FM।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 8 मई से आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मुख्य कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाषेक किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उधर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न आयोजन हुए और इस अवसर पर वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमनाथ से आए जल से काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है, नीति निर्माण में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराधी नए द्वार खोले हैं। आज उत्तर प्रदेश ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर्स रहित टोल संग्रह प्रणाली के शुभारंभ के साथ भारत ने प्रौद्योगिकी आधारित राजमार्ग प्रबंधन के नए युग में प्रवेश किया है। नई दिल्ली में सुन्नत टोल प्रणाली का उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पहल से टोल प्लाजा पर लगने वाला अधिक समय कम हो जाएगा और ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और यात्रा में होने वाली देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विश्वविद्यालयों के साथ ही प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को भी NAC और अन्य राष्ट्रीय रैंकिंग दिलाना है। इसके लिए कॉलेजेस के प्रधानाचार्यों और प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें उन्हें बताया जा रहा है कि संस्थानों में गुणवत्ता सुधार, रिसर्च कल्चर, डिजिटल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाकर किस प्रकार रैंकिंग हासिल की जा सकती है। और पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित होगा।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: स्यारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: रूहानी इश्क की मध्यम लौ में पकता, सर्दियों की सुबह किसी झील के कहवे की माफिक लज्जतदार, खामोश निगाहों के पीछे छुपी कोई चिंगारी जो सुर्ख रोहे की शक्ल में आंखों में पड़ती नजर आ जाए, सर्द रातों में पश्मीने की माफिक जवान दिलों में हवा से मुकम्मल होते हुए किसी सुनहरे ख्वाब की ताबीर बताता। रेडियो प्रोग्राम रजनीगंधा, सुनिए हर रात 10 से 12 100.7 FM रेनबो पर।

100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं इस वक्त आबशार अपनी दोस्त समरीन के साथ। साथियों, जिंदगी की किताब में कभी कुछ सफहात ख्वाहिशों से भरे होते हैं तो कभी इंतजार की खामोशियां इन पर नक्श हो जाती हैं। और इस पे शायर कहता है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। ये अल्फाज जिंदगी के इन्हीं एहसासात का अक्स हैं जो इश्क, जुदाई और तमन्ना के दायरे में गर्दिश करते हैं। आप इन्हीं जज्बात के नाम जहां आपको गजल में रूहानियत के साथ साथ रूमानियत को भी आप महसूस करेंगे और हर मिसरे में आप एक ख्वाब को जिएंगे। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी ही रूहानी गजल से जिसे आवाज दी है मेहंदी हसन ने।

इस मोहब्बत से बुलाया जाएगा तो कौन नहीं आएगा। 8:13 आप हैं सबरीन के साथ, प्रोग्राम चल रहा है आबशार। कभी कभी जिंदगी बिल्कुल ठहरी हुई सी लगती है, जैसे एहसासों की सारी खिड़कियां बंद हो चुकी हों, और फिर अचानक कोई याद, कोई ख्याल, कोई मुलाकात दिल को हल्के से छू जाता है। दिल की दरीचे से आहट पाकर वो अंदर आने की गुजारिश करता है और एक मीठी सी हलचल जाग उठती है। ठीक उसी नर्म एहसास को अपनी आवाज में अमर किया है गुलाम अली साहब ने। ये गजल सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं करती, बल्कि उन एहसास की भी बात करती है जो चुपचाप हमारे दिल के किसी कोने में जिंदा भर के लिए हैं। आइए इस सुरीली शाम में अपने एहसास को महसूस करते हैं, क्योंकि अब पेश है एक ऐसी गजल जो हवा की तरह हल्की है मगर असर उसका बहुत गहरा है। आपके रेडियो सेट पर ये रही

शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। उस मुलाकात की तलाश में शायद हम जिंदगी भर भटकते हैं जिसकी ख्वाहिश कभी दिल ने की थी, और वो मुलाकातें सिर्फ मुलाकात नहीं होती बल्कि वो दिल की सूखी जमीन पर पहली बारिश की तरह महसूस होती है। कभी किसी का नाम धड़कनों को तेज कर देता है तो कभी उसके आने की उम्मीद रूह तक को महका जाती है। इन्हीं नर्म और भीगे हुए जज्बात को अपनी दिलकश आवाज में सजाया है जगजीत सिंह ने। और इस गजल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस गजल में इंतजार भी है, मोहब्बत की तपिश भी है और मासूम ख्वाहिश भी है कि शायद एक मुलाकात जिंदगी को फिर से रोशन कर दे। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप लुत्फंदोज हों, जगजीत साहब की आवाज में इस खूबसूरत गजल से।

यकीनन इश्क आपको वो भरोसा दिलाता है कि उसकी एक झलक, उसके मिलने की आहट से सारी जिंदगी बदल जाएगी। मौसम खुशनुमा हो जाएगा, दिल शादाब हो जाएगा और हवाएं महकने लगेंगी। और इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि इसमें मोहब्बत के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत सा भरम या भरोसा कहें तो बेहतर होगा, कायम हो जाता है। वो भरोसा जो किसी की आवाज में सुकून ढूंढ लेता है, वो किसी के साथ को अपनी मंजिल समझ लेता है। लेकिन जब वही रिश्ता टूटने लगता है तो शिकायत खामोशी से बढ़ने लगती है, दर्द दुआ की तरह लबों पर उतर आता है। आज की इस महफिल में पेश है मलिका गजल फरीदा खानम की वो दिल को छू लेने वाली पेशकश, जिस गजल में शोर नहीं है, बस एक टूटा हुआ सा यकीन है, एक नर्म सी इल्तिजा है और मोहब्बत की वो तड़प है जो शिकायत करती है अपना लहजा बदले बगैर। इस खामोश और भीगी हुई कैफियत में उतरते हुए आपको सुनाते हैं अनकही चोट को छू जाने वाली ये गजल फरीदा खानम की आवाज में।

कहते हैं जिस भी चीज का उरूज होता है उसका जवाल भी होता है। ऐसे ही रिश्ते बनते हैं तो बिछड़ते भी हैं, लेकिन मोहब्बत की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि लोग बिछड़ तो जाते हैं लेकिन उनके साथ गुजारे लम्हे एहसास नहीं बिछड़ते। कुछ रिश्ते खत्म होकर भी दिल की दुनिया में हमेशा जिंदा रहते हैं, और एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान शिकवा नहीं करता बल्कि खामोशी से एक्सेप्ट कर लेता है उसे। इसी दर्द, इसी ठहराव और इसी खूबसूरत उदासी को अपनी आवाज में अमर किया एक बार फिर से फरीदा खानम ने। इस गजल में गहरा एहसास है, ना कोई शिकायत है ना कोई इल्जाम है, बस जुदाई को बड़ी नरमी से एक्सेप्ट किया गया है एक खामोश अदा के साथ। ये गजल उन लोगों की आवाज है जिन्होंने मोहब्बत को पूरी शिद्दत से जिया है, लेकिन फिर भी जो दुनिया का निजाम है कि जो मिला है वो बिछड़ेगा भी। तो बिछड़ जाने वालों के नाम, ये बेहद खूबसूरत गजल फरीदा खानम की आवाज में।

मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। क्या ये खूबसूरती के साथ लिखा हुआ ये गजल जिसे आवाज दी है फरीदा खानम ने। और मोहब्बत अगर कहें तो मुकम्मल होने के लिए होती भी नहीं है, ये बस इंतजार कर साथ साथ चलती है, कभी दुआ बनकर, कभी टीस बनकर, कभी एक ऐसी खामोशी बनकर जिसे सिर्फ आप जानते हैं या दिल समझता है। हमारी अगली गजल उर्दू के पायदार अजीम शायर मिर्जा गालिब के अल्फाजों से सजी है और उसे भी आवाज दी है जगजीत और चित्रा ने। क्या खूबसूरत दर्द है इस गजल में जिसमें तकदीर से शिकवा है, और ये शिकवा ये है कि उसे वो इंसान कभी पूरा मिला ही नहीं जिसकी वो जस्तजू करता रहा सारी उम्र, जिसकी ख्वाहिश करता रहा। ये गजल हमें सिखाती है कि चाहत मुकम्मल होने का नाम नहीं होता, कुछ रिश्ते एहसास बनकर ज्यादा खूबसूरत और मानीखेज लगते हैं। आइए इस खामोश और गहरी कैफियत में डूबते हैं, और इसी के साथ, इस गजल के साथ मैं समरीन आपसे आबशार से लेती हूँ इजाजत, लेकिन नए क्लेवर में थोड़ी फास्ट म्यूजिक के साथ आपसे हम मिलेंगे पॉप टाइम में 9 बजे से। रहेगा आपके मेल्स का इंतजार, फिलहाल सुनिए शाहकार गजल गालिब की जिसे आवाज दिया है जगजीत और चित्रा ने।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र नियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का

0: लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम

0: करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
2: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
3: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले

0: पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
2: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
2: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. Earlier in the day, Prime Minister Modi took part in the Somnath Amrit Mahotsav, marking 75 years since the inauguration of the restored temple in Gujarat dedicated to Lord Shiv. Mr. Modi performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the celebrations. In a social media post after the visit to the temple, the Prime Minister said Somnath Temple stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. He said 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi added, the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country, and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the fifth meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster country's readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. The government said the supply management has been good and the people need not panic or resort to overpurchase of fuel and other products. During the meeting, Defence Minister Rajnath Singh directed the officials to take concrete steps to implement Prime Minister Modi's 7-point appeal at the ground level. The meeting was attended by Union Ministers J.P. Nadda, Ashwini Vaishnaw, Hardeep Singh Puri, Kiran Rijiju, K. Ramohan Naidu, Sarbanand Sonowal and Dr. Jitendra Singh. Meanwhile, the centre today said the stock of fertilisers in the country is more than 51% for the Kharif season 2026. Additional Secretary at the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Aparna Sharma, stated this while addressing the inter-ministerial briefing on recent developments in West Asia in New Delhi today.
4: For the season of Kharif 2026, the stock is more than 51%. The fertilizer stock is comfortable and the

9:26 और 33 सेकंड, और ये रिमिक्स गाने हमें सिखाते हैं कि यार जिंदगी जब भी मोनोटोनस लगे तो थोड़ी ऐसे चेंजेस करके, सेम अल्फाज, वही एहसास, वही बीट्स, मगर थोड़ी शरारत और थोड़ा सा दिलकश अंदाज बदल देता है इनको और ज्यादा पसंद आते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों को छेड़छाड़ पसंद नहीं आती है, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी में अपडेट होना बहुत जरूरी है और करते रहना चाहिए। चेंजेस, बदलाव प्रकृति का नियम है, और बदलाव हर लिहाज से अगर आप कॉन्शियसली ख्याल रखते हुए पैरामीटर्स का कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। और जैसा कि हमने आपको लगातार बेहतरीन गाने सुनाए हैं, तो आपके भी बेहतरीन बेहतरीन से मेल्स हमारे पास आ रहे हैं। रोशनी रावत का मेल हमारे पास आया, लिखती हैं, नमस्ते दीदी, आप कैसी हैं? मैं आपके साथ 12:02 तक रहूंगी और मुझे बेहद अच्छा लगेगा रोशनी कि आप मेरा साथ निभाएंगी 12 बजे तक। मुझे आपके साथ प्रोग्राम में रहना बहुत सुकून देता है। आबशार बहुत अच्छा लगा, एकदम ललन टॉप गर्दा उड़ा दिया। अच्छा, आबशार में भी गर्दा उड़ सकता है? पॉप टाइम में तो उड़ सकता है, पर आबशार में गर्दा कैसे उड़ाती हैं आप रोशनी, बताइएगा। मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम पोस्ट बमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से, और चंडीगढ़ से मैं प्रोग्राम सुन रही हूँ। नीलू शर्मा दीदी, बबीता राव जी को राधे राधे बोल दीजिएगा। आई एम श्योर वो प्रोग्राम सुन रही हैं और उन्होंने आपका ये प्यार भरा सलाम जरूर सुना होगा। आगे लिखते हैं कि अर्ज किया है, बातों बातों में एक बात हो जाए आपसे, हकीकत में न सही, चलो सपनों में मुलाकात हो जाए आपसे। यूं तो हजारों लोग मिलते हैं रोज, मगर आपसे मिलना यादगार हो जाए। रोशनी, मेरी भी यही तमन्ना है कि जरूर मैं अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स से, जिनका प्यार इतना ढेर ढेर तादाद में मुझ तक आता है, कभी हमारी कोई एक ऐसी मुलाकात हो जिसमें हम सब मिलें और इस वर्चुअल दुनिया से अलग सामने से बैठकर हालचाल पूछें और बातचीत करें। अरविंद कुमार दुबे लिखते हैं, समरीन मैम गुड इवनिंग, आज का दिन बड़ा उमस भरा रहा, लेकिन अब प्रोग्राम में झक्कास गाने सुनकर बड़ा रिफ्रेशिंग फील कर रहा हूँ। मेरा संदेश शामिल करिए, और वो ये है कि नशा जीवन को नाश कर देता है और नाश का द्वार है। अगर नशा करना ही है तो FM रेनबो लखनऊ का कीजिए, सकारात्मक सोच वाले प्रोग्राम इन्हें अच्छे लगते हैं। और अरविंद दुबे, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, अच्छा ये बात तो सही है, जैसे मेरा भी ऐसे मानना है कि मजाजी मोहब्बत से बेहतर है कि आप हकीकी मोहब्बत करिए। किसी गलत नशे के फेल में पड़ने के बजाय कुछ अच्छी आदतें डालिए जिससे आपकी सेहत बनी रहे, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम हर दिन सुनते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन उसका जो है वो नहीं होता है हमारा। आगे लिखते हैं अनिल कुमार जी, अनिल कुमार लोधी, विलेज सदाठेर, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से, गुड इवनिंग मैम, अभी हम

अपने किराने की दुकान पर हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं। हमारे साथ हर्षित और माधव भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत देर नहीं हो गई, 9:30 बजे कौन आता है दुकान पर, आते हैं क्या लोग, बताइए हमें। जीशान खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सिमरनप्पी, आई एम जीशान खान सडीले से हूँ और इस वक्त सऊदी अरब में प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मुझे प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस वक्त मैं अपने रूम में आराम से सुनता हूँ और सबको सुनाता हूँ, बहुत मजा आता है। गुलफशा सिद्दीकी मेरी वाइफ है जी, अब मुझे ये बिल्कुल याद हो गया है। और वारिस अली खान साहब ने मेल किया है, जिन्होंने पिछली बार बहुत नाराजगी जताई थी कि मैंने उनका मेल अवॉइड किया है। जी नहीं, बिल्कुल भी मैंने आपका मेल अवॉइड किया नहीं था, आपका मेल मुझे दिखा ही नहीं, तो हो सकता है आपने कुछ एड्रेस में गड़बड़ी की हो। वारिस जी लिखते हैं, समरीन जी आदाब, दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते और इखलाक अच्छा हो तो अपने दूर नहीं होते। आप शो बहुत बढ़िया कर रही हैं, आपने अपने आपको टाइप्ड कर लिया है, आप सभी प्रोग्राम्स किया करिए बिकॉज यू आर वेरी मल्टी टैलेंटेड एंकर। मैंने अपने आपको टाइप नहीं किया है वारिस जी, एक्चुअली मेरे पास यही वक्त का स्लॉट है जिसमें मैं प्रोग्राम कर सकती हूँ और इसलिए इस प्रोग्राम में आप मुझे सुन पाते हैं। वकील अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, गाने अच्छे बज रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है। वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर, साहिब अंसारी, शाजी अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, एमन, इन सबको शायद इन्होंने याद किया है या सलाम भेजा है या फिर इन्होंने मेंशन नहीं किया। प्रिंसी सिंह लिखती हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, संदी जन हरदोई से नमस्ते। समरीन मैम अभी आपने आगे आगे आगे आगे क्या लिखना चाहती हैं आप, अधूरा मेल भेजा है आपने मुझे, प्रिंसी पूरा कंप्लीट करके भेजिए इसे। वैभव प्रकाश लिखते हैं, समरीन मैम आपको हमारा वो पहला मेल याद है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब वो पहला मेल लिख रहे थे तब भी आंखों में आंसू थे क्योंकि हम बहुत अरसे के बाद FM रेनबो से मिले थे और आज जब आपने फिर से उस पल को याद दिलाया तो थोड़ा भावुक सा हो गया, लेकिन खुशी भी है कि हमारे अजीज रेनबो फिर से हमारे पास है। और एक अच्छी चीज ये भी है वैभव कि अब हम ऐप पर हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आप, अब आप हमसे दूर नहीं जा सकते, हम आपके रीच में रहेंगे जहां भी आप हैं। राही लिखते हैं, गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड मैम जी, आप कैसी हैं, आई एम राही फ्रॉम लखनऊ, प्रोग्राम बहुत लाजवाब और बिंदास लग रहा है, आपको सुनकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। आज मुझे कुछ नए नाम भी मिल रहे हैं तो मुझे याद आ गया कि मैं जल्दी से बता दूं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं, हमसे मुखातिब होना चाहते हैं, प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या अपनी जिंदगी के बारे में हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो हमें fmakashwadilakhnow@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, आपके मेल्स यहां शामिल होंगे। आगे जावेद अख्तर जी का मेल आया है, लिखते हैं कि वाकई जो गीतों का गुलदस्ता आप लाई हैं समरीन बाजी, उसमें गुलाब भी है, बेला भी है, चमेली भी है, जिसमें जिसकी खुशबू हमारे रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ तक आ रही है, दिलो दिमाग तरोताजा हो गया। यही काम तो है रेनबो कैफे का या फिर पॉप टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया, और म्यूजिक का भी यही जादू है। प्रिंसी सिंह लिखते हैं, अच्छा विजय लक्ष्मी कुशवाहा संदी जनपद हरदोई से लिखते हैं कि थोड़ा रेशम लगता है सॉन्ग आपने बजाया, बहुत अच्छा लगा, मैं कब से ये सॉन्ग सुनना चाहती थी, तो ओके बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम लेंगे एक छोटा सा और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद गानों का सिलसिला यूं ही जारी है। अगला गीत आपके रेडियो सेट पर सुबीर की आवाज में ये रहा।

और भाई साहब, जब भी AR रहमान के गाने को हम सुनते हैं ना, तो वो कंपोज नहीं करते, वो एहसासों को धुनों में डालते हैं और उनके बनाए हुए गानों की जो मेलोडी होती है ना, वो सीधे दिल में उतरती है। म्यूजिक में सुकून भी है, सूफी सा जादू भी है और बीट्स तो ऐसी हैं कि हेडफोन लगाकर अगर आपने सुन लिया ना तो दुनिया भूल जाएंगे आप। और यही खासियत है भाई, ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं इतने बड़े बड़े अवार्ड्स। और हमारे पास जो मेल्स आने शुरू हुए हैं उन्हें मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास मेल, ओ गॉड, फिर से एक लंबी लिस्ट है, जल्दी जल्दी से मैं मेल्स शामिल करती हूँ। हमारे पास मेल आया है विनय यादव जी का, और ये कौशलेन यादव, शुभम सिंह और मोंटी को गाना सुनवाना चाहते हैं, जो भी गाना मैं प्ले करती हूँ। अर्जुन गंज लखनऊ से आप हैं, और जी बिल्कुल, अगला गीत आपका जो मैं प्ले करूँगी, जो मैं अपनी मर्जी से प्ले करूँगी, उनमें जो आपने दोस्तों के नाम लिए हैं वो मैंने शामिल कर दिए हैं, कौशलेन यादव, शुभम सिंह और मोंटी। शैलेश कुमार लिखते हैं कि मैं नीलू शर्मा लिखती हैं रूपपुर चंदेला से कि मैं अभी आपका साथ निभाऊंगी जब तक आप प्रोग्राम करके घर नहीं पहुंचते। अच्छा, ये एक कदम आगे हैं। बहुत जल्दी हम, रोशनी, बबीता सब लोग आपसे मुलाकात करेंगे और ढेर सारी बातचीत करेंगे आपसे, श्योर। लेट्स सी हम कब मिलते हैं। विपिन कुमार लिखते हैं, नमस्कार, आपकी प्रस्तुति लाजवाब है, प्रोग्राम बहुत मस्त है और गाने भी मस्त हैं, प्रोग्राम रोज सुनता हूं। आज मेरे भाई की सालगिरह है, आदि, माही, गुनगुन, हर्षा, अनुष्का, नाम ले लीजिएगा प्लीज। और कितना प्यारा नाम है गुनगुन। कहते ही साउंड ही इतना प्यारा कर रहा है। और विपिन कुमार और अंकिता भारती शाहपुर दुबग्गा लखनऊ से इन्होंने हमें मेल किया है। आयुषी मौर्य लिखती हैं, हारेंगे नहीं, तसल्ली रखिए, यूं मिटना होता तो कब के मिट गए होते। मैनी पोस्ट और रास, जिला उन्नाव से न्यू अशोक नगर में रहकर पढ़ाई कर रही हूं और मेरी रूममेट भी इस वक्त सुन रही हैं ये प्रोग्राम, भावना दीदी। अच्छा, और अर्पित शर्मा लिखते हैं, नमस्ते जी, कैसी हैं आप? शक्कर ज्यादा खाती हैं तभी आप इतना मीठा बोलती हैं, आपकी आवाज जो है वो कानों में शहद घोल देती है। ओफ, वो इतनी आप तारीफ करेंगे तो मुझे कहीं ना डायबिटीज हो जाए। शीतल, शाम में सितारों की टिमटिमाहट, खूबसूरत कार्यक्रम। TR शर्मा राजस्थान से, इन्होंने होडू से हमें मेल भेजा है। और अब दो मेरी प्यारी प्यारी सी लिसनर्स का एक साथ मेल आया है। रोशनी रावत लिखती हैं, गुड इवनिंग दीदी, मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम पोस्ट भवना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। आप किसी भी प्रोग्राम में जब भी आती हैं तब हम हर प्रोग्राम को बहुत प्यार से सुनते हैं और आप प्रोग्राम में तहलका मचा देती हैं। बबीता राव, नीलू शर्मा दीदी को राधे राधे बोल दीजिएगा, यकीनन उन्होंने इस प्रोग्राम में आपका ये प्यार भरा सलाम जरूर सुना होगा। कोमल तिवारी लिखती हैं, जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए समय ना रहे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। और आगे लिखती हैं कि गुड इवनिंग दी, प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आप गाने और प्रोग्राम बहुत मस्त आपका होता है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। मैं दीदी आपको बहुत मिस करती हूँ। कोमल तिवारी बहराइच से इन्होंने हमें मेल भेजा है। आप मिस क्यों करती हैं, मैं तो जल्दी जल्दी से आ जाती हूँ और वैसे भी हमारी अक्सर बातचीत मेल के जरिए होती ही है, तो मिस मत किया करिए, मैं तो जल्दी से आ जाती हूँ। और आपने जो बात कही है वो बहुत प्यारी कही है कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए समय नहीं होना चाहिए। अपने फोकस पॉजिटिव चीजों पर अगर आप करेंगे तो जिंदगी खूबसूरत होगी, बस यही मंत्र है जिंदगी का। क्यों देखिए, धूप, छांव, पतझड़, बहार, ये सब जिंदगी में आती रहेंगी, इसका सिलसिला लगातार जारी है। आप कितने तटस्थ होकर जिंदगी गुजार रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विपिन कुमार लिखते हैं, नमस्कार मैम, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है, रेगुलर सुनते हैं। आज मेरे भाई ज्ञानेंद्र और उनकी पत्नी मीना की सालगिरह है, मैंने ये मेल पढ़ लिया है विपिन जी, अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो। बबीता राव लिखती हैं, एड्रेस बेलीकला, गोसाईगंज, नवाबों के शहर लखनऊ से, मेरी प्यारी सबरीन मैम जी, आपको 8 बजे से सुन रही हूँ, सभी प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगे हैं, रजनीगंधा प्रोग्राम भी बेहतरीन होने वाला है मैम जी, आपको सप्ताह में इस बार 2 बार सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में आप ईद का चांद हो जाएं। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम आप लोगों से इंटरेक्ट करूं और आई थिंक मैं मैक्सिमम इंटरेक्ट करती भी हूं आप लोगों से। आपके लिए फनी सा शेयर अर्ज किया है कि तेरी तारीफ में क्या लिखूं प्यारी मैम,
तू ही मेरी मोहब्बत, तू ही मेरा अरमान। हाउ स्वीट। तेरी खूबसूरती की रोशनी कहीं जला न दे मुझको, धीरे धीरे बढ़ रही है ये मोहब्बत, कहीं डुबा न दे मुझको। मोहब्बत कभी डुबाती नहीं है, ये बहुत प्यारा एहसास है और हमेशा आपको अपलिफ्ट करता है, ग्रूम करता है, बेहतर करता है। थैंक यू सो मच बबीता, इतना प्यार भरा मेल हमें भेजने के लिए। और मोनू सेठ लिखते हैं पंजाबी तड़का मस्त रहा। एम के राज लिखते हैं मुनेश कुमार राज गांव भानपुर हरोहा जिला लखीमपुर खीरी से, कार्यक्रम प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब है, हर घंटे हर रोज लाइव सुनता हूं, थिरकते थिरकते थक गए हैं फिर भी थिरकना बंद नहीं होता, एक घंटे के कार्यक्रम में थिरकेंगे हमको कोई गम नहीं। हाँ एक ही घंटा तो थिरकना है, उसके बाद तो फिर हम ले चलेंगे आपको अलग दुनिया में चांद सितारों की रूमानी और रूहानी दुनिया की तरफ हम चलेंगे। मोहम्मद साबिर अंसारी लिखते हैं हम लोग तीन भाई हैं, तीनों रेनबो से कनेक्ट रहते हैं, दूर जरूर हैं पर रेनबो हमारे हमेशा पास होने का एहसास कराता है। समरीन जी जबरदस्त शो है आपका, सभी लोग खुश रहें और कोई टेंशन ना रहे, परेशानी हो तो एफएम रेनबो सुन लें और पॉप टाइम तो स्पेशली जरूर सुने। हम तीनों लोगों का नाम ले लीजिएगा, मोहम्मद सबीर अंसारी कानपुर, मोहम्मद तालिब अंसारी राजा कटरा और आसिफ अंसारी तेलंगाना से। बहुत शुक्रिया कि इतनी अलग अलग जगह से आप हमसे कनेक्टेड हैं। राजेश कुमार लिखते हैं समरीन दी गुड इवनिंग, योर प्रोग्राम प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस, सॉन्ग सिलेक्शन इज बेस्ट एंड मेलोडियस वॉइस, आई एम योर लिसनर। मैं आपको मेल कर रहा हूँ मोदीपुरम मेरठ से और मैं हर गाना जो आप प्ले कर रही हैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ और रेडियो एप्लीकेशन के जरिए न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए मैं आपके प्रोग्राम से कनेक्टेड हूँ। हम अपनी मातृभाषा में भी मेल समझते हैं राजेश, शुक्रिया, नाइस एफर्ट। गुलफशा सिद्दीकी लिखती है कि गाने तो आप एक नंबर बजा रही हैं, आज गाने हट कर बज रहे हैं, सुनने में अच्छे लग रहे हैं। शबिया अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, महक अंसारी, ममता गौतम, निशा अंसारी संडीले से। जय जी लिखते हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, सभी सॉन्ग्स हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। और चलिए जब आप कानों की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है। ये रहा आपके रेडियो सेट पर एक और थोड़ा अलग बट अपने टाइम का बहुत ही हिट सॉन्ग था, अदनान समी की आवाज में आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

9:54 और 42 सेकंड और देखते ही देखते वक्त ने अपना काम कर दिया है। प्रोग्राम पॉप टाइम अब खत्म होने की कगार पे आ चुका है। मैं लूंगी आपसे इजाजत, लेकिन उससे पहले जल्दी से वो लोग जो हमें मेल कर रहे हैं, मोनू सेठ ने हमें मेल किया है, मनोज विश्वकर्णा ने हमें मेल किया है, लिखते हैं कि पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाली मीठी सी आवाज को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप शार सुनकर बहुत अच्छा लगा, पॉप टाइम सुन रहा हूँ। देव सर का प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव से इन्होंने हमें ये मेल किया है। बाबू अंसारी लिखते हैं पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत हनहनुआ लग रहा है। अच्छा, इस प्रोग्राम के जरिए जो वोकैबुलरी है ना, वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है मेरी। पिछली बार हमने आपसे विनती की थी अदनान समय के गीत बजने चाहिए और आपने प्ले कर दिया, खुशी हुई, धन्यवाद। शैलेश जी लिखते हैं नीलू शर्मा रूपपुर चंदीला से, समरीन जी सॉन्ग बज रहा है, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, बहुत अच्छा लगता है। खासकर आपके कार्यक्रम में इतने अच्छे गाने को सुनने को मिलते हैं कि दिल खुश हो जाता है। जितना आपका शुक्रिया बोलूं वो कम है। मेरा दिल यही कहता है कि बस आप प्रोग्राम करते रहो और मैं रात भर सुनती रहूं। और मेरा दिल ये करता है कि जिस तरह से आपका प्यार हमें मिलता है, तो दिन भर की जो थकान होती है ना, हमारी काम की वजह से स्ट्रेस, काम का, बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस होता है, और जब आज की दुनिया में सब अपने अपने में गुम है, वहां आपको कहीं इतना प्यार मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि वाकई हम लोग ब्लेस्ड हैं। शोभित कुमार लिखते हैं नमस्ते मैम, शोभित कुमार डिस्ट्रिक्ट रायबरेली जगतपुर से। मैम कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि नए सॉन्ग प्ले हो रहे हैं। मैम इसी बीच इंस्पायरिंग सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। ये जो गाना आपने भेजा है ना, ये एल्बम सॉन्ग नहीं है शोभित, इस प्रोग्राम में हम एल्बम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, न्यू रिलीजेस प्ले कर रहे हैं। विवेक कश्यप लिखते हैं गुड इवनिंग मैम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। विवेक कश्यप फ्रॉम सिसैया दरियाना पोस्ट कठौरा जिला सीतापुर से इन्होंने हमें मेल किया है। तो ये थे वो लोग जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। और चूंकि प्रोग्राम में हमने बहुत हाई बीट्स और एनर्जेटिक सॉन्ग्स प्ले किए, तो जाते जाते एक बहुत प्यारा सा उस्ताद सुल्तान खां की आवाज में और चित्रा जी ने उनका साथ दिया है गाना आपको सुनाते हैं। एल्बम गाना है और उसके बाद शुरू होगा वो सिलसिला जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। रजनीगंधा में 10 बजे के बाद यानी कि न्यूज ब्रेक के बाद आपसे होगी मुलाकात। इंजॉय करिए ये सॉन्ग।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत ज्योतिर्लिंग एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम सोमनाथ संकल्प महोत्सव में सम्मिलित हुए। आयोजन में विभिन्न कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई और इसके पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन तथा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के त्र्यंबकेश्वर हॉल में आयोजित श्री सोमनाथ संकल्प पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। यहां उन्होंने बीएचयू के छात्रों द्वारा तैयार की गई सोमनाथ की प्रतिकृति पार्थिव ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर जलाभिषेक और पूजन किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 सशक्त अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। डॉ सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 7 अपीलें की, जिसमें वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देना, ईंधन की खपत कम करना और एक वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाना शामिल था। उन्होंने नागरिकों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। और जौनपुर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत जनपद में श्रद्धा आस्था एवं सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिस क्रम में आज जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन की उपस्थिति में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर डाक बंगला चौराहा होते हुए पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर तक पहुंची, जहां पर मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन किया गया तथा लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया। यात्रा के दौरान महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर पारंपरिक एवं धार्मिक वातावरण को और अधिक आकर्षण बनाया। हर हर महादेव और भगवान शिव के जयघोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रदेश में 15 अप्रैल से संचालित भूसा संग्रहण अभियान की विस्तृत समीक्षा करते हुए भूसा संग्रहण में न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले जनपद हमीरपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, औरैया और अयोध्या को कड़ी चेतावनी देते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित गौ आश्रय स्थलों में पशु आहार और भूसे की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए और भूसा संग्रह, पशु आहार प्रबंधन और गौ आश्रय स्थलों के संचालन को मिशन मोड में संचालित किया जाए, ताकि निराश्रित गौवंशों के संरक्षण में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। गौशालाओं में कोई भी गौवंश भूखा या प्यासा न रहे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें।
1: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की

इश्क ने तबीयत से जीस्त का मजा पाया, इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्दे ला दवा पाया। नमस्कार, आदाब। आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से मैं समरीन महकते जज्बात और हसीन एहसासात के इस सफर में इस्तकबाल करती हूँ, जहां अल्फाज की रोशनी रात की तीरगी को मिटा देगी। यहां ख्यालात के सफर में हर दर्द एक कहानी है और हर कहानी का अपना एक अलग एहसास है। इन्हीं जज्बात और एहसासात के सफर में आपकी हमसुखन मेजबान है आपकी समरीन आपके साथ। अगले दो घंटे हम इंसानी जज्बात और एहसासात को तरन्नुम में ढलते हुए सुनेंगे।

मोहब्बत का जज्बा जब आपको छूता है तो फिर खामोशियां भी बोलने लगती हैं। हर आहट, हर मौसम, हर हवा आपके हाल से वाकिफ हो जाता है। लेकिन क्या करें इस दर्दे दिल का, जब पूरी दुनिया तो हमारा हाल समझ रही है लेकिन वो शख्स अनजान है जिस पे दिल मर मिटा है। आज का ये हमारा अगला गीत इसी नर्म एहसास और बेआवाज मोहब्बत की खूबसूरत तस्वीर है, जहां शिकायत भी बहुत अदब से की गई है और दर्द भी बड़ी नफासत से बयां किया गया है। तो आइए सुनाते हैं आपको हमारा अगला गीत।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

मोहब्बत हमें डिपेंडेंट बनाती है। कभी कभी जिंदगी की सारी तवक्कुआत, सारी रौनक, सारी खुशी बस एक शख्स से जुड़ जाती है। उसकी मौजूदगी जीने की वजह बन जाती है और हम खुद को भूलकर भी उसे अपनी दुनिया मान लेते हैं, जहां हमारा हर ख्वाब, हमारी धड़कन बस उसी के नाम से वाबस्ता हो जाती है। हमारा अगला गीत इसी गहरी चाहत और बेपनाह डिवोशन की बात करता है। बहुत सादा, बहुत पाक और दिल को छू लेने वाला ये गीत यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। आवाज़ दी है लता जी ने, फिल्म है अनारकली। आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

10:36 और 2 सेकंड आप सुन रहे हैं रजनीगंधा अपनी दोस्त समरीन के साथ। मौसम खूबसूरत हो, हवाओं में नरमी हो और चांद अपने पूरे शबाब पर हो तो अक्सर बीती हुई माजी की बातें याद आने लगती हैं। कुछ रिश्ते जो बिछड़ कर भी खत्म नहीं होते बल्कि एक खामोश दास्तां बनकर उम्र भर दिल के आसपास ठहरे रहते हैं। हमारा अगला गीत उन्हीं मीठी उदासी और अधूरे एहसास की बात करता है जो है बहुत खूबसूरत तस्वीर लेकिन बेहद तकलीफदेह है। सलमा आगा की मखमली आवाज में निकाह फिल्म से ये खूबसूरत गीत आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिसके बाद वो चेहरा, वो नजर, वो मोमेंट सारी जिंदगी पर हावी हो जाता है। कभी किसी इंसान की मौजूदगी में आपने ऐसा महसूस किया है कि आप खुद से ही अनजान हो गए हों, दिल बेखुद हो चला हो। हमारी अगली जो गीत है, जो हमारा अगला नगमा है, वो उसी गहरी मोहब्बत और खामोश कैफियत को खूबसूरत अंदाज में आपके सामने बयां करेगा, जहां इश्क शोर की तरह नहीं बल्कि धीरे धीरे दिल में उतरती हुई खामोशी की तरह महसूस होता है। लता जी की रूहानी आवाज में फिल्म बाजार से ये असरदार गीत आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

और यकीनन इन खूबसूरत नगमों ने आपके दिल के तारों में धनक जो है वो जरूर छेड़ दी होगी। और 10:56:17 रजनीगंधा का पहला मरहला खत्म हुआ है और अब हम बढ़ते हैं एक म्यूजिक ब्रेक के बाद, हम एक न्यूज ब्रेक लेंगे और उसके बाद गीतों का ये सिलसिला फिर से शुरू होगा।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने पर सोमनाथ मंदिर गुजरात में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए दर्शन पूजन, कुंभाभिषेक, ध्वजारोहण तथा संबोधन के सजीव प्रसारण का अवलोकन किया। राज्यपाल ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर राष्ट्र के स्वाभिमान का ज्योति स्तंभ है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमें सोमनाथ मंदिर की हजार वर्षों की दिव्य अविचलित यात्रा का स्मरण कराता है, जिसने अनेक आक्रमणों, संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी आस्था, ऊर्जा और अस्तित्व को अक्षुण बनाए रखा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। श्री चौहान ने आज ये बात नई दिल्ली में कृषि